मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि तदनुसार 2 जून सन 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी प्रथम सभा मीडियम वेव व FM पर आरंभ हो रही है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के

0: दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में कल भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा मंत्रियों के संवाद के दूसरे संस्करण के दौरान दोनों देशों ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया है। हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्यस्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल के हमलों से अमेरिका के साथ संघर्ष विराम पर असर पड़ सकता है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरीय इलाकों में हमले का आदेश दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने कहा कि अमेरिका के साथ हुए समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम शामिल है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। और वहीं 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के

रिद्धि सिद्धि के तुम दाता, विघ्नहर्ता कहलाते हो, भक्तों की हर विपदा हर कर जीवन में खुशियां लाते हो।

0: जो मिले मंदिर बनवाऊं, मंदिर में फिर तुम्हें बिठाऊं।
1: धन जो मिले मंदिर बनवाऊं, मंदिर में फिर तुम्हें बिठाऊं।

सत्य का दीप धर्म का पंथ है, मर्यादा में बंधा जीवन मंत्र है। धनुष उठाया तो अधर्म कांपा, राम नाम ही सबसे उत्तम तंत्र है।

तेरे हर हुक्म पर गुजारा करूं, तेरी हर रजा को गवारा करूं। बने आईना तू मेरा सतगुरु, तुझे देख देख खुद को सवारा करूं।

हे प्रभु, आपकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। हमारी इस वंदना को स्वीकार करो।

0: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आज के कलाकार थे जयराम, सुरेश वाडकर, नूरजहां, पंकज उदास, महेंद्र कपूर व साथी। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का चिंतन। विषय है अंतःकरण गुरु रूप में।
1: जब से हम जन्म लेते हैं तब से निरंतर सीखने की प्रक्रिया हर अवस्था तक चालू रहती है और इस प्रक्रिया में निरंतर हम सीखते रहते हैं। जीवन में पहला गुरु हमारी माँ होती है, फिर पिता, फिर बेसिक शिक्षा के गुरु, और इसी क्रम में जिस तरह से हमारी शिक्षा आगे बढ़ती है निरंतर हमारे जीवन

0: में विभिन्न गुरु और शिक्षक के रूप में बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। लेकिन एक चिंतन आप कभी नहीं करते कि एक गुरु ऐसा है जो निरंतर आपके साथ चल रहा है। उदाहरण के तौर पर आप अपने घर से एक गली से निकलते हैं, उस गली से जब आप निकले तो एक जगह ऐसी है जहां आपका वाहन उस नाली पर या उस सड़क के अवरोध से टकराता है, जहां आपका वाहन सुचारू नहीं चलता। अगली बार आप स्वतः ही उस जगह पर जाकर के सचेत हो जाते हैं, या बरसात के मौसम में किसी के घर के पास से आप निकल रहे थे, किसी के घर से अचानक छत से बारिश का रुका पानी तीव्र गति में आया और आपको वहां व्यवधान लगा। आप अगली बार जितनी बार भी उसके घर के आगे से निकलेंगे, आप सचेत होकर के निकलेंगे। किसी व्यक्ति ने आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार किया या उसने आपको इग्नोर किया, आप अगली बार जब उससे मिलेंगे तो सचेत हो जाएंगे। यह सब सिखा कौन रहा है? यह सब सिखाने वाला एक सूक्ष्म गुरु है जो निरंतर आपके साथ रहता है। यह वो गुरु है जो आपके साथ आपके अंतःकरण में है, जिसे आप परमात्मा का अंश भी कह सकते हैं। और यह निरंतर आपको सीख दे रहा है, आपको बता रहा है, समझा रहा है। लेकिन आप पूरे जीवन इस गुरु का साथ कभी नहीं देते, ना आप कभी समय देते हैं। कभी हमने ऐसा विचार ही नहीं किया कि एक इतना महत्वपूर्ण गुरु जो हमारे साथ चल रहा है, हमें निरंतर सिखा रहा है, क्या हमने उससे कभी बात करने की कोशिश की? आवश्यकता है ऐसे गुरु को समय देने की। मैं समझता हूं आप सप्ताह में एक दिन कुछ मिनट बैठ करके आत्मचिंतन करें। जब आप सप्ताह में एक दिन करने लगेंगे तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और आप आत्मचिंतन करने लगेंगे। आत्मचिंतन में कोई अधिक काम नहीं करना है, केवल इतना करना है कि बैठ करके चिंतन करना कि पिछले 24 घंटे में हम क्या बेहतर कर पाए, पिछले 24 घंटे में हमसे त्रुटियां हुई कहां हैं, किन बातों के सुधार की आवश्यकता है, क्या ऐसा हम कर पाए जिससे किसी के चेहरे पर प्रसन्नता आई है, क्या ऐसा हम कर पाए कि जिससे किसी के मन को आनंद तो हुआ ही है वो और हमें अनंत आशीष देगा। बस ये चिंतन ही आपको श्रेष्ठ बनाता है। एक गुरु जो आपके साथ निरंतर चल रहा है, आपके सोते समय भी आपके साथ है और आपकी जागृत अवस्था में भी आपके साथ है, उस गुरु का वर्ण जिस दिन आप कर लेंगे, उस गुरु को जिस दिन आप समय देना शुरू कर देंगे, आप अपने आप को पहले से और अधिक बेहतर पाएंगे और जीवन में आपको असीम आनंद की अनुभूति होगी।
1: अंतःकरण गुरु रूप में, इस विषय पर अभी आपने सुना आज का चिंतन। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश में, रात में मोबाइल देखने की लत, इस विषय पर स्वास्थ्य संदेश।
2: श्रोतो, जब हम अपने मोबाइल फोन के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी, फिटनेस और ब्रेन हेल्थ को नुकसान पहुंचाने लगता है। इससे हम गुस्सैल, चिड़चिड़े और कमजोर भी हो जाते हैं। युग स्मार्टफोन का है। 24 घंटे मोबाइल फोन को हम अपने पास रखते हैं। पूरा दिन मोबाइल फोन के साथ बिताने के बाद रात को सोने से ठीक पहले मोबाइल चलाना नहीं भूलते। ज्यादातर लोग सोते वक्त इसे अपने तकिए के पास रखकर सोते हैं, लेकिन इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वृहद रूप में हमारे सामने आती हैं। रात को मोबाइल फोन चलाने की आदत सीधे सीधे हमारी नींद को प्रभावित करती है और अधूरी नींद पूरी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। बड़ों के साथ साथ आजकल कम उम्र के बच्चे भी इन गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी लोग एंग्जाइटी, डिप्रेशन और तरह तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के शिकार हो रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार यदि हम रात का एक लंबा समय फोन पर व्यतीत करते हैं, सोते समय फोन चलाते हैं, बीच बीच में कॉल या मैसेज चेक करते हैं, तो हमारी नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

0: होती है और पूरे शरीर की सेहत के लिए ये हानिकारक है। स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं और ये इम्यून सिस्टम को भी बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। पूरे दिन में बहुत कम भूख लगती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से लेकर हाई ब्लड प्रेशर और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर सभी ये मानते हैं कि स्मार्टफोन ने ज़िंदगी को आसान बना दिया है, हालांकि एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन के लिए कारगर तो है, पर जब बात सेहत की आती है तो इसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि सोते वक्त अगर हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा सक्रिय अवस्था में रहता है। ब्रेन को रेस्टिंग मोड पर जाने में परेशानी होती है, नींद की गुणवत्ता को ये बुरी तरह से प्रभावित करता है। यदि हम रात को लंबे समय तक फ़ोन नहीं चलाते लेकिन सोते वक्त थोड़ी देर के लिए फ़ोन में मैसेज या कॉल चेक कर लेते हैं तो इसकी वजह से भी ब्रेन डिस्टर्ब हो जाता है, इससे भी समय से नींद नहीं आती। उचित समय पर दिमाग को नींद के लिए सिग्नल देना, नींद को बढ़ावा देने के लिए, इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर को मेलाटोनिन की आवश्यकता होती है। ऐसे में आपके मोबाइल फ़ोन की लाइट रात को सीधे आपकी आंखों पर पड़ती है। ये ब्लू लाइट मेलाटोनिन के उत्पादन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। सुबह उठने के बाद हमें थकान और सुस्ती महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे नींद पूरी नहीं हुई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात को फ़ोन चलाने से हमारा दिमाग सक्रिय रहता है, ऐसे में ना तो नींद आती है ना चैन मिलता है, और ये मैकुलर डिजनरेशन का कारण भी बन जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे रात में मोबाइल देखने की लत, इस विषय पर स्वास्थ्य संदेश। संदेश दे रहे थे असीम सक्सेना। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर यानी 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान की भाग संख्या 316। सवेरे 7 बजे समय रहेगा कार्यक्रम लोकरंग का। आज की कलाकार होंगे शालू सक्सेना, जिसमें आज आप सुनेंगे इनके लोकगीत।

सुबह 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गौरव भारत देश के। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा प्रमुख वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम की गौरव गाथा। आज सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा आकाशवाणी रामपुर की पेशकश उर्दू प्रोग्राम। नौ बजकर 50 पर समय रहेगा उपशास्त्रीय संगीत का। आज इसमें आप सुनेंगे तबला और पखावज पर जुगलबंदी। तबले पर होंगे मुन्ने खां और पखावज पर रामजी लाल शर्मा। आज दिन के 11 आप सुनेंगे सुनते सुनाते 90 का भाग संख्या 2। समय याद रखिए दिन के 11:00।

11:30 पर होगा श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भवन। बारह बजकर दस मिनट पर आप तक पहुंचाएंगे ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी संगीत का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

0: दोपहर 1:15 पर समय रहेगा कार्यक्रम परिवार जगत का, जिसमें आज आप सुनेंगे परिवार के साथ छुट्टियां या पिकनिक मनाना, इस विषय पर चर्चा। साथ ही जनजीवन को प्रभावित करती बढ़ती जनसंख्या, इस विषय पर राजकुमार गोयल की वार्ता। साथ ही होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम दिखावा और बजट। साथ ही दी जाएंगी आपको हेल्थ टिप्स संतुलित और पौष्टिक आहार पर। श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान,
1: एपिसोड नंबर 316। 316।

राज्यसभा में रावण अंगद के पराक्रम का आभास पा चुका था, फिर भी मंदोदरी की समझावन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह कहती रही, जिन्होंने विराध, खरदूषण और कबंध को अपनी लीला से मार डाला, जिसके एक ही वाण से बाली का वध हो गया, हे स्वामी, आप उनकी महिमा को समझने की चेष्टा कीजिए। उन्होंने आपकी भलाई के लिए ही अपना दूत भेजा था। उसने आकर आपकी सभा में आपके सभी योद्धाओं की वीरता को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया, जैसे एक सिंह हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है। आप ऐसे शक्तिमान को मनुष्य समझने की भूल कर रहे हैं। आपका मान और मद सब व्यर्थ है। आप काल के वश में हो गए हैं, इसी कारण आपको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो रहा है। मंदोदरी के अनुनय को अनसुना कर रावण सवेरा होते ही अभिमान पूर्वक सिंहासन पर जा बैठा और एक बार फिर वही हठधर्मिता। इधर सुबेल पर्वत पर अंगद श्रीराम के सम्मुख उपस्थित होते हैं, जो रावण राक्षस कुल का शिरोमणि है और जिसके बल से सारा जगत परिचित है। उसके चार चार मुकुट अंगद ने किस प्रकार यहां तक फेंके? श्रीराम की इस जिज्ञासा के उत्तर में अंगद का निवेदन है, हे सर्वज्ञ, वे चार मुकुट राजा के चार गुणों, साम, दान, दंड और भेद के प्रतीक हैं, जिनका राजा के हृदय में निवास होता है। किंतु रावण राजा के धर्म से विचलित हो गया है, अतः वह उसे छोड़ आपकी शरण आ गए।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिन्हें हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमारदेशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत सम्बन्धान् इतोपि सुदृढीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारतदेशयोः मिथः सुरक्षां सम्पर्कं च समेत्य देशद्वयोः सम्बन्धानां समेऽपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेशसचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेशव्यवहार विकास शिक्षा स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ती राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धिः CEPA इति ह्यः क्रियान्वितः अभवत्। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः देशद्वयोः आर्थिक रणनीतिक सम्बन्धान् दृढयिष्यति। वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री गोयलः अवोचत् यत् अयं सन्धिः नूतनापणम् उद्घाटयिष्यति। अनेन निर्याते वृद्धिः भविष्यति, निवेशः अपि वृद्धिं यास्यति। व्यापकार्थिक सहभागिता सन्धेः अन्तर्गतं भारतीय निर्यातकेभ्यः ओमाने उत्पादसमूहेषु विपणौ प्रतिशत 98-मिता शुल्कमुक्त कार्यानुमतिः भविष्यति। श्रीगोयलेन उक्तं यत् अनेन आजीविका संवर्धनाय विद्यार्थिभ्यः, श्रमिकेभ्यः, महिलाभ्यः, कृषकेभ्यः, मत्स्यजीविभ्यः, सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
3: of our shared future.
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षताम् कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षासम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिननवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉ. संवितपात्रावर्यः नरेन्द्रमोदीप्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, सङ्घटनात्मकविस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 7 बजे प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकरंग।

0: अभी आप सुन रहे थे शालू सक्सेना के कुछ लोकगीत। कार्यक्रम था लोकरंग। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के

संघर्ष और सफलता का साक्षी है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 7:18 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाए, प्रदूषण के कारण बन जाए, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना

0: को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति। 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं, मेधावी विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को कल सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन आए हैं और परीक्षाएं नकल विहीन ढंग से संपन्न हो रही हैं। श्री योगी ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर प्रदेश में अनेक नवाचार किए गए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर छात्र छात्राओं को तकनीकी दिशा से सक्षम बनाने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ करवाए। अटल टिंकरिंग लैब भी उसी का एक उदाहरण है। डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है, ये उसी क्रम का हिस्सा है। अनेक ऐसे कदम उठाए गए हैं जो छात्र छात्राओं को उन नवाचारों के साथ जुड़ने के लिए, जो उसकी शिक्षा के लिए आवश्यक है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है, उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: मुख्यमंत्री ने कल बिजनौर जिले में पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीजधारकों को भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में प्रदेश के विकास को गति मिली है और बिजनौर भी उस विकास से अछूता नहीं रहा है।
1: बिजनौर के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुलेगा। आज तो बिजनौर में अपना मेडिकल कॉलेज हो गया और महात्मा विदुर के नाम पर हो गया। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं और अभी गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम इधर से ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये विकास, यही परिवर्तन लाएगा। हर एक तबके के लोगों को नई सुविधाएं दी जा रही है।
0: बिजनौर के बाद मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में विकास कार्यों और माता शाकंभरी देवी कॉरिडोर के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। गोरखपुर और कुशीनगर में लोकार्पण तथा शिलान्यास के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे। वह आज कुशीनगर जिले के तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर में आयोजित समारोह में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर श्री योगी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और चेक भी वितरित करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री कुशीनगर में निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम गोरखपुर में चिलुआ ताल घाट पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कराए गए चिलुआ ताल के पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री कल गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते राज्य में अपराधों में काफी कमी आई है। स्थायी पुलिस महानिदेशक के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद कल मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई पुलिस विभाग की प्राथमिकता है।
2: माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनकी और शासन की प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम कर रही है, जिसमें अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, महिलाओं की सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, साइबर अपराधियों के प्रति कठोर कार्रवाई, कानून व्यवस्था लगातार अक्षुण रहे उसके लिए लगातार चलने वाली कार्रवाई, जितने भी मेले पर्व त्यौहार हैं उसमें एक शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाए इसके लिए लगातार सतत बंदोबस्त की अरेंजमेंट, ये सभी प्राथमिकताएं हैं जिन प्राथमिकताओं के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार कार्य करती रही है और आगे भी कार्य करती
0: रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा 8, 9 और 10 जून को विभिन्न

0: विभिन्न जिलों में निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि ये परीक्षाएं दो पालियों में होंगी। करीब 32,000 से अधिक पदों के लिए होने वाली इस भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झांसी की ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को आधिकारिक रूप से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। 253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित होने वाली इस परियोजना के अंतर्गत 5.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी में मुख्य रूप से कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र, रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डेटा सेंटर और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। प्रस्तुत है किसान कल्याण की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक रिपोर्ट।
1: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी जिलों में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में प्रदेश के पूर्वी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। विभाग द्वारा आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी धीरे धीरे क्रमिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10वीं और 12वीं के मेधावियों सहित उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को किया सम्मानित। कहा, प्रदेश में नकल विहीन ढंग से हो रही हैं परीक्षाएं। मुख्यमंत्री ने बिजनौर में पाकिस्तान से विस्थापित 1,645 परिवारों, पूर्व सैनिकों और लीज धारकों को सौंपे भूमि स्वामित्व अधिकार प्रमाण पत्र। कहा, सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश पुलिस की आरक्षी, नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की लिखित परीक्षा की तारीखें घोषित। 32,000 से अधिक पदों के लिए 8, 9 और 10 जून को दो पालियों में होगी परीक्षा। और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी परियोजना को भारत सरकार से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति। 5.5 लाख से अधिक युवाओं को मिल सकेगा रोजगार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है फिल्मी गीतों के इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे का।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका रेडियो साथी अंकुर राजपूत। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। वैसे ये जून का महीना शुरू हो चुका है और अगर हमारे नन्हे मुन्ने श्रोता हमें सुन रहे हैं तो उनसे थोड़ी सी बात की जाए आज, क्योंकि उनको इस जून के महीने का बड़ी बेसब्री से पूरे साल इंतज़ार रहता है कि कब जून का महीना आए, कब हमारे स्कूल्स की छुट्टियां पड़ें, हम अपनी नानी के घर जाएं, हम अपने मामा के घर जाएं, अपने भाई बहनों से मिलें, या फिर हम कब अपने पहाड़ों पर, नदियों के पास या फिर तीर्थ स्थलों पर घूमने जाएं। हर किसी को इन छुट्टियों का इंतज़ार रहता है श्रोताओं, और जैसे ही जून का महीना पास आता है तो जो लोग बड़े हो गए हैं वो अपने बच्चों में अपने बचपन को जी लेते हैं, क्योंकि बच्चे ज़िद करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, और उनकी फरमाइशें पूरे करने में मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची सब लग जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है जून का महीना। सच कहें तो आज भी अपने बचपन के वो दिन हमें याद आते हैं जब हम रिजल्ट लेने के बाद अपनी नानी के घर जाने के सपने देखना स्टार्ट कर दिया करते थे, और हर शाम पापा जी जब ड्यूटी से वापस आते थे तो उनसे हम कहते थे कि पापा, नानी के घर कब चलोगे, मामा जी के घर कब लेके चलोगे। और यही जो रूटीन हमारा रहता था हर दिन का, जब तक हम अपने मामा के घर चले नहीं जाते थे। कुछ ऐसी ही होती हैं ये जून की छुट्टियाँ। श्रोताओं, बात बचपन की चल रही है, बच्चों की चल रही है, तो आपको बता दें कि आज बहुत सारे अखबारों में जो आज की फ्रंट पेज की जो खबर है वो है कि सोशल मीडिया से दूर रहें बच्चे। जी हाँ, और ऐसा कह रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। हाल ही में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाले मेधावियों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को जीवन में सफल होने का गुरु मंत्र दिया। योगी जी ने कहा कि अगर अच्छे अंक लाने हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहें, प्रतिदिन ज्ञान अर्जन के लिए समाचार पत्र जरूर पढ़ें, टीवी पर सिर्फ न्यूज़ देखें, अगर आपको टीवी देखना भी है तो सिर्फ न्यूज़ देखें, जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। और लोक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय मेधावी छात्र सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री जी ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई, संस्कृत बोर्ड, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के टॉप 10 की सूची में शामिल 223 मेधावियों, उनके अभिभावकों, प्रधानाचार्यों सभी को सम्मानित किया, और इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि जो ये सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादातर कंटेंट उसके जो होते हैं झूठे ही होते हैं, ऐसी चीज़ जिसका खुद का अस्तित्व नहीं है उसमें समय नष्ट करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का समय ही सोशल मीडिया को दें, वो भी ज्ञान की बातें पढ़ें। बिल्कुल ठीक कहा है हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, और बात बचपन की है और बच्चों की है, तो आइए आपको ले चलते हैं उन बचपन के दिनों में।

श्रोताओं, सही बात है, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। वाकई हम यूं ही उड़ते फिरा करते थे, क्योंकि उस वक्त में, उस दौर में सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। मोबाइल से हम सब बहुत दूर थे, पर आज के बच्चे मोबाइल के सबसे ज़्यादा करीब हैं, और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मोबाइल में हर तरह के कंटेंट आते हैं। बच्चे रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, और कब क्या उनके सामने, उनकी आंखों के सामने आ जाए, कुछ पता नहीं। हाल ही में एक अभी कुआलालंपुर मलेशिया में ये जो कहा गया है कि मलेशिया में भी बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब, इन सभी प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई है पूरी तरह से। मलेशिया सरकार ने साफ किया है कि ये फैसला बच्चों को साइबर बुलिंग, स्क्रीन की लत और गलत कंटेंट से बचाने के लिए लिया गया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट नहीं बना सकेंगे, और सोशल मीडिया कंपनियों को आयु सत्यापन प्रणाली लागू करनी होगी, और 16 वर्ष से कम उम्र के जो उपयोगकर्ता हैं उनको अकाउंट बनाने से रोकना होगा। ये नियम प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होगा। साथ ही कंपनियों पर लगेगा करोड़ों का जुर्माना। नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर करीब 21.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि यदि बच्चे किसी तरह नियमों को दरकिनार कर अकाउंट बना लेते हैं तो उनके माता पिता पर कार्रवाई भी हो सकती है। इस रिपोर्ट के अनुसार 95% से अधिक 13 से 17 उम्र साल के जो उम्र के दुनिया भर में सोशल मीडिया मंच पर सक्रिय बच्चे हैं। 92% स्कूली बच्चों के पास सोशल मीडिया अकाउंट हैं मलेशिया के अंदर। और भारत में इस वक्त जो हालात हैं वो क्या हैं? भारत में अभी तक सोशल मीडिया पर पूरी तरह से कोई उम्र आधारित प्रतिबंध लागू नहीं है। अधिकांश सोशल मीडिया मंच की पॉलिसी के अनुसार भारत में अकाउंट खोलने की न्यूनतम उम्र 13 वर्ष है। बच्चे गलत जन्मतिथि डालकर अकाउंट बना लेते हैं, पर ये गलत है। अगर हमें बच्चे सुन रहे हैं तो हम उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों, आपकी जो ये उम्र है वो पढ़ाई लिखाई की है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहें। सोशल मीडिया चलाने का भी वक्त आएगा जब पढ़ाई से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, है ना? तो आप लोग सोशल मीडिया को कम इस्तेमाल करें, मम्मी पापा की बात माने। तो श्रोताओं, की तो बात थी सोशल मीडिया के बारे में। आइए अब आपको बताते हैं कि आज का जो इतिहास है, यानी कि 2 जून का जो इतिहास है, वो क्या कहता है।

श्रोताओं, आज यानी कि 2 जून को यूक्रेन अपने अंतिम परमाणु युद्धास्त्र रूस को सौंपने के साथ ही परमाणु मुक्त देश बना था सन 1996 में दक्षिण एवं उत्तर कोरिया के बीच उच्च स्तरीय वार्ता पर सहमति हुई। भूटान में टीवी प्रसारण की शुरुआत हुई।

मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित विश्व की सबसे ऊंची इमारत पेट्रोनास ट्रिवन टावर्स दर्शकों के लिए खोला गया था सन 2000 में। साथ ही सन 2004 में ऑस्ट्रेलियाई मॉडल जेनिफर हॉकिंस मिस यूनिवर्स बनी थी। सन 2005 में भारत, रूस और चीन का व्लादिवोस्तोक सम्मेलन समाप्त हुआ था। सन 2008 में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई ने इस्तीफा दिया। साथ ही टाटा मोटर्स लिमिटेड ने फोर्ड मोटर कंपनी को दो ब्रांडों जगुआर व लैंड रोवर के अधिग्रहण का सौदा पूरा किया। श्रोताओं, साथी, आज यानी कि 2 जून को कौन कौन व्यक्ति जन्मे, यानी कि आज किन का जन्मदिन है, आइए जानते हैं। सन 1963 में जन्मे भारतीय व्यवसायी नटराजन चंद्रशेखर। 1961 में तमिल साई सुंदर राजन, जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं। 1930 में जन्मे बाबूलाल गौर, जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं व मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे। 1943 में इलैया राजा, भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रहे। 1951 में अनंत गीते, जो कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ रहे। साथ ही 1955 में नंदन नीलेकणी, भारतीय उपक्रमी, नौकरशाह नेता और प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। 1980 में डोला बनर्जी, जो कि तीरंदाज महिला खिलाड़ी हैं। 1932 में जन्मे बलबीर सिंह जूनियर, जो कि भारतीय हॉकी टीम के भूतपूर्व खिलाड़ी रहे। साथ ही आज जन्मदिन है मणिरत्नम, जो कि भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक में से एक हैं। आज आपका जन्मदिन है। मणिरत्नम भारतीय सिनेमा के सबसे प्रतिष्ठित और प्रशंसित फिल्म निर्देशकों में से एक हैं। हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से तमिल सिनेमा में काम किया, लेकिन उनकी कई बेहतरीन फिल्मों को हिंदी में डब किया गया और उन्होंने सीधे हिंदी फिल्मों का निर्देशन भी किया, जैसे कि दिल से फिल्म, जो कि शाहरुख खान और मनीषा कोइराला पर फिल्माई गई है। फिल्म युवा सन 2004 में आई, जो कि अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और विवेक ओबरॉय पर फिल्माई गई। फिल्म गुरु सन 2000 में आई, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय और साथियों की भूमिका रही। तो ये थी जानकारी आज जन्मे व्यक्तियों की। श्रोताओं, अब वक्त है एक समय अंतराल का, जल्द ही कार्यक्रम में वापस लौटेंगे।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: श्रोतों, कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है और अब चलते हैं अपनी उसी श्रृंखला की ओर, यानी कि आकाशवाणी रामपुर और समस्त आकाशवाणी के स्टेशन जो कि 90 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हमने बातचीत की श्रीमती डॉक्टर आंचल गुप्ता जी से, जो कि एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। आइए सुनते हैं ये बातचीत।

आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आज मैं अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करती हूं। आज हम सभी एक ऐसे संस्थान के 90 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मना रहे हैं जिसने केवल ध्वनि का प्रसारण ही नहीं किया बल्कि पीढ़ियों की भावनाओं, संस्कारों, ज्ञान और सामाजिक चेतना को भी घर घर तक पहुंचाया है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होना केवल एक संस्था की उपलब्धि नहीं बल्कि भारतीय समाज की सामूहिक स्मृतियों और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। आकाशवाणी ने सदैव समाज के प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों का निर्माण किया है। ग्रामीण महिलाओं के लिए आंचल हो, शहरी महिलाओं के लिए कुमकुम, कृषकों के लिए कृषि जगत और युवाओं के लिए युववाणी, परिवारों के लिए परिवार जगत तथा संगीत प्रेमियों के लिए फरमाइश जैसे कार्यक्रम अनेक वर्षों से निरंतर प्रसारित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहे हैं बल्कि जागरूकता, शिक्षा, प्रेरणा और सामाजिक विकास के सशक्त साधन भी बने हैं। मेरे लिए अवसर विशेष रूप से भावनात्मक है क्योंकि मैं स्वयं वर्ष 2001 से आकाशवाणी रामपुर से जुड़ी हुई हूँ। पिछले लगभग 25 वर्षों से मुझे सामाजिक मुद्दों पर अनेक वार्ताएं और विचार विमर्श प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस लंबे सफर में मैंने आकाशवाणी रामपुर को बहुत निकट से देखा और समझा है। यदि मैं तब और अब की तुलना करूं तो अनेक सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। आज रेडियो स्टेशन अधिक डिजिटल, आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त हो चुके हैं। प्रसारण की गुणवत्ता, पहुंच और प्रभावशीलता में निरंतर वृद्धि हुई है। लेकिन सबसे सुखद बात यह है कि आधुनिकता को अपनाने के बावजूद आकाशवाणी ने अपनी आत्मा, अपनी गरिमा और अपने मूल्यों को सुरक्षित रखा है। आकाशवाणी रामपुर में जब भी जाने का अवसर मिलता है तो वहां का वातावरण मुझे परंपरा और आधुनिकता के अद्भुत संगम के रूप में दिखाई देता है। एक ओर वर्षों पुरानी प्रसारण संस्कृति की गरिमा है तो दूसरी ओर नई तकनीकी की आत्मविश्वास। वहां कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों में टीम भावना, समर्पण और सहयोग का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही भावना किसी भी संस्थान

अवसर पर अनेक स्मृतियां ताजा हुई और यह अनुभव हुआ कि आकाशवाणी आज भी समाज की नब्ज को उतनी ही संवेदनशीलता से समझती है जितनी अपने प्रारंभिक वर्षों में समझती थी। आज जब संचार के अनेक आधुनिक माध्यम उपलब्ध हैं, तब भी रेडियो की अपनी विशिष्ट पहचान और विश्वसनीयता बनी हुई है। आकाशवाणी केवल समाचार या मनोरंजन का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज है। यह किसानों की चिंता, महिलाओं की आकांक्षाओं, युवाओं के सपने और परिवार के संस्कारों को समान रूप से अभिव्यक्ति प्रदान करती है। साथ ही सामाजिक समस्याओं, जन जागरूकता और राष्ट्रीय हित के विषयों को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ समाज के समक्ष प्रस्तुत करती है। अंत में मैं आकाशवाणी परिवार को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मेरी यही कामना है कि आकाशवाणी अपने इस गौरवशाली सफर में निरंतर आगे बढ़ता रहे, नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। मैं प्रतीकात्मक रूप से यह शुभकामना देना चाहूंगी कि आकाशवाणी का यह सफर केवल 90 वर्षों तक सीमित ना रहे, बल्कि हजारों वर्षों तक ज्ञान, संस्कृति, जागरूकता और जन सेवा का यह दीपक इसी प्रकार प्रसारित होता रहे। आकाशवाणी समाज के प्रत्येक वर्ग का केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि उसके विचारों को दिशा देने, सामाजिक मुद्दों को मुखरता से उठाने और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने का अपना महत्वपूर्ण दायित्व भी इसी समर्पण के साथ निभाता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं और अनंत शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।

कौन कौन शख्सियत इस दुनिया को अलविदा कह गई। सन 2004 में श्रीकांत जिचकर, जो कि भारत के ऐसे योग्य व्यक्ति थे जिन्होंने 42 यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की थी। 1984 में विश्वनाथ दास, जो कि भारतीय राजनीतिज्ञ एवं प्राण कृष्ण पारिजा, जो कि पद्म भूषण से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे, और साथ ही 1988 में राज कपूर, जो कि भारतीय निर्माता, निर्देशक और अभिनेता थे, इस दुनिया को अलविदा कह गए। बात राज कपूर साहब की है, जो कि हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और निर्देशक थे। अपनी शुरुआती फिल्में जैसे कि प्रेम कहानियों को मादक अंदाज से पर्दे पर पेश करने का

बाद में वे केदार शर्मा के साथ फ्लिपर बॉय का कार्य करने लगे। कुछ लोगों का मानना है कि उनके पिता पृथ्वीराज कपूर को विश्वास ही नहीं था कि वो राज कपूर कुछ विशेष कार्य कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें सहायक या फ्लैपर बॉय जैसे छोटे काम में लगवा दिया था। पर श्रोताओं, ये तो इंसान की लगन और मेहनत है कि वो आगे भविष्य में क्या बन पाता है। तो राज कपूर साहब को हमारी ओर से एक श्रद्धांजलि, और उन्हीं के लिए, उन्हीं के ऊपर फिल्माया गया ये गीत।

0: म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का

0: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण
1: म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया।

0: जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है। उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय

0: 29 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर। और
1: राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम

0: महात्मा कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
1: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने एक बुक
2: जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधा

आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई

0: ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ी

सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है, भारत के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के

0: अकाउंट।
1: मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं, जिसका जनधन खाते से भी संबंध है। तो उसने एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है उसके, उसमें छोटी छोटी सुविधाएं, हमें छोटा सा ऋण भी मिलता है, हमें 10,000 रुपए

0: म्यांमार के सदर आला सतह के वफद के हमराह आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबारी और सनती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे।
1: I think 100% of their leave. Daily Zappe attributes to Indian cinema's renowned playback singer.

0: अब सीधे उनके बैंक खाते में मुंतकिल की जाती है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: इख्तराई प्रोग्रामों और मौजों पॉलिसियों के साथ ख्वातीन एक खुद कफील और सबकी शमूलियत वाली मईशत को तश्कील देने में अहम रोल अदा कर रही हैं। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
2: सुप्रीम कोर्ट में 9 तकर्रर शुदा 5 जज आज हलफ लेंगे। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकर्ररी की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने तलबा के लिए नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने यह जानकारी दी है। सीबीएसई ने तलबा को यह सलाह दी है कि वो नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए दरखास्त देने के तरीके के बारे में हिदायत के ताल्लुक से वीडियो को ध्यान से देखें। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूनेस्को आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। मजकूरा मकाम रियासत के चमोली जिले में है। जंगलात के महकमे ने सैयाहों से अपील की है कि वो वैली के मालामाल है।

के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 गोल से हरा दिया।

अभी आप सुन रहे हैं 102.9 मॉर्निंग हिट्स और कार्यक्रम का अगला गीत बाटला हाउस फिल्म से आवाज़ है भानुशाली की।

अभी आप सुन रहे हैं 102.9 मॉर्निंग हिट्स। अगली पेशकश फिल्म छिछोरे से आवाज़ है अरिजीत सिंह की।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सवेरे के 9:15 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
2: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित कानपुर झांसी चित्रकूट धाम मंडलों की संयुक्त मंडली खरीफ उत्पादकता गोष्ठी 2026 का बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शाही ने स्टालों पर जाकर विभिन्न उत्पादों के विषय में जानकारी लिया। गोष्ठी के दौरान कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव कृषि सहित कृषि वैज्ञानिक एवं कृषक गण कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है, जिसका ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार की प्राथमिकता किसानों को उन्नतशील बीज उपलब्ध कराने के साथ ही खेतों में हरी खाद बढ़ाने और रासायनिक खाद का प्रयोग कम करने के लिए सरकार द्वारा KCC योजना को अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन की बचत किए जाने की अपील को बल देते हुए श्री शाही ने कहा कि उन्होंने अपने काफिला कम कर दिया है और अधिकारियों को कार पूल करने के लिए निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को 100 साइकिल लेने और शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों को साइकिलों के माध्यम से चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनपद कानपुर नगर पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अनुदेशक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के मानदेय में लगभग दोगुनी वृद्धि करते हुए प्रदेश सरकार ने इसे 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। श्री राकेश सचान ने बताया कि बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा तथा अनुदेशकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से भी आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिषदीय विश्वविद्यालयों में कार्यरत अनुदेशक खेलकूद, योग, संगीत, कला एवं अन्य गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और रचनात्मकता विकसित कर रहे हैं। यह निर्णय बच्चों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे अनुदेशकों के योगदान का सम्मान है। जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों पहुंचे प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडुनगर कानपुर नगर का औचित्य निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों

0: प्रशिक्षण व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का गहन अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर उनके कौशल विकास, प्रशिक्षण अनुभव एवं भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में जानकारी लिया। उन्होंने प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार और आधुनिक संसाधनों पर जोर देते हुए संस्थान में किए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने के साथ ही कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता का संदेश, युवाओं को रोजगार पूरक प्रशिक्षण पर बल दिए जाने के निर्देश दिया। मंत्री कपिल अग्रवाल ने बताया,
1: कानपुर जो एक बड़ा हब है, इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर है, तो यहाँ के उद्यमियों से भी, उद्योगपतियों से, व्यापारियों से मेरा निवेदन है कि ITI कभी विजिट करें, बच्चों की आवश्यकता को समझें कि बच्चे ITI करते करते ड्यूअल सिस्टम के अंदर बच्चे ITI में भी काम करें और इंडस्ट्री के अंदर भी प्रशिक्षण लें, तो इन बच्चों को इंडस्ट्री में घुमाएं देखें ताकि ये बच्चे प्रैक्टिकल रूप से वहां जाके इंडस्ट्री में सीखने का काम कर सके और बालिकाओं के अंदर भी एक शानदार आत्मविश्वास दे रहा है, उनको भी सपने साकार हों।
0: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों अग्रणी जिला बैंक कार्यालय कानपुर नगर द्वारा वित्तीय सेवा विभाग, राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी लिमिटेड NCGTC, राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC, लीड बैंक एवं जन समर्थ PSB अलायंस के मध्य समन्वय से ECLGS 5.0 योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के उद्देश्य से आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बैंक ऑफ बड़ौदा एवं राज्य स्तरीय बैंकर समिति SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र कुमार सिंह, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS के अवर सचिव शैलेंद्र कुमार एवं विशेष कार्याधिकारी OSD मधुरिता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान ECLGS 5.0 योजना MSME इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, कार्यशील पूंजी संबंधी समस्याओं को दूर करने तथा रोजगार एवं औद्योगिक गतिविधियों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने तथा बैंकों के पात्र इकाइयों तथा योजना का अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास करने के उद्देश्य से किया गया। SLBC उत्तर प्रदेश के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया,
2: इस स्कीम में जो MSME सेक्टर है, जो भी वो लोन बैंक देंगे, MFI देंगे बल्कि, वो टोटल 100% सिक्योर्ड है और नॉन MSME के लिए 90% तक इसको क्रेडिट गारंटी भारत सरकार दे रही है, जिसका कोई भी फीस किसी भी कस्टमर को नहीं देना है।
3: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं रामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शन्नू खान का।
4: रामपुर में उद्यान विभाग द्वारा एकीकृत बागवानी विकास योजना संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत कार्यक्रमों में पॉली हाउस, शेड, नेट हाउस की स्थापना, मशरूम उत्पादन इकाई, स्पॉन मेकिंग इकाई, कोल्ड रूम एवं कोल्ड स्टोरेज जैसे कई कार्यक्रम सम्मिलित हैं। अधीक्षक राजकीय उद्यान अजय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा इकाई लागत का 40-50% तक अनुदान अनुमन्य है। जनपद में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्धा, पारंपरिक हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने बारगाहे इलाही में सिर झुकाकर मुल्क में अमन चैन, खुशहाली और तरक्की के लिए खास दुआएं की। त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बेहद मुस्तैद नजर आई। शहर के संवेदनशील इलाकों, ईदगाह और प्रमुख मस्जिदों के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। रामपुर में अत्यधिक गर्मी और बढ़ते तापमान को ध्यान में रखते हुए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 साल उम्र के बच्चों के लिए 15 जून 2026 तक अवकाश घोषित किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया। हालांकि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाएं ने अपने अपने केंद्रों पर नियमित रूप से उपस्थित रहकर विभागीय कार्यों का निर्वहन किया। जिले में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही पाई गई। लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कार्य में शिथिलता बरतने वाली आशाओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बताया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित 7 आशाओं की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की गई। ICDS विभाग द्वारा बनाए जा रहे गोल्डन आयुष्मान कार्ड की समीक्षा में लापरवाही सामने आने पर जिलाधिकारी ने CDPO मिलक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही CDPO मिलक एवं CDPO बिलासपुर का 3-3 दिन का वेतन बाधित करने की कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना में शानदार प्रदर्शन किया गया है। भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट के अनुसार

0: विभाग ने योजना के तहत अपना शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। वर्तमान में जिले के कुल 70,000 से अधिक पात्र बुजुर्गों को पेंशन का सीधा लाभ मिल रहा है। अपात्रों की छटनी करने के साथ साथ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नए हकदारों को उनका अधिकार दिलाने का काम भी तेजी से हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को न्यायालय ने 2 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। आजम खान द्वारा साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था। थाना क्षेत्र भोट अंतर्गत चुनाव प्रचार करते हुए उच्च अधिकारियों के विरुद्ध आजम खान ने अभद्र टिप्पणी की थी। न्यायाधीश शोभित बंसल न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम MPMLA कोर्ट रामपुर में विचाराधीन था। ADGC संदीप सक्सेना ने बताया कि आजम खान को इसमें दोष सिद्ध करार दिया गया है।
1: MPMLA जो स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट है रामपुर में, श्रीमान शोभित बंसल जी की, उनके द्वारा सजा सुनाई गई, जिसमें हर धाराओं में 2 साल की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना आजम खान के ऊपर डाला गया।
0: जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं ओवरलोडिंग के विरुद्ध कार्रवाई की गई। जनपद स्तरीय गठित टास्क फोर्स द्वारा संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान 3 वाहनों को ओवरलोड पाया गया। इसके अतिरिक्त 25 डंपरों में कमियां पाई गईं। प्रशासन ने वाहन स्वामियों एवं चालकों से अपील की है कि वाहनों में रेता, बजरी अथवा अन्य सामग्री निर्धारित क्षमता से अधिक न भरें तथा डंपरों का संचालन निर्धारित गति सीमा के अंतर्गत करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी कानपुर नगर और रामपुर जिलों की हलचल।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम गौरव भारत देश के। आज कार्यक्रम में सुनिए प्रमुख वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम की गौरव गाथा।

0: अभी आपने सुनी प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की गौरव गाथा। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

हमें ज़्यादा ख़राब निकले। कई निगाहों ने दस्तकें दीं, कई अदाओं ने गुदगुदाया, मगर हकीकत में ख्वाब निकले। ये वाकये दिल नशीं बहुत थे, मगर हकीकत में ख्वाब निकले। मैं मुतमैन हूँ कि लब पुशाई से मैंने हद्दे अदब न तोड़ी। मैं मुतमैन हूँ कि लब कुशाई से मैंने हद्दे अदब न तोड़ी। वो इस पे खुश है कि आज उसके सवाल सब लाजवाब निकले। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का इंतखाब निकले। हमी को अच्छा बताया सब ने, हमी ज़्यादा ख़राब निकले। एक गज़ल के चंद शेर तरन में पेश करता हूँ, मुलाहजा कीजिएगा।

भी अजब लज्जत थी, दर्द सर में भी।

0: अभी आप जनाब अकील नुमानी के कलाम से महजूज हो रहे थे और इसी के साथ अपने मेज़बान फरीदुल्ला खान को आकाशवाणी रामपुर के मरकज़ से दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आदाब।
1: अभी आप समाअत फरमा रहे थे उर्दू प्रोग्राम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 9:50 हुए हैं। अब सुनिए उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तबला और पखावज पर जुगलबंदी। तबले पर हैं मुन्ने खां और पखावज पर रामजी लाल शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत तबला और पखावज पर युगलबंदी। तबले पर थे मुन्ने खां और पखावज पर रामजी लाल शर्मा। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब समय है फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम का, जिसका नाम है आपके अनुरोध पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम में पहली फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी साथियों ने। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश। ग्राम थुर्रा बांधा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेतराम साहू, भूपेंद्र साहू। रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, संजय महोबिया, नंदनी, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, डॉली, देवराज, भैयू, दादा और इनके परिवार के सभी सदस्य। शिवपरम कॉलोनी खंडवा से वी एस महोबिया और कमला महोबिया। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहुद्दीन, यासफुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान लल्ला, आजमीन, गुड़िया, अब्दुल और इनके परिवार के सदस्य। बिरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन, धीरज। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारका, हार्दिक और वंश बत्ता। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। बोरका मालेगांव से दत्ता घयाल, सुनीताबाई घयाल, सानिका घयाल और गजानन घयाल। मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहारकर, सुनील, साहिल, सुजाता पोहारकर। जाफराबाद जिला जालना से श्री सुधाकर राज जाधव, प्रशांत, जागुताई, साक्षीताई, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्रणाली, सानवी और इनके परिवार के सभी सदस्य। भटिंडा रोड डाबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और इनके परिवार के सभी सदस्य। ताजपुर मोरवा से भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना, पुंजराज, आर्यन, आरती, आकर्षण, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और इनके परिवार के सदस्य। महाराष्ट्र चंगोली से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के और उत्तम जमदाड़े। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, चेतेक विरक, मीका विरक। कृष्णनगर टीवी टावर से नाना डोंगर विंदे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर विंदे। बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग, प्रदीप, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान और इनके परिवार के सभी सदस्य। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा,

से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम और इनके परिवार के सभी सदस्य। कालका से शुभचंद्र बजाज, बजाज साहिल, बजाज बिट्टा बजाज, सेक्टर 67 मोहाली से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और इनके परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत की फरमाइश भेजी है जिला कोल्हापुर से तुषार, कुरुणे, प्रसिक, एकता, मेघना, उत्कर्षा, अरुण और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। श्रोताओं, आप सभी की पसंद है कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाजों में। आप सभी ने सुना चाहा है कुली नंबर 1 का ये गाना।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके अनुरोध पर अपने रेडियो साथी अंकुर राजपूत के साथ। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी श्रोताओं ने। मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से इंतजार राही, शादाब राही, महताब निशा, सिकंदर राही, साहिल अंसारी, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार, बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन, निजामुद्दीन, मोहम्मद, जमालुद्दीन, सादिया, अक्सा और हम्माद, मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगना बरेली उत्तर प्रदेश से बेनी सिंह सागर, पन्नी लाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, राजेश, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, ओमवती भारती, खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश, प्रथव सिंह और इनके समस्त साथी, सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, पार्थिक, सोनाली, कृष्ण, पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही, स्वाति और समस्त मौर्य परिवार, बलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल धर्मपाल, वीर सिंह लाटी, विवान, लखविंदर सिंह, संधु, महावीर, गुरचरण गरोवर, रमेश मिगलानी और समस्त साथी, रंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चौडोंगपुरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य, मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, प्रियंका, पूजा, लिलू, ऋतु, ऋषभ और इनके परिवार के सभी सदस्य, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन निशा, असलम हुसैन, महमूद खान, बीवीपुर से मकसूद हुसैन, नाजिम अली और इनके सभी साथी, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक, मोहम्मद शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री, पटियाली रोड गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से पप्पू भाई बिजली वाले, अफसाना बेगम, महजवी शेख, एम फारूक शेख, फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला शेख, क्षमा परवीन, अलकमर बेगम, मिर्जा नसरीन बेगम, थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खान, पीडब्ल्यूडी वाले, शाहिदा परवीन, इमरान, रेहान, इकराम, समीना, आसिफा, शबीना और इनके परिवार के सभी सदस्य, ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी, नसर अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी, बेहड़ी से अंजुम भाई, खालिदा बेगम, कहकशा, दानिश, आदिल, शफक, डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा, जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मीना मुन्नी, पवित्रा, आकांक्षा, आंचल।

अजय आकांक्षा और इनके परिवार के सभी सदस्य। दौलत बाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनेद अब्बासी। एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लाम उन्निशा, शकील अहमद, सलीम अहमद, डॉक्टर शाहबाज, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। गांधी समाधि रोड से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन, रूमा, बॉबी, शमा, मिक्की खान, बुशरा खान, आसिम खान। इन्हीं के साथ जिला अस्पताल के पास से रामपुर से हैं कजन खान, शमा परवीन, शमशद अली अजम, गुलफ शाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार, हबीब अहमद इदरीसी। श्रोताओं, आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में उदित नारायण को।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें भेजी है हमारे आप सभी साथियों ने। जातू का किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, चांदनी नाज। परमिलागंज आलौट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश, ऋषि और इनके परिवार के सभी सदस्य। जामरून से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, कुमारी सांधवी जोशी, साथ में हैं परभणी हुन और गणेश हारगांवकर। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन, रोजी, परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर। खुज्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। अजीत नगर मलौट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत कौर, गगनदीप कौर और रौनक दीप कौर, साथ में हैं इनके समस्त साथी। ग्राम हरनगला मंदिर के पास स्वार से नब्बन खान, इब्बन खान, नाजिम खान, सलमान खान, शाहरुख, आरिश और इनके परिवार के सभी सदस्य। सदर अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर यूपी से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलता मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, प्रियांश, शीतल, पूजा, कविता, अंश, गौतम और इनके परिवार के सभी साथी। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जौंधले, आरती जौंधले। जरूर वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब वड़ोदे, मीनाक्षी चरफे, रजनी कनीरे, चंद्र प्रभा वड़ोदे और समस्त वड़ोदे परिवार। ये फरमाइश हमें भेजी है बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन, आसमा फकीर। इन्हीं के साथ हैं बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है हीरो नंबर वन में उदित नारायण और साधना सरगम को।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संबंध
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
1: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
2: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
1: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
2: नमस्कार। एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
1: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
2: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
1: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गाँव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
1: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगले

0: टी कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी? हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन तथ्य कुछ और है
1: जी।
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे?
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात, क्या है?
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है
1: जी।
0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: अजीत जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे
1: जी,
0: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो ये है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी,
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।

0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह

0: किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
1: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
0: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
1: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
0: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
2: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
3: चलो
4: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
2: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
5: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
3: चलो चलो चलो चलो,
6: अरे चलो चलो चलो, चलो मुझे
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया ये।
2: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
5: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
2: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
5: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
2: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
5: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
2: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
8: लुई पाश्चर
9: सर,
8: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
9: कहिए सर।
8: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहाँ बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
9: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
8: ठीक है।
5: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के

0: बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है, और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात यह है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा। हाँ, इंजेक्शन लगा दूँ?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी, और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
0: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर, ये टेलीग्राम।
3: अच्छा, लाओ दिखाओ।
5: अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
5: देखो, टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सर।
5: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
5: हाँ चार्ल्स।
0: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
1: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
6: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
5: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
6: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
5: देखिए आप,
6: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
5: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
6: मेरा अच्छा, बेटा।
5: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
0: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
1: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
0: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
1: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
0: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
3: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट इनसेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट always working towards the improvement of the human condition.
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग
10: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
11: मैं प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
12: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
11: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
12: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, ना क्षय होता है तुम्हारा और ना अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
11: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
12: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
13: से नो टू प्लास्टिक।
10: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 11 बजे हैं। अभी आप हमारी प्रथम सभा के प्रसारण सुन रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनते सुनाते 90 साल की भाग संख्या 2।
14: सुनते सुनाते 90 साल, आकाशवाणी रामपुर का विशेष कार्यक्रम जो समर्पित है आकाशवाणी के 90 वर्षों के स्वर्णिम सफर को। कार्यक्रम के पहले भाग में भारत के विभिन्न राज्यों के श्रोताओं से एक मुलाकात हुई। हमने जाना कि कैसे आकाशवाणी जन जन की लोकप्रिय वाणी बना, देश के कोने कोने तक अपनी आवाज के जरिए लोगों के दिलों में बनाई खास जगह। इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए आज के इस दूसरे भाग में हम लेकर आए हैं आकाशवाणी की 90 वर्षों की इस यात्रा में श्रोताओं की सहभागिता की कहानी, खुद रेडियो सुनने वालों की जुबानी।

नमस्ते प्रणाम, मैं संतोष खड़से बोल रहा हूँ यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से। तो आकाशवाणी के 90 वर्ष का ये जो सुरीला लंबा और यादगार सफर है, तो इस सफर के सफल प्रसारण हेतु हम आकाशवाणी रामपुर परिवार को और पूरे आकाशवाणी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और सभी श्रोता साथियों को भी ये स्वर्णिम पल है इसकी भी हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। ये तो आकाशवाणी से जुड़ना हमारे लिए बहुत ही एक गर्व का एक पल है साहब जी, क्योंकि आकाशवाणी हमारे जीवन में बहुत ही अहमियत रखती है। पहले हम हमारे महाराष्ट्र के चुनिंदा और अधिकतर आकाशवाणी केंद्र सुनते थे, जबकि मोबाइल एप्लीकेशन पर सभी आकाशवाणी केंद्र के प्रसारण हमें जब से मिलना प्रारंभ हुआ 2019 से, तब से हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से जुड़े हैं। और आकाशवाणी रामपुर से जोड़ने में हमें अधिकतर मदद मिली सत्येंद्र कुमार चंचोलिया जी, जो कि उत्तर प्रदेश के ही एक वरिष्ठ श्रोता है। उन्होंने हमें यह सलाह दी थी कि भाई आकाशवाणी रामपुर से आप जुड़ सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी केंद्र उपलब्ध है। तो हमने भी आकाशवाणी का जो ऐप था वो डाउनलोड करके आकाशवाणी सुनना प्रारंभ किया रामपुर का। तो यहाँ के सभी उद्घोषक साथी से हमें और इनके यहाँ के कार्यक्रमों से, उनकी प्रसारण शैली से हमें बहुत ही लगाव जुड़ा। हमसे यहाँ के जो अधिकतर कार्यक्रम है हम नियमित रूप से सुनते हैं, जो कि है

0: मेरी माटी मेरा देश, दिल ढूंढता है, श्रोता मंच, शब्दावली मन भावन, बरगद की छाव में लोकगीतों का कार्यक्रम है, धरती गाती है, कानून और हम यह कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों से हम प्रतिदिन लाभान्वित होते हैं और आकाशवाणी का यह उद्देश्य ही रहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। श्रोताओं को लाभ पहुंचाना, श्रोताओं को शिक्षित करना, श्रोताओं को संस्कार प्रदान करना, यही जो आकाशवाणी का ये जो ब्रीद वाक्य है, ये वाक्य हम आकाशवाणी से प्रतिदिन पूरा करता हुआ देख रहे हैं और इसी कारण हमें आकाशवाणी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। और हम चाहते हैं कि इस 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आकाशवाणी भविष्य में भी अपनी यही जो किरदार है हमेशा निभाता रहे, श्रोताओं को लाभ पहुंचाता रहे, शिक्षित और ज्ञान प्रदान करता रहे और आकाशवाणी को हम अपने आने वाले सफर के लिए, आकाशवाणी के 90 वर्ष की परिपूर्ति के लिए सभी आकाशवाणी केंद्र को, भारत भर में जितने भी आकाशवाणी केंद्र है, उन सभी को और सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।
1: मैं ग्राम पजोनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, और मैं ये कहना चाहूंगा जो आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हुए हैं, ये वाकई एक अमूल्य स्थिति है जो हमने रेडियो के माध्यम से 90 वर्ष बिताए। और उस दौरान हुआ यह है कि हर एक आकाशवाणियों में अच्छे अच्छे कार्यक्रम प्रसारित हुए, और उन कार्यक्रमों में की सबसे बड़ी विशेषता हम ये कहेंगे या यूं कहें कि हम सभी को अच्छी लगी कि जब आकाशवाणी की शुरुआत होती है तो वो वंदे मातरम से हुई है। उसमें भी एक अच्छी बात ये रही मार्च के महीने से कि जो पहले वंदे मातरम का समय था वो छोटा था, छोटी कड़ी कहते थे, लेकिन अब उस कड़ी को और बढ़ा दिया है आकाशवाणियों ने और पूरे कड़ी अब बताने लगे हैं, और ये परिवर्तन बहुत अच्छा लगा हमें। इसमें श्रोताओं का ख्याल रखा गया है कि किस कार्यक्रम को कहाँ शिफ्ट किया जाए और वो कार्यक्रम शिफ्ट हुआ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हम ये कहें कि हमने तो आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखा है। ये आज का दौर है, आकाशवाणी सभी मोबाइल में आ गए हैं, मोबाइल ऐप पे आ गए हैं, जबकि पहले तो संबंधित रेडियो के माध्यम से ही सुन पाते थे। और ज्ञान में भी वृद्धि हुई है, क्योंकि कई कार्यक्रम ऐसे आए हैं, अब भी आते हैं, जो ज्ञानार्जन करते हैं। और अब हम ये चाहते हैं कि ये आकाशवाणी सभी कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया जिस तरीके से अभी तक आप लोग देते रहे हैं, इसी तरीके से हमें आगे भी सुनने को मिलते रहे। और एक और अच्छा हुआ है आकाशवाणी में, एक कार्यक्रम आता है उमंग, जो NCERT दिल्ली से संबंधित है। इस कार्यक्रम की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने देश विदेश की सारी जानकारियों को समेट के रख दिया है, और जो हम अपना पूरा पूरा देश नहीं घूमे, पूरा प्रदेश नहीं घूमे, और उमंग कार्यक्रम ने हमें देश क्या विदेश तक की जानकारी बताई है। आकाशवाणी ने जो कुछ दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है, और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद तो इसके लिए भी है कि जो 90 वर्ष पूरे किए हैं आकाशवाणी ने और काफी लोकप्रियता हासिल की है, सभी आकाशवाणियों को धन्यवाद देता हूं, और इस 90 वर्ष की बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं।
2: मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश सली बोल रहा हूँ, और मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है नॉर्थ त्रिपुरा। और खास करके देखिए आकाशवाणी के बारे में क्या ही बताएं, क्योंकि देखिए आकाशवाणी हम सब के लिए जीवन में बहुत ही प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। और खास करके देखिए जो आकाशवाणी का जो मूल मंत्र है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबसे ही हम सबको प्रेरणा मिलता है, खास करके हमारे जीवन में बहुत इसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे मिला है खास करके, क्योंकि देखिए 2007 में जब मैं आकाशवाणी से जुड़ा था और उन दिनों बिजली का बहुत दिक्कत पड़ता था, तो उसके बाद मेरे दोस्त की सलाह से मैंने रेडियो ट्रांजिशन खरीदा था, उसके बाद से ही मैं आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता रहता हूँ। उस समय न्यूज ऐप नहीं था हम सबके जीवन में, तो हम सब ने जो लोकल कार्यक्रम आते थे हमारे त्रिपुरा के 4 केंद्र है वही था। उसके बाद जब से न्यूज ऑन एयर ऐप के बारे में जब पता चली, उसके बाद हमने पूरे देश के कोने कोने से जुड़ गए, खास करके देखिए रामपुर भी जुड़े, उसके बाद लखनऊ जुड़े और वाराणसी जुड़े, मतलब कि देश के कोने कोने में सभी केंद्र हम सुनते रहते हैं। देखिए शिक्षा मनोरंजन ज्ञान वर्धक और किसान के बारे में ही जो वहाँ पर सिखाए जाते हैं, तो इन सब के प्रयोग में भी हम लाए हैं अपने जीवन में जो वहाँ से सिखाए जाते हैं, तो इन सब के लिए हम आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे आकाशवाणी हम सबको दिया है। और बोलने का तरीका ये सब भी आकाशवाणी से मिलता है, और खास करके देखिए आकाशवाणी के माध्यम से मेरा एक बहुत ही खास याद है जुड़ा हुआ है, क्योंकि आकाशवाणी बिलोनिया जो हमारे त्रिपुरा में है वहाँ पर एक क्विज कॉन्टेस्ट होता है, वहाँ पर मैं हिस्सा लेता हूँ, हर साल वहाँ पर होता है, और इसमें

0: सर इतने अच्छे और आनंदित होते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, समझ लीजिए सर। इसलिए आकाशवाणी को हमारी ओर से बहुत भरी भरी शुभकामनाएं और 90 वर्ष पूरे करने पर।
1: मैं डॉक्टर अख्तर सर बोल रहा हूँ पंडित नगर से। तो मैं आपका प्रोग्राम जो जब से कम 10-12 साल का थाना तक से मैं सुनता हूँ और शुभकामना कहता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं आपके, सभी श्रोताओं को और आपको भी आकाशवाणी परिवार को सब शुभकामनाएं।
2: सुरों की वो पहली गूंज, यादों की वो मीठी सी धुन, कुछ और अनकही अनसुनी दास्तानें जो रहे हैं इस ताने बाने को बोल।

0: नमस्कार, मैं आशुतोष देवनाथ त्रिपुरा कैलाश शहर से बोल रहा हूँ। आकाशवाणी का 90 साल हिंदुस्तान का सारे श्रोताओं को, आकाशवाणी का सारे स्टाफ को ढेर सारे बधाई शुभकामनाएं। आकाशवाणी का इतना पहचान की कारण आकाशवाणी का सर्वानीय स्टाफ की मेहनत और बढ़िया प्रेजेंटेशन। मैं रेडियो में 1986-87 से जुड़ा हुआ हूँ। 1987 में वर्ल्ड कप क्रिकेट कमेंट्री से मेरा रेडियो का शुरुआत अभी भी जारी है। उसी जमाने का बेस्ट कमेंटेटर सुशील दोषी जी का आवाज आज भी कान में गूंज रहा है। क्रिकेट का और गाना सुनने का काफी शौक रखता हूँ मैं। रेडियो में लाइव फोनिंग प्रोग्राम में पहले हमारा लोकल स्टेशन में मैंने पहली बार हिस्सा लिया। हमारा लोकल स्टेशन का नाम है आकाशवाणी कैलाश शहर। बाद में न्यूज AIR चालू होने का बाहर का स्टेशन में फोन लगाना शुरू। हिंदुस्तान का कुछ स्टेशन का नाम लेना चाहता हूँ जहाँ मैं जुड़ता हूँ। गैंगटॉक, लखनऊ, अयोध्या, रामपुर, ईटानगर, सिलचर, कोटा, बॉम्बे, विविध भारती, अगरतला, झालावाड़, कठुआ, शिलांग, विजयपुरम, दरभंगा, भोपाल। रेडियो का माध्यम से हिंदुस्तान का हर एक कोने कोने में श्रोताओं का साथ रिश्ता बन गया है। कुछ श्रोताओं का नाम लेना चाहता हूँ जिनको पूरा हिंदुस्तान पहचानता है। मध्य प्रदेश से राम बाबू जी, मांगीलाल जी, केसरी सिंह राजपूत, गजराज लोधी जी, भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति, उत्तर प्रदेश से शारदा प्रसाद जी, विजय पांडे जी, महाराष्ट्र से गंगाधर जी, त्रिपुरा से अविनाश तेली जी और भी है। और मैं आशा करता हूँ आकाशवाणी और भी आगे बढ़े, हम लोगों के लिए, श्रोता के लिए सेवा करे। और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ पूरा स्टाफ कुशल मंगल रखे ईशन में। नमस्कार।
1: जी, मैं करूला मुरादाबाद से अय्यूब खान बोल रहा हूँ और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी रामपुर और सारे ही केंद्रों को बधाई और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आकाशवाणी एक ऐसा साधन है जिसको वर्षों से हम सुनते चले आ रहे हैं। घर घर में रेडियो बजता है, घर घर में प्रोग्राम सुनने को मिलते हैं और आकाशवाणी से एक से एक बढ़कर प्रोग्राम हम तक पहुँचता है। और आकाशवाणी के अनाउंसर, अधिकारी या जो भी कार्यकर्ता है, बड़ी मेहनत से प्रोग्राम बनाते हैं, हम श्रोताओं तक उस प्रोग्राम को पहुँचाते हैं। हम आकाशवाणी के बहुत बहुत आभारी हैं, खासतौर से आकाशवाणी रामपुर के तो हम दीवाने हैं। यहाँ के अनाउंसर रहीम सक्सेना, सुरेंद्र राजेश्वरी और चंद्रमोहन सक्सेना जो आज हमारे बीच नहीं है, और विनोद आनंद दयाल, अंजलि वाजपेयी, ये पुराने अनाउंसर ऐसे रहे जो आकाशवाणी रामपुर की जान रहे हमेशा। मेरी तरफ से आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे होने पर ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: मैं बाबू यादव बोल रहा हूँ तारनाथ वाराणसी से, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी आकाशवाणी केंद्रों को मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इतना लंबा सफर आकाशवाणी ने तय किया और अपनी खूबसूरत प्रस्तुति से लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया कि इतना समय होते हुए भी आज भी आकाशवाणी लोकप्रिय बना हुआ है। और बताना चाहता हूँ कि आकाशवाणी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो अपने क्षेत्रीय भाषाओं में अपने श्रोताओं को कार्यक्रम देती है, तो इससे बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो, मेरा सफर आकाशवाणी से बहुत बचपन से है, और जब मेरे यहाँ आकाशवाणी वाराणसी केवल 2 घंटे चलता था तब मैं से सुन रहा हूँ, और आज इतने दिन सुनते हुए हो गया, तमाम बदलाव हुए और तमाम केंद्रों को मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा।

0: लगता है इतना अच्छा बदलाव हुआ कि मैं जब पहले दूर के स्टेशनों को सुनता था तो इतना दिक्कत होता था सुनने में, बड़े बड़े एंटीना लगाने पड़ते थे दूसरे मंजिल पर तीसरी मंजिल पर, तब जाकर उसका नेटवर्क पकड़ता था। और अब तो इतना बढ़िया हो गया कि आप किसी भी केंद्र को बहुत आसानी से अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से सुन सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि ये तो मेरे लिए बहुत खुशखबरी हुई कि मैं जिस केंद्र को नहीं जानता था उस केंद्र से भी जुड़ गया हूं, और ये मेरा सौभाग्य है। और आकाशवाणी प्रसार भारती ने इतना अच्छा मतलब व्यवस्था किया श्रोताओं के लिए कि आज अपने मनचाहे केंद्र को एकदम क्लियर आवाज में सुन पाते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मैं आकाशवाणी केंद्र से उस समय से जुड़ा हूं जब केवल 2 घंटे प्रोग्राम चलता था, और वो 2 घंटे प्रोग्राम के लिए भी सभी श्रोताओं को लाइसेंस लेना पड़ता था भारत सरकार का, तब वो सुन पाते थे। और उस समय मैं लाइसेंस जमा करता था, शायद 10 रुपए या 15 रुपए लगता था, और मैं जमा करता था वर्ष भर के लिए, और विदाउट लाइसेंस कोई सुनता था उसको पकड़ लिया जाता था। तो ये दौर था उस जमाने में कि रेडियो सुनने के लिए भी पैसा देना पड़ता था, और आज तो सरकार ने इतनी सुविधाएं दी कि कहीं किसी को केंद्र को सुनिए कोई समस्या नहीं है, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम अब तो आता है। पहले तो बहुत कम 2 ही घंटे प्रोग्राम आता था, 24 घंटे में 2 घंटे की ओर प्रोग्राम आता था। क्षेत्रीय भाषा में मैं सुनता हूँ, क्षेत्रीय भाषा में मुझे मेरी भोजपुरी है, तो मेरे यहाँ आकाशवाणी वाराणसी क्षेत्रीय भाषा में प्रोग्राम देती थी और बहुत अच्छा लगता था। और तो सभी केंद्रों को सुनता हूँ, अच्छा लगता है। अब तमाम केंद्र है, और बड़ी विशेषता है कि जितने भी केंद्र सुनता हूँ सबकी अपनी क्षेत्रीय भाषा है। जैसे मैं आकाशवाणी छतरपुर से जुड़ा हुआ हूँ तो वहाँ बुंदेली भाषा सुनता हूँ, अभी इंदौर से जुड़ा हूँ तो वहाँ मालवी भाषा सुनने को मिलती है, आकाशवाणी जबलपुर से सुनता हूँ वहाँ से भी बुंदेली सुनने को मिलती है। तो ये मुझे ज्ञान में वृद्धि होती है कि मैं सभी भाषाओं को सुनता हूँ और समझने का प्रयास करता हूँ, और बहुत अच्छा लगता है। मैं आखिर में बोलना चाहता हूँ कि आकाशवाणी की ऐसे ही यात्रा जो है चलती है आगे अनवरत, और हम लोगों को, हम श्रोताओं को अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनने को मिलते रहे, और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं।
1: मैं चंदूलाल सिंह रावल छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से एक नियमित रेडियो श्रोता हूँ। आकाशवाणी की 90 वर्षों की यात्रा भारतीय प्रसारण इतिहास की एक महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण कहानी है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हुई और तब से यह देश के जन जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। आकाशवाणी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में जागरूकता फैलाने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय के साथ इसने समाचार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, संगीत, नाटक और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग तक अपनी पहुंच बनाई है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को नई तकनीकों और योजनाओं की जानकारी देकर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में आकाशवाणी का योगदान सराहनीय रहा है। आकाशवाणी ने भारतीय भाषाओं, लोक संस्कृति और शास्त्रीय संगीत को संरक्षित प्रचारित करने में भी अहम भूमिका निभाई है। डिजिटल युग में भी मोबाइल ऐप और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के जरिए यह नई पीढ़ी से जुड़ रहा है। आज 90 वर्षों की यात्रा पूरी करने के बाद भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, विविधता और जन सेवा की भावना के कारण देशवासियों के बीच एक भरोसेमंद माध्यम बना हुआ है। मैं आकाशवाणी के सभी अनाउंसर साथियों एवं तमाम रेडियो लिसनर्स एवं मेरे पूरे देशवासियों को मैं आकाशवाणी की इस उपलब्धि के लिए दिल से बधाई देता हूं।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र कन्हैया है, मैं मांसूरी नगरी चौक मोजार पीलीभीत से ताल्लुक रखता हूं। और आकाशवाणी को पूरे 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई, और यहां के सभी कर्मचारी, अधिकारी और जितने भी उद्घोषक हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अगर देखा जाए तो मैं बचपन से ही आकाशवाणी से जुड़ा हूँ। रामपुर मेरा ननिहाल है, मुझे नानी से, अपनी माँ से, पापा से, सभी से रेडियो जो है वो एक विरासत में मिला है। मैं बचपन से रेडियो सुनता आ रहा हूँ। आकाशवाणी रामपुर के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो मुझे बहुत लुभाते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम है जो पसंद है, जैसे दिल ढूंढता है, गीत आपके नाम, हेलो फरमाइश, हेलो रामपुर, और सबसे पसंदीदा मेरी माटी मेरा देश। मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है वो विभिन्न पहलुओं को छूता है, इससे बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं जो लाभान्वितों को बताती हैं कि उनको क्या लाभ होंगे। मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि कार्यक्रम आते रहेंगे, अच्छे अच्छे कार्यक्रम और प्रस्तुत होते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।
3: ये तो रोज की रही है मुलाकातें, अक्सर खुलते रहे हैं यादों के दरीचे, खुशबू से महकते जज्बात, मजबूत धागे से बंधा एक रिश्ता, आकाशवाणी और श्रोताओं का।

0: मैं देवशंकर तामुदिया बोल रहा हूँ, डोंडी लोहारा बालोद जिला दुर्ग से। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बधाई, और ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहे आकाशवाणी। आकाशवाणी ने बहुत लंबी यात्रा की है और ये शतक बनाए, खुशी होगी हमको कि ये 100 साल भी इसी तरह मनाए। सभी आकाशवाणी सुनता हूँ, पहले तो सेल वाले रेडियो से सुनता था, अब मोबाइल में ऐप में आ गया है तो अब देश के सारे केंद्र को सुनने का मजा अलग हो गया। पहले कांटे मिलाओ ये करना रहता था तो उसमें बड़ा कांटे सड़क जाते थे, तो अब जो सुनने का मजा आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। रामपुर तो मैं सुनता हूँ, फेसबुक वाले में भी भेजता हूँ मैं, और गीत आपके नाम सुनता हूँ, 9:25 को प्रेरक प्रसंग आता है वो भी सुनता हूँ मैं। रेडियो सुनने पे वो मजा आता है जब कोई दूर दराज का बोले कि हाँ आपका नाम आया था वहाँ पर, तो बड़ा खुशी होता है उस समय ऐसा सुन के समझ के। मतलब हो संभालू तब से घर में रेडियो था और मैं सुन रहा था मैं, है ना, तो अब धीरे, उस समय तो मनोरंजन का कुछ ज्यादा साधन था नहीं, तो गीत आता था तो उसी में ध्यान चला जाता था, तो ऐसे सुनते सुनते शौक लग गया, देखे कि और लोग का नाम आता है इसमें, तो हमने भी शुरू किया पत्र पत्र भेजने का। तो इस तरह से एक केंद्र से शुरू होते होते सर देश के सारे केंद्रों में पत्र भेजना चालू कर दिया मैं, और रामपुर में भी अपना पत्र शामिल होता है और फरमाइश पूरी होती है, और व्हाट्सएप, आप तो व्हाट्सएप ईमेल भी लेते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। शुभकामना है कि आकाशवाणी बहुत फले फूले, अब तो डिजिटल माध्यम आ गया है लेकिन आकाशवाणी अभी भी श्रोताओं के दिल में अभी भी बसा हुआ है।
1: मैं हाजी गफ्फार खान आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी आकाशवाणी रामपुर से बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, वो यादें जो मेरे दिल में दिल के बहुत करीब हैं। आकाशवाणी रामपुर को मोहम्मद अली मोज साहब, रजनी जी, मनदीप जी, चंद्रमोहन सक्सेना जी, राजेश्वरी जी, असीम सक्सेना जी, सुधांशु नंदन जी और बहुत से नाम ऐसे हैं जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे हैं। आकाशवाणी रामपुर ने हम श्रोताओं को बहुत प्यार दिया है और वो प्यार हम कभी नहीं भुला सकते हैं। हम आकाशवाणी रामपुर के बहुत शुक्रगुजार हैं और एहसान मंद हैं, और कुछ यादें बहुत सी ऐसी हैं जो हमेशा याद रहेंगी। मैं बहुत छोटा सा था, मेरे भाई शन्ने मियां जो झलकियों में काम करा करते थे आकाशवाणी रामपुर की, जो आज भी महफूज हैं आकाशवाणी रामपुर में, उन्होंने मुझे एक रेडियो लाकर दिया था कि ले इससे आप प्रोग्राम सुना कर। उस वक्त आकाशवाणी रामपुर से बहुत कम प्रोग्राम आते थे, जैसे आपकी पसंद एक आध बार आ गया, और मुझे सबसे अच्छा प्रोग्राम जो है आकाशवाणी रामपुर का दिल ढूंढता है लगता है, और उसमें बराबर में चिट्ठियां भी लिखता हूँ। 90 वर्ष के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आकाशवाणी 100 वर्ष मनाए और हम यूं जश्न मनाए।
2: मैं जॉन डिकास्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से आकाशवाणी के 90 वर्ष की उपलक्षता में मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक ज्ञान देता है और हमारे को हर किस्म की जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टरी जानकारी हुई या फसल गांव वालों की जानकारी हुई, इससे हमें बहुत लाभ होता है। जब भी हम रेडियो पे रात को कोई ऐसा जब हम परेशान से होते हैं और कोई गीत सुनते हैं मधुर सा गीत, तब हमारे मन को बहुत तसल्ली होती है, बहुत ही अच्छा लगता है कि आदमी को हारना नहीं चाहिए, जैसे कि रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, ऐसे जैसे गाने सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। रेडियो जो है हर इंसान को आगे बढ़ने के बहुत अच्छे प्रोत्साहन करता है। युवाणी जैसे कार्यक्रम आता है, आदमी की जनरल नॉलेज बढ़ती है। 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं सभी अपने रेडियो साथियों को धन्यवाद देता हूँ।
3: सर मैं निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज से कल्लू भाई मिस्त्री आपका नियमित श्रोता हूँ। आकाशवाणी रामपुर से बहुत तो मुझे लगाव है और मैं आकाशवाणी रामपुर से बहुत प्रोग्राम सुनता हूँ, और मैं 90 साल पूरे होने जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों को, जितने भी आकाशवाणी रामपुर केंद्र के सब लोगों ने, उनको बधाई देना चाहूंगा, और आकाशवाणी रामपुर से जितने भी प्रसारण होते हैं वो सबसे बेहतरीन और नंबर वन में होते हैं सर। और पहली बात, आकाशवाणी रामपुर से जो प्यार मिलता है वो किसी केंद्र से नहीं मिलता है, हर श्रोता के लिए यहाँ बहुत प्यार मिलता है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, सबसे बेहतरीन प्रोग्राम रामपुर का है तो नंबर वन है दिल ढूंढता है, और एक प्रोग्राम आता है आपका पत्र मिला कार्यक्रम। और आकाशवाणी से जो ज्ञान है और बहुत बहुत अच्छे प्रोग्राम चलते हैं सर, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। आकाशवाणी की यात्रा ऐसी चलती रहे और अच्छे अच्छे कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित हो रहे हैं, श्रोताओं को मनमोहक करते हैं। और आकाशवाणी रामपुर से तो प्रोग्राम बहुत बेहतरीन।
4: सर मैं तेलंगाना स्टेट भुवनगिरी जिला चौटपल से बोल रहा हूँ। मैं रोज सुनता हूँ रामपुर स्टेशन उत्तर प्रदेश का रेडियो स्टेशन सुनता हूँ, बहुत अच्छा गाना सुनाते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं साड़ी और साड़ी भी बनाता हूँ, साड़ी बना के रेडियो में शाम के रख के मैं गाना सुनता हूँ। भैया किशोर कुमार मेरा का बेस्ट फेवरेट गाना है, और कुमार शान का गाना सुनता हूँ, लता मंगेशकर का, उदित नारायण, मैं अच्छा अच्छा गाना सुनाते हैं, मैं बहुत खुश हूँ भैया, धन्यवाद भैया।
5: नमस्कार, मैं मकसूद हुसैन जिला मुरादाबाद ग्राम दीपपुर से बोल रहा हूँ। मैंने आकाशवाणी से बहुत कुछ सीखा है, आकाशवाणी बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक केंद्र होता है, और आकाशवाणी रामपुर जो है ये तो हमारी जान है। यहाँ के प्रेजेंट, यहाँ के उद्घोषक बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यार मोहब्बत के लोग हैं, और हमारी आकाशवाणी जो है बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम देती है, जैसे कि युवाणी है, तोता मंच आता है, और युवाओं का प्रोग्राम आता है, महिलाओं का दिन में प्रोग्राम आता है, और तमाम मनोरंजन से भरपूर प्रोग्राम आते हैं। बहुत कुछ मिलता है यहाँ से सीखने के लिए, और बहुत ही कुछ यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। खेतीबाड़ी के कार्यक्रम सुनते हैं हम, दवाई लगाएं, कौन से बीज हम इस्तेमाल करें, कौन से बीज हम अपने खेतों में बोएं, समय समय पर उसकी जानकारी भी मिलती है। बहुत ही अच्छा केंद्र है, इसके प्रोग्राम हम बहुत काफी जमाने से, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो 45-46 साल सुनते हुए हो गए। जो सलील जैन जी थे, चंद्रमोहन सक्सेना जी थे, आज जो बदलाव हुआ है, आज बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। जो हम चाहते हैं उसी के आधार पर हमारे जो प्रोग्राम आकाशवाणी रामपुर के हैं, हमारी बात श्रोताओं की बात मानी जाती है, और हमारे प्रोग्राम मनचाहे देख सकते हैं, समय समय पर बदलाव होता रहता है। मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद, आकाशवाणी रामपुर हमारा हमेशा कायम रहे।
6: मैं शहबाजपुर कलान कस्बा पाटबड़ा से मजाहिर हुसैन अंसारी बोल रहा हूं। 90 साल के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं आकाशवाणी से 1985 से जुड़ा हुआ हूं। आकाशवाणी का ने बहुत कुछ हमें को दिया, और आकाशवाणी से हमें बहुत ही मालूमात में हमारी इजाफा हुआ, बहुत सारे रेडियो स्टेशनों से जुड़े हुए रहे। यह आकाशवाणी का ही एक माध्यम ऐसा था, इसने हमें अपनी तरफ खींच लिया, और इसी तरह जुड़े रहेंगे, यही हमारी तमन्ना है।
7: आकाशवाणी, कहानी आवाजों की दुनिया की, जहां एहसास जिए जाते हैं, जज्बात पिरोए जाते हैं, भावनाएं संभाली जाती हैं।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम सुनते सुनाते 90 साल की भाग संख्या 2, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।
9: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
10: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
9: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम की पहली शब्दावली हमारे पास आई है नमस्कार के साथ, सिंधोली मीरगंज बरेली से। भेजने वाले हैं जिशान वारसी, इमरान शेख, अयूब खान। इनका संदेश है, आकाशवाणी रामपुर के लोकप्रिय कार्यक्रम मनभावन के सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम अपने मधुर गीतों, प्रेरणादायक विचारों और मनोरंजक प्रस्तुतियों के माध्यम से हमारे जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता है। आइए हम सभी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, अपने सपनों को साकार करें और अपने आसपास खुशियों का वातावरण बनाएं। धन्यवाद। इसी के साथ इन्होंने एक सकारात्मक विचार भी भेजा है, जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, यदि हमारे विचार सकारात्मक हैं तो हर कठिनाई अवसर में बदल सकती है। आशा, विश्वास और मेहनत ही सफलता की सच्ची कुंजी है। ये लिखते हैं, हर सुबह नई उम्मीदों का पैगाम लाती है, जिंदगी हर कदम पर कुछ सिखाती है, मुस्कुराकर चलो राहों में दोस्त। सकारात्मक सोच ही मंजिल तक पहुंचाती है।

श्रोताओ, आप भी हमें अपनी शब्दावली भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.com और कार्यक्रम का नाम है मन भावन।

0: कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमारे पास आई है। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से भेजने वाले हैं लाल मोहम्मद अंसारी। लिखते हैं, आज हमारे देश में कई जगह नफरत की चिंगारी सुलगने लगी है। क्यों लोग एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से देखने लगे हैं? क्यों हमारे दिलों में नफरत पैदा हो गई है? आज हम किसी से अच्छे लफ्जों में बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या हो गया है आज इंसान को जो इंसानों में हमदर्दी खत्म हो गई है? क्यों हमने अपने आप को इतना कठोर बना लिया है? क्या हमारे अंदर की इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है? हम वही हैं जो एक दूसरे के दर्द को समझते थे। हम वही हैं जो एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखते थे। हम वही हैं जो एक दूसरे के काम आते थे। हम वही हैं जो एक दूसरे को गले लगाते थे। हम वही हैं जो एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे। हम वही हैं जो एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल होते थे। हम वही हैं जो एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चलते थे। तो फिर आज ये दूरी क्यों? फिर आज ये नफरत क्यों? आइए हम सब मिलकर दिलों से नफरतों को हटाएं और पहले जैसा माहौल बनाएं। हम पहले भी एक थे और आज भी एक हैं।
1: नफरत

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन, श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित अपने रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत के साथ। कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमारे पास आई है गांधी समाधि रोड रामपुर से। भेजने वाले हैं हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना। लिखते हैं, जी हाँ दोस्तों, मेरी बेबसी पर जो ढलते हैं आंसू, निगाहों में आकर मचलते हैं आंसू। गमों से जो होती है लवरेज आंखें, तो हंसते हैं हुए खुद निकलते हैं आंसे आंसू, तो हंसते हुए खुद निकलते हैं आंसू। गमे हिजर में रात कटती है अपनी, गमे हिजर द्वार आमे पलते हैं आंसू। वो वादा भी करके जब आते नहीं हैं, बड़े मुश्किलों से बहलते हैं आंसू। कभी मुस्कुराते कभी दिल दुखाते, कई रंग अपना बदलते हैं आंसू। किसी दिल पर होती है हद जब सितम की, तो आहों के शोलों में जलते हैं आंसू। नहीं साथ छोड़ा कभी जिंदगी की, मेरे साथ ही साथ चलते हैं आंसू। बुलाने से जब आते नहीं वो, संभलते संभलते संभलते हैं आंसू। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमारे पास आई है मुंबई से। भेजने वाले हैं अनु बरजातिया, शमशुल खान, अनुराज बनारा। लिखते हैं, रेडियो पर चंद अल्फाज। रेडियो वो दोस्त जो बिना देखे दिल से बात करता है, आवाज की डोर से रिश्ते जोड़ता है। ना चेहरा ना तस्वीर, बस लफ्जों का जादू। आज FM की चकाचौंध है रेडियो का सच। TV आंखों के लिए, मोबाइल उंगलियों के लिए, पर रेडियो सिर्फ दिल के लिए बना है। आंख बंद करो, आवाज सुनो और देखो कैसे पूरी दुनिया नजर आती है। रेडियो मतलब तन्हाई का साथी, सफर का हम सफर। खेतों में काम करने वालों का गीत, सरहद पर खड़े फौजी की फरमाइश। आकाशवाणी के 90 साल पर कुछ लाइनें इन्होंने लिखकर भेजी हैं। 90 बरस से गूंज रही है जो सदा, हर दिल में बसती है वो आवाज़ वफा। गांव की चौपाल से लेकर शहर की छत तक, बिन तार के रिश्ते जो तूने बनाए, लम्हों को तूने इतिहास बनाया। युद्ध में हौसला, शांति में तराना, हर मौसम में तूने देश को गाया। 90 साल की हुई ये आवाज, पर जज्बा आज भी जवान है। पतझड़ आए या तकनीक का तूफान, तूने हर दौर में नया सुर सजाया। 90 साल नहीं, ये तो बस शुरुआत है, अभी तो तुझे हर दिल तक जाना है। आकाशवाणी सिर्फ रेडियो नहीं, हिंदुस्तान की धड़कन है।

कार्यक्रम मन भवन में ये अगली शब्दावली हमारे पास आई है। राजद्वारा कोठी अफसर आला रामपुर से भेजने वाले हैं रूमा खान, बॉबी खान, सुभान, मदीहा गुलफशां, जीनत अमान, शबनम अब्बासी, शमा परवीन। लिखते हैं, जी हाँ दोस्तों, दुनिया एक इंतहाई कमरा है जिसमें हर उम्मीदवार मुकर्रा वक्त तक रहता है। जिंदगी इम्तिहानी कापी की तरह है जो हर उम्मीदवार के पास होती है। ये उम्मीदवार की अपनी मर्जी है कि उसको किस तरह इस्तेमाल करता है। मुआशरा किताब की तरह होता है, उस किताब से वही सीखा जा सकता है जो उसमें तहरीर होगा। इंसान पेंसिल की मानंद है जो हर साइज और हर रंग की होती है, जो अच्छा लिखती है और बुरा भी। तालीम उसी मिसाल पन की तरह है कि जैसी है, जो पेंसिल को छील कर उसकी खूबसूरती में इजाफा करती है।

श्रोताओं, कार्यक्रम की अंतिम शब्दावली हमारे पास आई है ईदगाह गेट मुरादाबाद से। भेजने वाले हैं शफी अहमद अंसारी, रईस दुल्हा अंसारी साहब और इरम खान। लिखते हैं, ईद मुबारक के इस खूबसूरत मौके पर दिल से यही दुआ है कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी को खुशियों और राहतों और आसानियों से भर दे। आपके हर दिन में सुकून हो और लम्हे मुस्कुराकर होठों से सजा रहे। और हर मुश्किल आपसे दूर होती चली जाए। अल्लाह आपको रिज्क में बरकत दे, सेहत कमल अता करे और आपको वो सब अता करे जिसकी आपको कहवा ऐश। वो आपके घर में हमेशा मोहब्बत, इत्तेफाक और खुशहाली कायम रहे और आपके अपनों के साथ ये खुशियाँ सलामत रहे। ये ईद आपके लिए नई उम्मीद, नए ख्वाब और नई खुशियाँ लेकर आए। आपकी हर दुआ कबूल हो। और साथ में इन्होंने एक गीत की भी फरमाइश की है। फिल्म का नाम है बेजू बावरा और गीत है ओ दुनिया के रखवाले।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भवन, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 12 बजने वाले हैं, अब अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आदिवासी छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों से बात की। इस अवसर पर राष्ट्रपति उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुंचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं, अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमा की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमा की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमा से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमा के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमा की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
3: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
1: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं आप सुनिए लापता व्यक्ति के संबंध में सूचना।

सहकारी निरीक्षक थाना गजराला जनपद पीलीभीत, हमें सूचित करते हैं कि रागनी मंडल, पत्नी हर्षद मंडल, निवासी ग्राम कंजा हरैया थाना गजराला जनपद पीलीभीत, विगत दिनांक 27 अप्रैल 2026 से लापता है। इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष, शरीर की बनावट सामान्य, ऊंचाई 4 फुट 5 इंच, चेहरा गोल है, रंग सांवला है, आंख सामान्य है, पहनावा साड़ी ब्लाउज और पेटीकोट पहना हुआ है और ये 26 अप्रैल से लापता है। ये निवासी हैं माला कॉलोनी कंजा हरैया थाना गजराला जनपद पीलीभीत। यदि किसी को इनकी जानकारी हो अथवा इनके बारे में पता चले तो कृपया हमें इस पते पर सूचित करें। प्रभारी निरीक्षक थाना गजराला जनपद पीलीभीत।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत आपके नाम।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म का नाम है बाजार। आवाज है लता मंगेशकर और तलत अजीज की और फरमाइश हमारे इन सभी श्रोताओं की। हमें ईमेल लिखकर भेजा है आजाद रोड सनावत से मोहम्मद असलम खत्री, मोहम्मद फारूक खत्री, मोहम्मद सिद्दीकी खत्री, मोहम्मद फारूक, आफिया राफिया, मोहम्मद अदनान खत्री। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। राजस्थान से है सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष। कुमार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुमार। और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर। आदाब नमस्कार के साथ ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है फातिमा कलानी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाहिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से, जुनेद मुजावर, सुबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर, जैनब मुजावर। सनावत से है शेख मूसा मोहसिन। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से है अंता भगत, अरुणा भगत, सरोजना भगत, चेतना भगत। और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। ग्राम महेशपुर खेम से है तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार। एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रुधान खुराना। शास्त्री नगर बीर शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल और सोनिया सपकाल। इन्हीं के साथ हैं विशाल सपकाल। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, इनके पिताजी हैं नानक चंद्र मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का एक गीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम अपने रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत के साथ। और कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है। ग्राम लसूड़िया पाता, तहसील नसिंगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी। और यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांद, छत्तीसगढ़ से हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू।

नमस्कार के साथ ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है राजधानी रायपुर से। नीलम एक नीलम डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दोविया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। ग्रामवा पोस्ट मुंगेसापुर कानपुर देहांत से हैं रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया। और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। हरियाणा से हैं अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोट, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। मजनवा टीला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है चांदनी, आवाज है सुरेश वाटकर और अनुपमा देशपांडे की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम अपने रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है धन दौलत और आवाज है किशोर कुमार और आशा भोसले की। ये गीत सुनना चाहा है। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिल हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य। मधुबनी बिहार से है नवीन सिंह, ज्योति सिंह, कपिलेश्वर प्रसाद गुप्ता, भूलिया क्रांति गुप्ता, रानी सिंह, मेनका सिंह। माहरा दरवाजा एटा से है नवी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनव अब्बासी, यशव अब्बासी। सिकंदरा राव से हैं मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। मुंदीचक भागलपुर बिहार से हैं दिलीप कुमार सोनी और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। अहमदनगर खेगांव खंडवा से हैं कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली, वेदिका फूलमाली। शाहनगर यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतना मनवर, रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। मुराला महाराष्ट्र से है विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। मेरठ कांड से है दिग्दर्शन और कविता गौड़। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बड़ाणा। और सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। यही गीत हमारे इन सब श्रोताओं के नाम। गांधी समाधि रोड रामपुर से हैं हाजी गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, रूमा खान, मदीहा खान, सुभान खान, फिरोज खान। और यही गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। गंज ढुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, नई बस्ती गंज ढुंडवारा से। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। पाखुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णामानंद, सत्यमानंद। बोहरा गाची पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। भटीडा रोड मंडी डब्वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। गीत सुनना चाहते हैं। मित्रनगर बीट शहर से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, आदित्य बंसोड़े, वैभव शिंदे। हिल स्टेशन खंडारा से आकाश सरोदे, प्रिया सरोदे। और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। जसपुर उत्तराखंड से है रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर। हमारे श्रोता हैं फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से बलविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, बलवीरिंदर सोड़ी। और चंडीगढ़ से हैं यश कुमार वर्मा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम, और कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ईमेल भेजा है मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। अनारकली बाजार जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। यही गीत हमारे इन सब श्रोताओं के नाम, रज़ाक, मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, जिशान खान, ये हमारे श्रोता हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से। गीत सुनना चाहा है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, रदावली जिला मुरादाबाद से। श्रोताओं, आप भी हमें

उन्हें गीतों की फरमाइश लिखकर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है गीत आपके नाम AIRRampur@gmail.com। और यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम बोरखेड़ा पितामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश मूड़त। और गीत सुनना चाहते हैं जिला समस्तीपुर बिहार से विनय कुमार मिश्रा, विनीता मिश्रा, गुंजन छोटू और लल्लन मिश्रा। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से हैं श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। बाबा कुटी रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी चौहान, रितेश, उत्कर्ष चौहान और डुग्गू। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। जिला मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खर्द से राजा हसैन, शाहिद हसैन, आदिल हुसैन, मोहम्मद रयाज, रजिया नूर। यह गीत सुनना चाहते हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवावकर, निर्मला नहावकर, विशाल सोपान तायडे। मलकापुर से हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुहेरकर। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, युवान और आर के राजा। मोताला बाजार से हैं बबलू बेलदार, क्षमा कीजिए बबलू ठेकेदार, शेख शागीर, शेख वजीर, सोहेल शेख। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। संभलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार। ग्राम पंचायत बठेणा पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा, प्रहलाद, मिथिलेश वर्मा। और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता, गीता। विजय रतनमाला ओम भैया मोताला महाराष्ट्र से। गांव नगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

0: जागिए श्रीमती जी, आंखें खोलिए।
1: क्या चाहिए?
0: अरे भाई देर हो गई।
1: तो मैं क्या करूं?
0: कॉफी, कॉफी चाहिए।
1: कॉफी, कॉफी और मैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम अपने रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत के साथ। और कार्यक्रम का ये अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर, और जो अभी आपने गीत सुना उसके गायक कलाकार थे किशोर कुमार और आशा भोसले। फिल्म का नाम था हैसियत। और ये कार्यक्रम का जो अगला गीत है इसमें गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम। फिल्म का नाम है लव स्टोरी। ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। वाडी खाम गांव से हैं अनंता वाड़े, रमेश्वर वाड़े, शुभम, साक्षी, खुशी, समस्त वाड़े परिवार। और

ये हमारे श्रोता हैं मॉडल टाउन करनाल से माया कुमार, सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, मीनाक्षी तिवारी, गुवाहाटी आसाम से हैं हरेन पांड्या, नरेन पांड्या, वीरेन पांड्या। हमारे श्रोता हैं इन श्रोताओं का पूरे नाम तो हमें नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, ये ईमेल हमें प्राप्त हुआ है स्टेशन रोड जमशेदपुर से, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी, गोलाबाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से हैं राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरनाल सिंह और अविराज सिंह। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायडे, वसंत राव भोजने, पीएस नहावकर, तुषार करांगले। और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। बोरखेड़ा प्रतामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, ये मैसेज हमें दोबारा से प्राप्त हुआ है। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। नाभा जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। मनाली हिमाचल से हैं हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेवी, डेविस, विमला और सतीश अनेजा। ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली से जिला बरेली से हैं शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर। नीलोफर फातिमा, मोहम्मद अल्ताफ। छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसिया फातिमा। और यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। पटेल नगर मलौट से हैं रमेश, डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप जजौरिया, आरजू जजौरिया, गुड्डू। यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से। और यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान। और ये अगला ईमेल हमें भेजा है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया ने। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फिल्म का नाम है लव स्टोरी।

0: ஓஹோ அப்படியா?
1: जैसे सब समझ गया।
2: ये गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम गंजडवारा उत्तर प्रदेश से है। मास्टर खिलू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से राधा नामदेव। नागपुर महाराष्ट्र से हैं कमल सहानी, मिसेस पिंकी सहानी, डॉक्टर अफजाल मलिक, संदीप मक्कड़। रामगढ़ कैंट झारखंड से हैं निप्पी सहानी और श्रीमती सुनीता सहानी।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत आपके नाम, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अब हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। आज नई दिल्ली में जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सही विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुंझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने

0: बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। सीबीएसई ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:05 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर यानी 1:15 पर श्रोता साथी सुनेंगे कार्यक्रम परिवार जगत। समय याद रखिएगा 1:15। आज चर्चा होगी परिवार के साथ छुट्टियां या पिकनिक मनाना। वार्ता में होंगे राजकुमार गोयल। विषय होगा जनजीवन को प्रभावित करती बढ़ती जनसंख्या, और साथ में क्षेत्र संकलित भी प्रस्तुत किया जाएगा, दिखावा और बजट। इसके बाद हेल्थ टिप्स में आप सुनिएगा संतुलित और पौष्टिक आहार के बारे में। दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम होगा सुनहरा दौर। इसमें आप सुनिएगा 70 के दशक के फिल्मी गीत।

0: आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:10 होने वाले हैं। अब इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित की जाएंगी।
2: इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला कुशीनगर की तरक्की को नई रफ्तार देने के लिए आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की लागत वाले 278 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने तमकोही राज में मुख्तलिफ महकमों की नुमाइश का मुआयना और स्कीमों के

0: काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सेलेक्शन होता है तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अफसरान को अहकाम देते हुए कहा कि हुकूमत की बहबूदी स्कीमों का फायदा हर अहल अफराद तक पहुंचना यकीनी किया जाए। कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक्किद जनता दर्शन में तकरीबन 200 लोगों से मुलाकात कर उनकी दिक्कतें सुनी। दिक्कतें सुनने के बाद वजीर आला ने दरख्वास्तों के तस्वीये के लिए मुतल्लिका अफसर और पुलिस अफसरान को अहकाम दिया कि सभी दिक्कतों का तस्वीया मुकर्रर वक्त में मुनसिफाना और पुर इत्मीनान होना चाहिए। मुल्क में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास प्रिंसिपल के तहत गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल जिक्र तब्दीली हुई है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों खवातीन और नौजवानों की बहबूद और बाइख्तियार बनाने के लिए कई जरूरी पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार गुज़िश्ता 12 सालों में खसूसी शोबे में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहा है। आज खवातीन बाइख्तियारी की सिमत में हुई कोशिशों पर एक खसूसी रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को मौजूदा पेन और पेपर की जगह कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहान मुनक्किद करने का मुतालिबे वाली अर्जी खारिज कर दी है। अदलिया ने कहा है कि कंप्यूटर मबनी री एग्जाम मुनक्किद करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इम्तिहान रद्द होने के बाद से कौमी एग्जाम एजेंसी पहले से ही चैलेंजेस का सामना कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल सिविल पुलिस और उसके मसावी ओहदों के लिए तहरीरी इम्तिहान 8, 9 और 10 जून को मुख्तलिफ अजला में मुतय्यन मराकज पर मुनक्किद होंगे। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज एडिशनल सेक्रेटरी भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड ने बताया कि ये इम्तिहान 2 शिफ्टों में मुनक्किद होंगे। 32,000 से ज्यादा ओहदों के लिए इस भर्ती से मुतालिक तफसीली मालूमात बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब कर दी गई है। लखनऊ मेट्रो भी अब वन नेशन वन कार्ड ला रहा है। इस कार्ड के होल्डर मुल्क के किसी भी शहर में चल रहे मेट्रो में सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने कार्ड में बैलेंस रखना होगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसी पखवाड़े में नया कार्ड लॉन्च करेगा। आज ज्येष्ठ महीने का 5वां बड़ा मंगल है। लखनऊ के अलीगंज वाके पुराना हनुमान मंदिर, नया मंदिर हनुमान सेतु, हनुमंत धाम, हजरतगंज वाके दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर समेत मुख्तलिफ मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वैड ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के इल्जाम में आजमगढ़ से एक नौजवान को गिरफ्तार किया है। दस्ते ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ दहशतगर्दाना तंजीम हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। और महकमे मौसमियात ने रियासत के मगरबी अजला में 4 जून तक कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। महकमे के मुताबिक इस दौरान रियासत के मशरकी अजला में मौसम खुश्क रहेगा। महकमे ने आने वाले दिनों में रियासत में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्ज हरारत में बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत। प्रस्तुत कर रही हैं प्रेरणा और सुनीता।

0: स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का परिवार जगत कार्यक्रम में, और मैं हूं आपकी रेडियो साथी सुनीता सिंह। कैसे हैं आप? हमें उम्मीद है श्रोताओं आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे। प्रेरणा
1: जी बिल्कुल, छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, मैं हूं प्रेरणा गुप्ता, स्वीकार कीजिए मेरा भी स्नेह भरा नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है परिवार के साथ छुट्टियां या पिकनिक मनाना।
0: बिल्कुल, और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के साथ कुछ पल बिताना किसी वरदान से कम नहीं होता है प्रेरणा। और देखिए, छुट्टियां और पिकनिक हमें अपने जो प्रियजन है, हमारा परिवार है, उनके साथ मनाना चाहिए, जो कि हम सबको एक करीब ले आता है, एक मुट्ठी में प्यार स्नेह सब बढ़ता है। तो परिवार को लेकर ही जो बाहर छुट्टियां मनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी बिल्कुल सही बात कही है आपने सुनीता दीदी। जब पूरा परिवार एक साथ कहीं घूमने जाता है या पिकनिक का आनंद लेता है तो हंसी खुशी के अनगिनत पल ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन भर याद रहते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा प्रेरणा। पिकनिक या छुट्टी मनाने का सबसे बड़ा लाभ ये है कि परिवार के सभी सदस्य खुलकर बात करते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, जिससे रिश्तों में अपनापन और विश्वास बढ़ता है।
1: और सुनीता जी, बच्चों के लिए भी छुट्टियां और पिकनिक बहुत खास होती हैं। उन्हें प्रकृति के करीब जाने, नई चीजें देखने और परिवार के साथ खुशियां मनाने का मौका मिलता है।
0: वहीं बड़ों को रोजमर्रा की चिंताओं से थोड़ी सी राहत मिलती है और वे तरोताजा महसूस करते हैं। छुट्टियां चाहे किसी दूर पर्यटन स्थल पर मनाई जाए या फिर किसी पास के पार्क में पिकनिक के रूप में, जरूरी यह है कि परिवार साथ होना चाहिए।
1: और श्रोताओं, मैं तो ये मानती हूँ कि खेल कूद और परिवार का साथ, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। छुट्टियाँ हमें नई जगहों, संस्कृति और लोगों के बारे में जानने का अवसर देती हैं। इससे हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही है और साथ ही सोच का जो दायरा है वो भी बड़ा होता है।
1: परिवार के साथ छुट्टियाँ और पिकनिक मनाने की बात ही कुछ और है। ये पल हमें अपनों के करीब लाते हैं और जीवन की खुशियाँ दे जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन, सार्वजनिक सुविधाएं, ये भी इनकी भी गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। इसका असर हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ मनोरंजन और पर्यटन स्थलों पर भी देखने को मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रेरणा। बढ़ती जनसंख्या आज एक महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है, जो जनजीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित कर रही है। और श्रोताओं, यही विषय है हमारी आज की वार्ता का, जनजीवन को प्रभावित करती बढ़ती जनसंख्या। और वार्ताकार हैं राजकुमार गोयल। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता के माध्यम से जानकारी।
2: दोस्तों, अगर आप इस दुनिया को देखें, लगभग 8 अरब लोग इस पृथ्वी पर एक साथ रह रहे हैं, जो इतिहास में सबसे पहली बार है जब ऐसा हुआ है। इंसान की संख्या 2023 तक 8 अरब हो गई है। इससे ये तो साफ होता है कि साल दर साल इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और कई जीवों की पूरी प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। इस बढ़ती आबादी के साथ भारत सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए वरदान है या अभिशाप? क्योंकि बढ़ती आबादी को बसने के लिए स्थान चाहिए, इसलिए लगातार वनों को काटा जा रहा है। उनको रोजगार देने के लिए, कारखाना लगाने के लिए भी वनों को काटा जा रहा है। कारखानों से तो प्रदूषण होगा ही, जब वन ही ना होंगे तो ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी और वायुमंडल में अशुद्ध वायु व धूल कण बढ़ते जाएंगे। इसका परिणाम तो मनुष्य भोग रहा है, प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और असमय भयंकर प्राकृतिक आपदा आने लगी है, जैसे बाढ़, साइक्लोन, भीषण गर्मी और सर्दी, असमय वर्षा आदि। फसल के साथ साथ जीव जंतु भी इसके शिकार हो रहे हैं और इसके कारण प्राकृतिक जैव संतुलन भीषण दौर से गुजर रहा है। इसके दुष्प्रभाव दैनिक जीवन से बढ़कर आर्थिक और राजनैतिक क्षेत्र तक हो रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो बढ़ती जनसंख्या के कारण कार्यबल में भी वृद्धि हो रही है, जिसके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसरों के सृजन की आवश्यकता है। आबादी में वृद्धि के साथ आवास और परिवहन जैसी आधारभूत अवसंरचना पर दबाव बढ़ेगा और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होगी। तीव्र शहरीकरण के कारण शहरों में भीड़भाड़ और अव्यवस्थित शहरी नियोजन जैसी स्थितियां पैदा हुई हैं। 2025 में भारत की जनसंख्या अनुमानित रूप से 1.46 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जो इसे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाएगी। हर साल 11 जुलाई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना और यह समझाना कि यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में यह मानवता के लिए गंभीर संकट बन सकता है। परिवार का स्वास्थ्य, बाल उत्तरजीविता और बच्चों की संख्या आदि माता पिता के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर से गहराई से संबंध है। इस प्रकार कोई दंपति जितना निर्धन होगा उसमें उतने अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति होगी। इस प्रवृत्ति का संबंध लोगों को उपलब्ध अवसरों, विकल्पों और सेवाओं से है। गरीब लोगों में अधिक बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि इस वर्ग में बाल उत्तरजीविता निम्न है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा हमेशा से उच्च बनी रही है। बच्चे आर्थिक गतिविधियों में सहयोग देते हैं और इस प्रकार परिवार की आर्थिक और भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भारत में जनसंख्या को किसी समस्या और उस पर नियंत्रण के संदर्भ में नहीं देखा है, बल्कि एक संपन्न संसाधन के रूप में देखा है, जो एक विकास करती अर्थव्यवस्था की जीवन शक्ति है। इसे समस्या और नियंत्रण की शब्दावली में देखना और इस दृष्टिकोण से कार्यवाही करना राष्ट्र के लिए अनुकूल कदम नहीं होगा। यह दृष्टिकोण अब तक की प्रगति को बाधित कर देगा और एक कमजोर बदतर स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के लिए जमीन तैयार करेगा। यह परिदृश्य उस उद्देश्य के विपरीत होगा जिसे आयुष्मान भारत जैसे कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त करने की इच्छा है। वर्तमान में 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों, दक्षिण भारत के सभी राज्य सहित में प्रजनन दर पहले ही प्रति महिला 2.1 बच्चों के प्रतिस्थापन स्तर के नीचे पहुंच चुकी है। इस प्रकार नियंत्रण के बजाय समर्थन की नीति अधिक कारगर होगी। किसी ने लिखा भी है, धरा ने कहा और कितना करोगे मेरा खनन, जनसंख्या नियंत्रण पर क्यों ना करते हो तुम मनन, जीव जंतुओं का भी करवाती है ये जो हनन, जगत का भी इसी ने ही तो बिगाड़ा है संतुलन, जंगल कटने का भी बनती है यही कारण, वातावरण में भी इसी ने फैलाया है यहाँ प्रदूषण, वायु में भी खत्म कर दी है जो इसने ऑक्सीजन, बीमारियों का भी ना होने देती है ये उन्मूलन, बेरोजगारी बढ़ाकर पैदा कर दी है इसने धरा पर उलझन, गरीबी व भूखमरी के दिखा रही है ये लक्षण, अपराध का भी कर रही है ये उत्सर्जन, युवाओं का नशे से कर रही है ये निरंतर पतन, भाई भाई में भी संपत्ति के लिए करवाती है ये जलन, परिवारों का भी करवाती है जो विघटन, सरकारें भी असमर्थ कर दी इसने जुटाने में संसाधन, कैसे करें सबके लिए अन्न का वो उत्पादन, आने वाली पीढ़ियों की है ये बहुत बड़ी दुश्मन, आखिर कैसे करेंगे वो अपना जीवन यापन, सभी देशों को मिलकर करना होगा चिंतन, अकेला नहीं कर पाएगा कोई इस पर नियंत्रण, सख्त कानून बनाने पर करना होगा मंथन, तभी कुदरत पर पाएगी मानव का पालन पोषण, फोगाट की कलम ने किया है ये वर्णन, जिंदगी में सभी को होने लगी है इस समस्या से घुटन। सभी का उद्देश्य है लोगों को बढ़ती जनसंख्या के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करना और यह समझाना कि यदि समय रहते इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में यह मानवता के लिए गंभीर संकट बन सकता है। लक्ष्य था दुनिया की तेजी से बढ़ती जनसंख्या की ओर ध्यान आकर्षित करना। धरती के संसाधन सीमित हैं, चाहे वो पानी हो, भोजन, बिजली या ऊर्जा। जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उतनी तेजी से संसाधनों की खपत भी हो रही है। अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो भविष्य में पीने का पानी और खाने के अनाज की भी भारी कमी हो सकती है। हालांकि भारत में प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 जन्म रह गई है, जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से नीचे है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के मुताबिक 2070 से 2080 के बीच वैश्विक जनसंख्या 9.4 से 10.4 तक पहुंच सकती है। ब्रिटेन के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के विशेषज्ञ डेविड सेटवर्थ का कहना है कि असली समस्या जनसंख्या नहीं बल्कि संसाधनों की बर्बादी और असमान वितरण है। उन्होंने महात्मा गांधी के एक कथन का हवाला देते हुए कहा, धरती सभी की जरूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन लालच को नहीं। अतः हम सबका कर्तव्य है कि अपने लालच को कम करें, जनसंख्या को नियंत्रित करें और प्रकृति को हरा भरा करने में अपना योगदान दें, अन्यथा आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि हम उनके लिए प्राकृतिक धरोहर छोड़कर ही नहीं जाएंगे।
1: श्रोताओं, ये थी वार्ता जनजीवन को प्रभावित करती जनसंख्या वृद्धि, और वार्ताकार थे राजकुमार गोयल। श्रोताओं, बढ़ती जनसंख्या के साथ संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है और लोगों के लिए खर्चों का संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रेरणा। और आज के समय में जहाँ हमारी जरूरतों की सूची लगातार बढ़ रही है, वहीं कई बार लोग सामाजिक दिखावे के कारण अपनी आय से अधिक खर्चा कर बैठते हैं, जिससे कि परिवार का जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है, उसमें जो है बहुत सारी आर्थिक समस्याएं परिवार में आ जाती है।
1: बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। ऐसे में हमें यह समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए और बजट के अनुसार जीवन जीने की आदत कैसे विकसित की जाए।
0: तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में आज हमने बात की है ज्योति रानी से। तो चलिए सुनवाते हैं ये क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता। विषय है दिखावा और बजट। श्रोताओं, घर का एक अच्छा बजट बनाने के लिए आपको अपनी आय के अनुसार बजट बनाना होगा। सभी खर्चे, चाहे वे जरूरी हों या फिर गैर जरूरी, उन्हें सूचीबद्ध करना होगा ताकि हम बचत निर्धारित कर सकें। और श्रोताओं, जो गैर जरूरी खर्चे हैं उनमें कटौती करके अपने बजट को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। कभी कभी हम दिखावे के चक्कर में अपने बजट से ज़्यादा खर्चा कर लेते हैं, जो हमारे घर के पूरे महीने के खर्चे को बिगाड़ देता है। तो श्रोताओं, आज इसी क्रम में बातचीत के लिए हमारे साथ हैं ज्योति रानी, और हम आपसे बात करेंगे बजट और दिखावा। ज्योति, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि घर का बजट कैसा होना चाहिए।
3: थैंक यू मैम। मैं बताना चाहूँगी कि अपने घर का बजट अपनी आय के अनुसार ही होना चाहिए
0: जी।
3: जैसी हमारी आय होनी चाहिए उसका लगभग हम अपने घर का बजट आधा खर्च करें।
0: बिल्कुल।
3: जिससे हमारे घर का बजट आधा खर्च होने के बाद आधा हम अपनी सेविंग्स कर सकते हैं
0: जी।
3: जो बच जाए तो वही हमारा असली बचत हो सकती है।
0: बिल्कुल सही कहा ज्योति। जैसे हमारी रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, और लास्ट में जब हम एक बिल बनाते हैं तो पूरे महीने का जब हम बिल बनाते हैं, जैसे कि बिजली है, किराया है, तो इन चीज़ों के बजट बनाकर ही हम उसकी बचत कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके हम बजट के रूप में अपनी आय को नियंत्रित कर सकते हैं?
3: जैसे बिजली का बिल हुआ, मकान का किराया हुआ
0: जी,
3: और अपना खान पान, भोजन, मनोरंजन के साधन, और जैसे अन्य बिल, और थोड़ा सा अर्जेंट आकस्मिक खर्चे जो होते हैं,
0: बिल्कुल
3: कभी भी आ सकते हैं, तो इसलिए हम इसको एक लिस्ट बना सकते हैं अपने बजट की
0: जी। और बचत का एक लक्ष्य होता है, जैसे कि हमें हर महीने कितना बचाना है, तो उस तरीके से भी बनाना चाहिए।
3: हाँ, जैसे बचत का अगर एक लक्ष्य निर्धारित करें तो हमें फिर अपने खर्चों को थोड़ा कम करना होता है, थोड़ा कटौती करनी पड़ती है।
0: बिल्कुल
3: जैसे कभी हम बाहर घूमने जा रहे हैं, महीने में 4 बार जा रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि हम एक ही बार अपनी फैमिली के साथ बाहर जा सकें,
0: बिल्कुल
3: बाहर खाना एक ही बार खाएं, 3 बार
0: बिल्कुल
3: हम बचाएंगे तो
0: बिल्कुल
3: वो हमारा थोड़ा बजट सही रहेगा उसमें।
0: ज्योति, देखा गया है कि हम कभी कभी हम खुद ही बड़े खर्चा फिजूल कर देते हैं और सोचते हैं कि चलिए आज छुट्टी है, अपने बच्चों को बाहर ले जाते हैं। तो एक तो बाहर के जो हमारा खाने पीने का खर्चा है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर ये चीजें जो है हानिकारक होती हैं। तो हमें अधिक से अधिक यही सोचना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने घर में अच्छी से अच्छी चीजें बना के अपने बजट के अनुसार खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, तो वो हेल्दी हेल्दी फूड भी होगा और हमारे जो
3: हाँ,
0: पैसे की बचत भी होगी।
3: उसको हमारे बच्चे शौक से भी खाएंगे
0: बिल्कुल
3: और फिर हमें ये विश्वास रहेगा कि ये हमारे हाथ का बनाया हुआ है और ये पूरा पौष्टिक है, वो हम अपने घर में बना के देंगे बच्चों को, तो फिजूल खर्ची भी बचेगी, आने
0: बिल्कुल
3: जाने का वो भी बचेगा हमारा
0: बिल्कुल
3: और समय भी बचेगा।
0: समय भी बचेगा। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो एक तो पैसे की खपत होती है, पैसे की, क्योंकि हम किराए से जाते हैं, ऊपर से जो वहाँ का खाने पीने का खर्चा वो ज़्यादा होता है। तो कभी कभी ज्योति ऐसा देखा गया है, समाज में रहते हैं तो हम भी सोचते हैं कि सामने वाला इतना खर्चा कर रहा है हर चीज़ में, चाहे वो घर का हो या फिर गाड़ी का हो या बाहर का हो, तो दिखावे के चक्कर में हम अपना जो है बजट बिगाड़ लेते हैं और ज्यादा ही खर्चा कर देते हैं। तो क्या ये सही है?
3: नहीं, ये चीज़ हम दूसरों की होड़ नहीं कर सकते हैं,
0: बिल्कुल
3: क्योंकि जितना हमारा बजट है हमें उसी के अनुसार अपने खर्च करने चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कि वो खर्च आधे से आधे हों। एक इंसान गाड़ी ले रहा है, 15 लाख की ले रहा है, 20 लाख की ले रहा है, और हमारा बजट एक स्कूटी का है, तो
0: बिल्कुल
3: हमें अपनी स्कूटी में भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए।
0: सही
3: इससे
0: बात
3: हमारे फिजूल खर्चे भी कम होंगे और फिर अधिक से अधिक हमारा पैसा भी बचत में जाएगा।
0: बिल्कुल।
3: जो
0: जैसे कि अभी जो थी आपने फिजूल खर्चे की बात करी, तो कौन कौन से फिजूल खर्चे हैं आप हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं?
3: जैसे दूसरों को प्रभावित करने के लिए बढ़िया बढ़िया घर की मरम्मत करानी हो
0: जी
3: गई
0: जी
3: और महंगे महंगे आभूषण हो गए कि एक तो पहन रहा है हीरे के तो हम भी उसकी देखा देख सोने के ना पहन करके फिर हीरे के पहने, और चाहे उसके चक्कर में हमारे सारा बजट खराब हो जाए, हमारे
0: बिल्कुल
3: घर में कुछ ना बचे, महंगी महंगी साड़ियां हुई, ब्रांडेड कपड़े हुए,
0: जी
3: तो ये सब हमारी फिजूल खर्ची के उसमें ही आता है।
0: बिल्कुल। और जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे शानदार पार्टी की, वो भी फिजूली खर्चा है एक
3: हाँ,
0: तरह का।
3: वो सब फिजूली खर्च होती है।
0: बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, अगर हम अपने बजट के अनुसार काम करेंगे तो जो हमारा महीने भर का बजट है, हमारा जो खर्चा है, वो भी हम अच्छे से कर लेंगे और हमारी बचत भी हो जाएगी।
3: बिल्कुल, बचत भी हो जाएगी, और सपोज करो कि भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं तो
0: जी
3: हमारी सेविंग्स ही काम आती है,
0: बिल्कुल
3: जो हम बचाते हैं अपने फिजूल खर्चों के चक्कर में ना
0: जी
3: करके अपनी सेविंग्स करेंगे, तो वो पता नहीं अचानक से कोई बीमारी आ जाए वो,
0: जी
3: क्योंकि
0: जी
3: ये इनविटेशन देके नहीं आती हैं,
0: बिल्कुल
3: तो इसलिए हम अच्छे से अपना कर पाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि हमारी जितनी आय है उस आय में ही हमें खर्चे करने चाहिए और भविष्य के लिए हमें बचाना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जिसमें हमें पैसे की जरूरत हो सकती है,
3: बिल्कुल
0: क्योंकि दुख और सुख लगा रहता है जीवन में, तो हमेशा बचत हमारे काम आती है। और तभी कहा गया है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, और अगर हमने चादर से बाहर पैर पसारे तो वो हमारे लिए ही
3: हानिकारक
0: हानिकारक है
3: होगा।
0: और वो हमें ही नुकसान देगी। तो ज्योति, आपने हमसे बात की और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जी, धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये था 6 संकलित कार्यक्रम, जहां हमारी रेडियो साथी सुनीता सिंह बात कर रही थी ज्योति रानी से, और विषय था दिखावा और बजट। और श्रोताओं, अब समय है थोड़ी सी संगीत यात्रा का, तो आइए बातों के सिलसिले को यहीं विराम देते हैं और सुनते हैं एक मधुर सा मनभावन सा गीत।

0: प्रेरणा गीत तो हमने सुन लिया, अब फिर से चलते हैं अपनी प्रोग्राम की ओर, जहां हम फिर से बात करेंगे अपने श्रोताओं से और फिर से एक क्षेत्र संकलित कार्यक्रम होगा हमारे प्रोग्राम में। तो जीवन में सादगी और समझदारी से जो किया हुआ जो खर्च होता है ना, केवल आर्थिक संतुलन बनाए रखता है बल्कि मन की शांति भी बनाए रखता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज के क्षेत्र संकलित का कार्यक्रम का जो विषय है वो भी यही है, दिखावा और बजट। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक और क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता, जहां हमारी साथी प्रेरणा गुप्ता बात करेंगी स्नेहा शर्मा से। तो आइए चलिए सुनते हैं ये भेंट वार्ता के माध्यम से जानकारी।
1: आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे।
2: जी मैम, मैं स्नेहा शर्मा बात कर रही हूँ मुरादाबाद से। मैं नोएडा सॉफ्टवेयर कंपनी में एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करती हूँ।
1: स्नेहा जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आज की दुनिया धीरे धीरे दिखावे की दुनिया बनती जा रही है, जहाँ लोग जरूरतों से ज्यादा बाहर की चमक धमक पर ध्यान देने लगे हैं, तो क्या आप हमें बताना चाहेंगी कि आज समाज में दिखावे की प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है?
2: देखिए मैम, आजकल दिखावा इसीलिए ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि उनकी पहचान उनके स्वभाव से नहीं है, बल्कि उनके कपड़ों, गाड़ियों, फोन और उनकी लाइफस्टाइल से होती है। और मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया ने इसे और ज्यादा बढ़ावा दे दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सिर्फ अच्छा और चमकदार हिस्सा दिखाने में लगा हुआ है, और देखने वालों को भी यही लगता है कि उन्हें इसी तरह दिखना चाहिए। यही वजह है कि लोग दिखावे वाली जिंदगी पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं।
1: दिखावा करने का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है?
2: मैं मानती हूँ दिखावा करने का सबसे बड़ा असर और सीधा सीधा असर हमारे बजट पर पड़ रहा है। जब कोई दिखावे के लिए महंगी से महंगी चीज खरीद रहा है तो घर का बजट अपने आप ही बिगड़ जाता है,
1: जी
2: और अत्यधिक खर्च से व्यक्ति अपनी बचत तक खर्च करने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार कर्ज भी लेना पड़ रहा है, और इसी के साथ व्यक्ति खुद भी मानसिक बोझ महसूस कर रहा है।
1: क्या आपकी राय में दिखावा जीवन को बेहतर बनाता है?
2: नहीं मैम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। दिखावा बस थोड़ी देर की चमक देता है, पर लंबे समय में जिंदगी को जटिल ही बनाता है, और मैं समझती हूँ व्यक्ति दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी असली जरूरतें भूलने लगता है, और इसीलिए सच ये है कि दिखावा जिंदगी को बेहतर नहीं अस्थिर बनाता है।
1: तो इसका मतलब यह है कि घर के बजट पर भी दिखावे का असर पड़ता है।
2: जी बिल्कुल मैम, मैं समझती हूँ दिखावे का बहुत ही सीधा असर हमारे घर के बजट पर पड़ता है। जबकि हम दिखावे के लिए महंगी वस्तुएं खरीदना शुरू करते हैं तो इससे हमारा मासिक बजट का संतुलन भी बिगड़ जाता है, क्योंकि मैं समझती हूँ महंगी वस्तुएं खरीदने में कभी कभी हमें कर्ज लेने की

0: श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे 6 संकलित भेंट वार्ता। स्नेहा शर्मा से बातचीत कर रहे थे और जान रहे थे उनकी राय। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य की बात जब हुई है तो एक आप लोगों के साथ हम एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और जो हम अभी क्षेत्र संकलित सुनवा रहे थे तो वो किसी कारणों से नहीं चल पाया है, इसका हमें बहुत ज़्यादा खेद है। लेकिन उसका विषय था वही दिखावा और बजट। तो अभी आप प्रेरणा कह रही थी कि कुछ महत्वपूर्ण संदेश
0: जी।
1: तो श्रोताओं, आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आकाशवाणी रामपुर आने वाली 8 जून को एक वॉकथॉन का आयोजन करने जा रहा है। और रेडियो के इस सुनहरे सफर का जश्न हम रामपुर के सभी नगरवासियों, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों से अपील करते हैं कि इस उत्सव में पूरे जोश के साथ हमारे साथ शामिल हों। और ये कब होने जा रहा है प्रेरणा?
0: ये हमारी शुरू होगी पदयात्रा 8 जून की सुबह 6 बजे
1: जी,
0: सीधे आकाशवाणी रामपुर स्टूडियो से शुरू होगी। और हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ शामिल जरूर हों। आइए चलिए कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और इस आयोजन को सफल बनाते हैं।
1: बिल्कुल। देखिए, एक तो हमारी जो आकाशवाणी रामपुर के 90 वर्ष का जश्न है और सुबह आप कह रही हैं सुबह 6 बजे पदयात्रा होगी, तो देखिए भाई पदयात्रा होगी तो शुरू में सुबह सुबह ऑक्सीजन हमें मिलेगी तो हमारा
0: स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी
1: जी जी। तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को कुछ स्वास्थ्य जो टिप्स हैं वो दे दें।
0: जी बिल्कुल सुनीता दी।
1: बिल्कुल। तो आज का जो हमारा टिप्स है वो है संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन बहुत ही जरूरी है। तो इस पर हम कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुझाव दे दें। लेकिन देखिए, अभी हम बात कर रहे थे ना प्रेरणा की भाई पदयात्रा होगी हमें ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन साथ साथ हमारा खाना भी तो अच्छा होना चाहिए ना। संतुलित आहार होना चाहिए जिसमें कि सारे मिनरल्स होने चाहिए। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और आयरन है, विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं और शुद्ध पानी। तो ये सारी चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो जल्दी से हमारे श्रोताओं को टिप्स बता दें।
0: तो बस यही चीज़ें अपने भोजन में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दूध से बने उत्पाद ज़रूर शामिल करें।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये सारी चीज़ें जैसे कि आपने बताई, अनाज, दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें प्रचुर मात्रा में जो है पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। और रोजाना मौसमी फल और ताजी सब्जियों का सेवन करना चाहिए क्योंकि इनमें भरपूर मात्रा में हमने जो बोला है ना विटामिन्स, खनिज पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं।
0: साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और शरीर को हाइड्रेट रखें।
1: और आजकल देखिए जंक फूड का ज़्यादा फैशन है,
0: बहुत ज़्यादा,
1: और वो जो है इतने हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन केवल स्वाद की वजह से ही जो हमारी युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा इस्तेमाल करती है और वो बिल्कुल उनको अवॉइड करें। और ज़्यादा तले भुने और अधिक मीठे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका भी सेवन कम करें।
0: सुनीता दीदी, हमारे घर में कहा जाता है कि एक दो बार खाने से कुछ नहीं होता, आपकी क्या राय है?
1: बिल्कुल, वैसे सही बात है। जब भूख लगे ना तो थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा भरपेट खा लेते हैं, वो हमारी एसिडिटी जो हमारे पेट की पचाव कम होता है, एसिडिटी बनती है। तो आपने सही कहा, थोड़ा थोड़ा खाना हमारी सेहत के लिए लाभप्रद है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ भरपेट खा लें, थोड़ा थोड़ा खाना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही है।
0: जी श्रोताओं, भोजन समय पर करें और नाश्ता कभी ना छोड़ें।
1: बिल्कुल। और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दालें हैं, चना, राजमा, सोयाबीन आदि को अपने आहार में शामिल जरूर करना चाहिए।
0: भोजन को अच्छी तरह चबाकर और शांत मन से खाएं।
1: और श्रोताओं, संतुलित और पौष्टिक आहार ही अच्छे स्वास्थ्य और ऊर्जा और रोगों से बचाव की कुंजी है। इसीलिए संतुलित और पौष्टिक आहार का सेवन करें। और अब प्रेरणा देखिए, हमारी जो पास में हमारी टेबल पे भी खूबसूरत सा कलरफुल पत्र पड़ा हुआ है, तो क्यों ना पत्र जल्दी से पढ़ लें, अपने श्रोताओं से रूबरू हो जाए पत्र के माध्यम से।
0: जी बिल्कुल सुनीता दी, हमें पत्र भेजने वाले हैं थाना 3 ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां पीडब्ल्यूडी वाले, शाहिदा परवीन उर्फ शीबा, इमरान खां, रेहान खां, इकराम खां, सबीना बी, आसिफा और शबीना। आप सभी ने 26 मई का परिवार जगत कार्यक्रम सुना, आप सभी को पसंद आया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।
1: प्रेरणा, खासतौर पर मैं पत्र पढ़ रही थी तो परिचर्चा हमारे श्रोताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो आप सभी ने हमारी प्रोग्राम को इतनी शिद्दत के साथ सुना और परिचर्चा पसंद आई, तो इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। आप ऐसे ही हमारी जो परिवार जगत प्रोग्राम है उसको सुनते रहिएगा और हमें पत्र लिखते रहिएगा, क्योंकि आपके पत्र हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि हम कब हमारे श्रोताओं का हमें पत्र प्राप्त हो और कब हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। तो हम अपने श्रोताओं को पता बता दें?
0: जी बिल्कुल।
1: तो एक बार और हम अपने श्रोताओं को पता बताना चाहेंगे, क्योंकि समय समय पर हम अपने प्रोग्राम में अपने श्रोताओं को अपना पता नोट कराते रहते हैं, क्योंकि और भी श्रोता हमें पत्र लिखे, हमारी यही सभी श्रोताओं से गुजारिश रहती है। तो जल्दी से उठाइए कागज़ कलम और लिखिए हमारे प्रोग्राम का पता। कार्यक्रम है परिवार जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड नंबर है 244901। और अब
0: गीत संगीत
1: तो बिल्कुल मेरे मन की बात छीन ली आपने प्रेरणा, तो आइए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और फिर से सुनते हैं बहुत ही प्यारा संगीत।

0: तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ अपनी साथी प्रेरणा गुप्ता को कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: और साथी सुनीता सिंह को भी दीजिए प्रोग्राम से अनुमति। नमस्कार। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।

0: माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों के युवाओं को सशक्त बनाने और उनका उत्थान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
0: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है बल्कि ये युवाओं को सपनों को देखने का अधिकार देती हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्तियां उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोलती हैं जिनमें अपार प्रतिभा है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे प्रगति करने से वंचित रह जाते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि युवा राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपनी जड़ों को न भूलें।
0: भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य के प्राप्ति में आप जैसे युवाओं की अहम भूमिका है। मुझे विश्वास है कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, समाज और राष्ट्र के निर्माण में आपका सक्रिय योगदान रहना चाहिए।
1: गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटिले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशाटिले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, और मांसपेशियों में दर्द या दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल है। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। केरलम विधानसभा में कांग्रेस नेता शानिमोल उस्मान उपाध्यक्ष चुनिए गए हैं। शानिमोल उस्मान को 99 वोट मिले जबकि विपक्षी उम्मीदवार मोहम्मद मोहसिन को 34 वोट प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी के तीनों सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: CBSE ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान केवल UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। शहजाद भट्टी के गिरोह ने मोहम्मद शेख को एक राजनीतिक पार्टी की महिला नेता को धमकाने और उसकी हत्या करने का काम सौंपा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रवर्तन निदेशालय ED मुंबई, सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने सलीम इस्माइल डोला और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ये कार्रवाई की है। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। निदेशालय ने विदेश से लाए गए 2 किलो 600 ग्राम सोने को जब्त किया है जिसकी कीमत लगभग 4,20,00,000 रुपए है। खुफिया जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने दुबई से आए 2 यात्रियों को पकड़ा। मामले की जांच की जा रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में 1 वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तेलंगाना को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परिश्रमी लोगों का साथ मिला है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवंत परंपराओं से संपन्न है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि तेलंगाना का इतिहास और गौरवशाली संस्कृति साहस, दृढ़ संकल्प और संघर्ष का प्रतीक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से हुए संघर्ष विराम पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझौते के बाद क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना थी, लेकिन हाल के सैन्य उल्लंघनों से इसकी स्थिरता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने लेबनान में इजरायली हमले जारी रहने पर अमेरिका के साथ सभी प्रकार की बातचीत रोक दी है। अमेरिका के साथ किसी भी युद्ध विराम समझौते के लिए ईरान ने लेबनान पर इजरायली हमले रोकने की पूर्व शर्त रखी थी। उसने होर्मुज जल डमरू मध्य पूरी तरह से बंद करने और लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य सहित अन्य मोर्चे खोलने की बात कही है। ईरान का कहना है कि लेबनान और गजा में इजरायली हमले पूरी तरह बंद होने तक अमेरिका से कोई बातचीत नहीं होगी। लेबनान में जारी संघर्ष अमेरिका और ईरान के बीच संभावित विराम समझौते में एक बड़ी बाधा बन चुका है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिलेगा। मुलाकात का उद्देश्य दोनों पार्टियों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जन केंद्रित राजनीतिक पहुंच पर विचारों का आदान प्रदान करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में पहले गिरावट और फिर आधा प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 508 अंक के उछाल के साथ 74,775 जबकि निफ्टी 140 अंक की वृद्धि के साथ 23,523 पर कारोबार कर रहा था। और अब बात खेलों की। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में तेज बारिश का अनुमान है। अगले 2 से 3 दिन तक हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने सभी वर्गों के विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति पर जोर दिया। सरकार ने आव्रजन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित किए। पंजीकरण समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी। और महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज हम आपको सुनवाएंगे 70 के दशक के फिल्मी गीत।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर अपने रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है पाकीज़ा। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

जी हाँ श्रोताओ, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर। हम आपको सुनवा रहे हैं 70 के दशक के फिल्मी गीत। कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अभिमान। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरा दौर में 70 के दशक के फिल्मी गीत अपने रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत के साथ। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म का नाम है आपकी कसम। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

0: कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना। आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।
1: तो हम चलते हैं।

0: बस बातें शादी के बाद।
1: इसी गीत के साथ दीजिए कार्यक्रम से अनुराग को अनुमति। नमस्कार।
2: अच्छा तो हम चलते हैं। अच्छा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। हम आपको सुनवा रहे थे 70 के दशक के फिल्मी गीत, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव पर हमारी आज की प्रथम सभा संपन्न होती है। समय हुआ है ठीक दोपहर के 3, अब से लेकर शाम 5 बजे तक एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम मौजूद रहेंगे। शाम के 5 बजे मीडियम वेव और एफएम दोनों मीटरों पर एक साथ दोबारा से लौटेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: की सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दोस्तों, आज है सखी सहेली की वर्षगांठ। 2003 में शुरू हुआ था ये कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का सफर इतना सुरीला रहा, इतना लोकप्रिय रहा कि आज भी लोग इसे बहुत प्यार देते हैं। सखी सहेली देश ही नहीं बल्कि दुनिया के श्रोताओं का प्यार मिला है। इस विशेष अवसर पर हमने फिल्म और टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी जी को जीव प्रसारण में आमंत्रित किया है। हिमानी जी अपनी सहज अभिनय शैली, दमदार संवाद अदायगी के लिए जानी जाती हैं। फिल्म, धारावाहिक और रंगमंच तीनों माध्यमों में हिमानी जी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। तो पूरे विविध भारती परिवार की ओर से हम हिमानी शिवपुरी जी का स्वागत कर रहे हैं। हिमानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सजीव प्रसारण स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, थैंक यू, आपने इतना प्यारा स्वागत किया और आपको और पूरे विविध भारती के परिवार को सखी सहेली की वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई।
1: हिमानी जी, ये विविध भारती के स्टूडियो में आप आई हैं, इसके पहले भी आप आ चुकी हैं और आज सखी सहेली की वर्षगांठ पर हमने आमंत्रित किया है, तो ये स्टूडियो में आना कैसा लग रहा है और साथ में ये बताइए हमें कि रेडियो से आपका कैसा नाता है, खास तौर से विविध भारती से।
2: देखिए, वैसे तो मैंने फिल्म, टेलीविजन, थिएटर में काम किया है, लेकिन सब माध्यमों का जो पहला माध्यम जिससे मेरा परिचय हुआ या वो हुआ, वो रेडियो सबसे पहला। मुझे बचपन की जो यादें हैं इतनी जुड़ी हुई रेडियो से, पुरानी हम लोग, पापा हमारे घर में, तब तक दूरदर्शन नहीं आया था तो रेडियो पर ही सब निर्भर करते थे, चाहे समाचार हो, देवकी नंदन पांडे जी की आवाज अभी तक कानों में गूंजती है,
1: समाचार वाचक
2: कुंदन लाल सहगल, एक स्लॉट्स होते थे कि पुरानी फिल्मी गाने जिसमें कुंदन लाल सहगल,
1: भूले बिसरेगी आज भी प्रसारित होता है।
2: हाँ, और वो सुनते थे और भी मजा आता था। बिना का गीत माला, कैसे पता लगता था कौन गाना इतना पॉपुलर है
1: जी।
2: और सबसे बड़ी बात, हमारे घर में पापा और मेरा भाई और मैं भी, चूंकि वो लोग देखते थे तो क्रिकेट के एंथुजियास्टिक थे सब के सब, तो मैं आज भी ये मानती हूँ, जबकि आज तो खैर आईपीएल वगैरह इतना है, आज भी मेरा मानना है कि जो रोमांच रेडियो में कमेंट्री सुनने से आता था वो टीवी तो मैच ही नहीं कर सकता। हालांकि मैं खुद टीवी के मीडियम से हूँ, लेकिन इस तरह से ये लोग समा बांधते थे कि मतलब हमको लगता था कि हम वाकई में ग्राउंड में है, क्रिकेट ग्राउंड में। तो इतनी सारी यादें जुड़ी हुई हैं रेडियो के साथ, हमारे बचपन का अभिनंग था। और बचपन क्या आजकल
1: बहुत सारे चैनल्स हैं,
2: लेकिन रेडियो का भी अभी भी बहुत ही अहम भूमिका है कि हम लोग जब मुंबई में, आपको मुंबई या कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या करते हैं कि रेडियो तो साथ में रहता ही है आपके, गाने बजते रहते हैं। तो आई फील कि जो ट्रैफिक की जो धक्का मुक्की है उससे अगर कोई बचाता है तो वो रेडियो ही बचाता
1: है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही। और ये जो क्रिकेट कमेंट्री की बात कही है तो हमें भी याद है कि आंगन के मुंडेर पर एक रेडियो रखा जाता था और गांव के कई लोग, यहाँ तक कि साइकिल से दूर दूर से लोग चल के आते थे कि फला के यहाँ रेडियो है, चलो हम क्रिकेट कमेंट्री सुनने चलते हैं। तो ये याद तो आपने बड़ी तिलिस्मी साझा की है। बताइए कि क्या आपने भी क्रिकेट के चौके छक्के लगाए या सीधे आप देहरादून से दिल्ली की ट्रेन पकड़ ली आपने, बताइए हमें।
2: नहीं, क्रिकेट में मैं तो ज्यादातर किताबी कीड़ा थी बचपन में और नाटकों में भाग लेती थी, डिबेट्स करती थी, डांस करती थी। क्रिकेट के चौके छक्के तो मेरा भाई लगाता था, पर चूंकि हम घर में ऐसा माहौल था, और मुझे अभी भी याद है कि क्रिकेट के बारे में जो फैनेटिसिज्म था हमारे टाइम, तो सुनील गावस्कर वगैरह तो भगवान मंदिर में जाके पूजा करते थे, हाय मतलब सुनील गावस्कर सेंचुरी बना दे।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, हाथ जोड़ के प्रार्थना।
2: हाँ, और जैसे कोई भी भारत पाकिस्तान का या भारत इंग्लैंड का कोई भी मैच हो तो भारत जीत जाए, मतलब प्रे कर रहे हैं और कमेंट्री सुन रहे हैं, तो मतलब क्रिकेट का पैशन उस टाइम भी उतना ही था जितना कि अब है।
1: जी बिल्कुल, एक गाना सुन लें उसके बाद फिर हम और आपकी यादों के गलियारों में चलते हैं और ढेर सारी यादें खंगालेंगे। तो एक गाना बधाई देने वाला गाना है, हम सुनते हैं।
2: जी जी।

0: तो हिमानी जी, ये बधाई हो बधाई गाने में था और हमारे श्रोताओं की ओर से बधाई संदेश की बाढ़ सी आई हुई है और हमारे बहुत सारे श्रोता आपके लिए लिख रहे हैं कि हिमानी जी आई हैं, चार चांद लग गया है विविध भारती के स्टूडियो में। और आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कि रेडियो से इतना पुराना नाता है, ऐसा लग रहा है कि मायके, जैसे बचपन में हम लोग रेडियो सुनते थे, लगता है कि अपने मायके आ गई हूँ।
0: सही बात है।
1: और ऐसा भी नहीं, मैं आपके प्रोग्राम में 2-3 बार आ चुकी हूँ और दिल्ली हो, दिल्ली में भी करें, देहरादून में भी जब भी जाती हूँ तो रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि रेडियो से नाता मुझे
0: बड़ा गहरा है,
1: बहुत गहरा,
0: और आपसे भी बड़ा गहरा नाता है हमारे श्रोताओं का। हमारे बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपके अभिनय के कायल हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हिमानी जी अपनी सशक्त अभिनय प्रतिभा, सहज व्यक्तित्व और कला के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। हमने आपको फिल्म हम आपके हैं कौन देखी, उसमें आपको देखा, और भी कई फिल्मों के नाम इन्होंने लिखे हैं। और इन्होंने सवाल भी किया, हिमानी जी आजकल आप क्या करती हैं और आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। तो अभी हम ये पूरी आपकी जर्नी के बारे में जब बात करेंगे तो पता चली जाएगा हमारे श्रोताओं को। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली बहनों का त्यौहार है आज तो, और इसमें भाई का प्यार भी है तो सखा भी शामिल है। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को सखाओं का प्यार भी इस प्रोग्राम को मिलता है और हमारे सखा बहुत लंबी तादाद में सुना करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कभी उलझा सखी सहेली, हे सखी सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो कहलाती हो नित नवेली, किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल, यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम हो सबकी प्यारी न्यारी दुलारी सखी सहेली। बहुत बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने, लेकिन अब हिमानी जी आई हैं तो हमारे मन में भी सवाल और बातों का ज्वार सा आया हुआ है। तो चलिए आपको हम उत्तराखंड की ओर ले चलते हैं। ये देहरादून से आपने दिल्ली का सफर कैसे तय किया, और गर्मी की छुट्टियां, इस समय गर्मी बहुत तेज है पूरे देश भर में, तो गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताइए, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब आप गर्मी की छुट्टियों में रेडियो सुनते हैं, आइसक्रीम और वो इकड़ दुखड़ का खेल, वो बचपन के संसार में आप गोते लगाइए और साझा कीजिए कुछ यादें।
1: बचपन में तो मुझे याद है कि गर्मी, सिंस मैं देहरादून से हूँ तो देहरादून का मौसम अभी भी वैसे बहुत अच्छा है कि जहाँ 2-3 दिन गर्मी होती तुरंत बारिश आ जाती है, तो बहुत ही प्लेजेंट वेदर है कि

0: जान लेते थे। और तब हम पैदल चल के, अब तो खैर कार से जाते, पैदल चल के देहरादून से मसूरी जाते थे, क्योंकि पहाड़ी रास्तों में बड़ा घुमाव होता है, तो बहुत चक्कर आते हैं, मोशन सिकनेस होती है,
1: नौशिया
0: तो
1: होता
0: हम
1: है।
0: लोग प्रेफर करते थे, और पापा लेके जाते थे हमको पैदल रास्ते से, बीच में रास्ते में रुकते थे, चाय और पकौड़ी खाते थे,
1: क्या बात
0: फिर मसूरी
1: है।
0: पहुंचते थे। एक बहुत फेमस दुकान थी,
1: हाँ
0: और बाद में तो खैर जब कार या उससे तभी भी एक वो टोल आता था, टोल टैक्स होता है,
1: जी,
0: वहां की पकौड़ियां बड़ी प्रसिद्ध है,
1: मशहूर।
0: पहाड़ी पकौड़ियां बहुत अच्छी होती, चाय और पकौड़ी, तो वो खा के हम लोग मसूरी जाते थे। और मसूरी में भी बड़े एडवेंचरस थे, मेरे पापा भी एडवेंचरस थे, भाई भी, और मैं भी लगभग लड़का ही थी, तो हम लोग डगन हिल पैदल चलते थे। और जब हम कैमल्स बैक में भी रहते थे, मसूरी का एक तो माल रोड है और कैमल्स बैक, तो हम ऊपर चढ़ने के, मैं और मेरा भाई ना बहुत शैतान थे, ऊपर चढ़ने के नए नए रास्ते ढूंढते थे इधर से, मतलब एक्सप्लोरर्स थे हम, अपने को सोचते थे कि हम बहुत बड़े एक्सप्लोरर
1: लग नहीं
0: हैं
1: रही कि आप शैतान थी, बहुत
0: हैं
1: सीधी सादी लग रही है
0: बहुत शैतान थे,
1: देखने
0: मतलब हम लोग स्विमिंग पूल में पड़े रहते थे जब देहरादून में होते थे, और मतलब और क्या करते थे, और बच्चों को छत से जैसे पेड़ों में, दून स्कूल बहुत ही हरा भरा और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ है वहां पर, क्योंकि एक बार वो FRI का भी पार्ट होता था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट
1: जी।
0: का, इतने खूबसूरत पेड़ हैं, तो हम लोग पेड़ों में चढ़े रहते थे बंदरों की तरह, मतलब ज्यादातर, मतलब मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा बचपन इतना अच्छा बीता,
1: हाँ,
0: और आजकल के बच्चों को देखती हूँ तो इतनी दया आती है कि वो बेचारे
1: मोबाइल में
0: फोन पे,
1: घुसे
0: मोबाइल
1: रहते
0: पे, या
1: हैं।
0: अपने कमरे में या टीवी में, हम बिल्कुल पहाड़ पहाड़ चढ़ रहे हैं, नदियों में तैर रहे
1: क्या बात है,
0: हैं, बंदरों की तरह पेड़ों में आम, आजकल के बच्चों
1: जामुन
0: ने
1: खाना।
0: आप लोग को मतलब या तो
1: हाँ
0: ठेले पे फ्रूट्स दिखते हैं, या आप सुपर मार्केट या ऐसी जगह जाए, हमने तो पेड़ से तोड़ के लीची, आम,
1: क्या बात
0: जामुन,
1: है,
0: अमरूद खाए हुए हैं,
1: क्या
0: उसका मजा ही कुछ और था।
1: बिल्कुल। तो हमें लगता है कि आपकी बातें हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो खास तौर से नई पीढ़ी कुछ तो सीखेगी, क्योंकि बंद कमरों में जो उन्हें आनंद मिलता है, बंद कमरों से बाहर निकले तो आज भी वो आनंद ले सकते हैं। आपने एक बात कही कि आप लड़कों की तरह रहती थी और बहुत बिंदास बेबाकी से जीती थी। तो हमारी बहुत सारी सखियां गांव में रहती हैं, कस्बों में रहती हैं, उनके लिए कुछ कहिए कि कितना मुश्किल रहा होगा उत्तराखंड से दिल्ली जैसे महानगर में आना आपके लिए, अपने
0: हाँ,
1: माता पिता को समझाना। तो कुछ संदेश दीजिए, बताइए।
0: मैं रंगमंच करती थी, लेकिन क्या था उस टाइम, मतलब 50 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप थिएटर को, और आजकल तो इतने सारे लोगों के पास
1: साधन है, माध्यम
0: साधन
1: है।
0: भी है, और दूसरी इतनी सारी वो है, क्या कहते हैं कि ओपनिंग्स है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही थे, कि जो पढ़ने में होशियार होता था वो साइंस लेता था, और जो थोड़ा सा पैदल था दिमाग में वो आर्ट्स में जाता था, तो मैं होशियार थी तो मैं साइंस,
1: जी
0: और साइंस का ही ISC में वन ऑफ द टॉपर्स थी, मैंने BSc किया, MSc किया, लेकिन रंगमंच करती थी, तो जो मजा रंगमंच में आता था ना, वो साइंस का बड़ा ड्राई था, MSc का मतलब 9 से 5 बजे क्लास और लेबोरेटरी में, और जो शाम को अव्यावसायिक रंगमंच करती थी, शाम को जो थिएटर करती थी उसमें बड़ा मजा आता था, लेकिन आप सोचिए उस टाइम तो उत्तराखंड भी नहीं बना था, वो यूपी था,
1: उत्तर प्रदेश था,
0: उत्तर
1: बिल्कुल।
0: प्रदेश था, तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि आप रंगमंच में, मैं तो रंगमंच ही देखा, फिल्म तो खैर बहुत बुरा मानते थे, मुझे याद है कि हमारे प्रिंसिपल थे स्कूल की, मिस्टर मार्टिन, ज्यादातर ब्रिटिशर्स ही थे डून स्कूल में, तो मिसेस मार्टिन मुझसे कहती थी, हिमानी यू शुड गो इनटू फिल्म्स, तो मैंने कहा नहीं, हमारा नॉर्थ में एक बड़ा वैसा आइडिया था, फिल्म्स बिल्कुल नहीं, मैं 50-55 साल पहले की बात कर रही
1: अलग ही दुनिया थी,
0: हूँ, हाँ, नहीं
1: बिल्कुल।
0: सोच ही नहीं सकते थे,
1: जी
0: तो खैर मैं आपको बता रही थी कि थिएटर में रुचि थी, और मैं MSc कर रही थी और एक नाटक कर रही थी मैं, ब्रेक्ट का, थ्री पेनी ओपेरा, इतने में NSD राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कुछ स्नातक आए, कुछ छात्र आए, तब पता चला कि NSD भी ऐसी एक संस्था है हिंदुस्तान में, उस टाइम NSD थी, अब तो खैर
1: जी
0: काफी सारे स्कूल्स खुल गए, मध्य प्रदेश में खुल गया है, कलकत्ता में
1: पुणे में
0: है,
1: है और
0: पुणे
1: पुणे
0: में
1: में।
0: है, और लखनऊ में भी अब खुल
1: जी
0: गया है भारतेंदु नाट्य अकादमी, तो उस टाइम सिर्फ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय था, तब पता चला ऐसी एक जगह है जो आपको थिएटर में ट्रेनिंग देती, तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट

0: चली, तो मैंने तय किया मैं यहां जाना चाहती हूँ।
1: क्या बात
0: उसी
1: है।
0: दौरान मेरे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं पढ़ने में होशियार थी, तो मुझे एमएस अब्रॉड करने की स्कॉलरशिप मिली।
1: वाह वाह।
0: तो मैं वीजा का इंटरव्यू देने गई दिल्ली, साथ में चुपके से एनएसटी का भी इंटरव्यू दे
1: ओहो,
0: दिया
1: किसी को बताया नहीं
0: किसी को नहीं बताया
1: आपके
0: घर में। और जब लेटर आया एनएसडी का सिलेक्शन का,
1: घर में?
0: तो मैंने घर में बम फोड़ दिया कि भाई मैं तो जा नहीं रही हूँ अमेरिका, मैं तो दिल्ली जा रही हूँ
1: हाँ, एनएसडी करूंगी।
0: एनएसडी में। तो उसमें मतलब तो पूरा छोटे शहरों में तो हर एक कोई एक दूसरे को जानता है, और मुझे तो खैर मैं सबकी लाडली थी, कि पढ़ने में होशियार थी, डिबेट करती थी, डांस करती थी, प्लेज करती थी, और अभी मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। उस टाइम बहुत बड़ी बात थी अमेरिका पढ़ने जा रही है, लड़की को स्कॉलरशिप मिली है। तो सब कहती कि भटजी, भटजी की नौनी, नौनी पहाड़ी शब्द है लड़की का,
1: बिटिया।
0: बेटी का,
1: जी।
0: भटजी की नौनी तो बहुत
1: हाँ
0: होशियार है। अब जैसे लोगों को पता चला भटजी की नौनी तो वहां जा रही है, सबने कह रही है भटजी की नौनी तो पागल हो गई, बताओ इसको समझाओ। मेरे पापा के पास आए कि भटजी आप समझाओ, इसका लड़की का दिमाग खराब हो रहा है, इतना अच्छा इसका करियर, इसको स्कॉलरशिप मिली है। और मेरे सारे रिश्तेदार उत्तर प्रदेश में, नाटक का पर्यायवाची था नौटंकी,
1: नौटंकी।
0: तो मुझे सब बोल रहे क्या तू नौटंकी करेगी, भांड या तो भांड कहते थे,
1: बहुत बुरा
0: भांडगिरी
1: माना
0: करेगी,
1: जाता था,
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: बुरा। तो पापा ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा काफी ब्रॉड माइंडेड थे, वो खुद ही अपने आप में लेखक थे, डॉक्टर हरिदत्त शैलेश, वो
1: जी
0: वहां के जाने माने साहित्यकार हैं उत्तराखंड के। तो पापा ने समझाने की कोशिश की कि बेटा तुम अमेरिका हुआ हो, अगर तुम में वो रहा, मतलब बाद में आके कर लेना, शौक है ना तुम्हारा। तो मैंने पापा से एक बात कही, पापा देखो हो सकता है 40 साल, अब तो मैं सोचती हूँ बड़ी हंसी आती कि मैंने ऐसी, कि मैं 40 साल की हो जाऊंगी, पापा मेरे पास बहुत पैसा रहेगा, लेकिन मेरे दिल में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि मैंने जो सपना देखा वो मैं पूरा नहीं कर पाई। तो मेरे पापा फिर कुछ नहीं बोले, मम्मी वगैरह सब मेरे रिश्तेदार सब खिलाफ, मेरे पापा खुद मुझे एनएसडी लेकर गए,
1: क्या बात है।
0: वहां मेरा एडमिशन कराए, और वहां से मेरा करियर चेंज हो गया। 3 साल की ट्रेनिंग, फिर वहां रेपेट्री ज्वाइन करके, रेपेट्री इसलिए ज्वाइन करी कि वापस तो आ नहीं सकती थी, कि अपने पैरों पे खुददारी,
1: जी
0: 250
1: जी
0: की स्कॉलरशिप से, मैंने कहा घर से एक पैसा नहीं मांगाऊं,
1: क्या
0: क्योंकि
1: बात
0: सबके
1: है,
0: खिलाफ
1: उसमें बहुत बड़ी
0: ढाई
1: बात
0: सौ
1: थी।
0: की स्कॉलरशिप मिलती थी। उसके बाद मैंने रेपेट्री ज्वाइन किया, वापस तो नहीं आ सकती थी, कैसे करें, क्योंकि उस टाइम भी वो था उत्तर प्रदेश, ऐसा माहौल नहीं था कि आप अपना आजीविका उससे चला सके थिएटर से। तो मैंने एनएसडी रेपेट्री ज्वाइन किया, 600 रुपए पहले मिलते थे, उसके बाद 1,000, 2,000, 3,000 हाईएस्ट जो होता था ए ग्रेड
1: उसमें
0: आर्टिस्ट,
1: बहुत बड़ी रकम थी।
0: बहुत बड़ी
1: बहुत
0: रकम थी।
1: बड़ी
0: तो
1: रकम
0: उसी
1: थी।
0: में गुजारा करती थी और थिएटर करती थी। तो ऐसे में ये मेरा सफर रहा दिल्ली से,
1: जी,
0: मतलब देहरादून से
1: देहरादून
0: दिल्ली
1: से
0: तक।
1: दिल्ली तक का, और बहुत ही प्रेरणादायी सफर रहा। हमें लगता है हमारी जितनी सखियां सुन रही हैं, जब कई कई बार वो उदास होती हैं और वो परेशान हो जाती हैं, तो उस समय उन्हें इस बात से इंस्पायर होना चाहिए। अब हिमानी जी, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: कोई बात नहीं
1: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और ये है कार्यक्रम सखी सहेली और हमारे सामने हमारी विशेष सखी विशेष अतिथि हिमानी शिवपुरी जी बैठी हैं और बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं कि गाने की बारी ही नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पर हम गाना सुनवाते हैं जिसमें हिमानी जी खुद अभिनय किया है। हिमानी जी ने वैसे उनकी फिल्मों की फेहरिस्त गिनाने चलेंगे तो वक्त कम पड़ेगा, तो पहले हम गाना सुन लेते हैं। ये फिल्म हम आपके हैं कौन, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम आपके हैं कौन में हिमानी जी बड़ी अच्छी लग रही हैं। सुनते हैं ये गाना समधन।

0: हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना था, और चूंकि हिमानी जी की बातें आज बड़ी दिलचस्प लग रही हैं और हिमानी जी आई हैं तो गाने तो हम आपको रोज सुनवाते ही रहते हैं, तो गानों के अंश हम सुनवाते चलेंगे, हिमानी जी से बातें करते रहेंगे और आपकी टिप्पणियां भी बीच बीच में हम शामिल करते रहेंगे, आपके सवाल भी। एक श्रोता ने लिखा है कि सखी सहेली शब्द सुनते ही एक सुकोमल भावना मन को छूने लगती है। मुझे याद है जब ये कार्यक्रम नया शुरू हुआ था और मेरे शहर में विविध भारती बहुत साफ नहीं सुनाई देता था। मेरी किचन एक खुले एरिया में थी जहां की खुली खिड़की से सटाने पर थोड़ी साफ आवाज आती थी। मैं 2 बजे किचन से फुर्सत होकर, जो मेरे रेस्ट का टाइम होता था, मैं फिर रेडियो लेकर किचन में पहुंच जाती और वहां प्लेटफॉर्म पर बैठकर सखी सहेली सुनती थी। मेरी सासू माँ मुझे किचन के प्लेटफॉर्म पर इस तरह बैठा देखकर रेडियो सुनते हुए देखती तो कहती, ये अजीब पागलपन है तुमको रेडियो सुनने का। पर आज 20 साल हो गए, मैं आज भी सखी सहेली उतनी ही तन्मयता से सुनती हूँ। हिमानी जी आज इस कार्यक्रम में मंच पर आई है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वे अपनी आंखों से जीवंत अभिनय करती हैं और इसी तरह वे अपने जीवन में सक्रिय रहें। हिमानी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, हम बीच बीच में शामिल करते रहेंगे। तो हिमानी जी, अब हम एक बार फिर आपकी जर्नी की ओर चलते हैं। आपने बहुत सारी बातें एनएसडी की साझा की, अपने बचपन की साझा की। हमें बताइए कि आपका जो बचपन का गाँव है रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड का जो भटवाड़ी गाँव है,
1: भटवाड़ी, हाँ,
0: वहां पर लोग पलायन कर रहे हैं, तो उसके विकास के लिए उस गांव को आपने गोद ले लिया है, एक बड़ी बात है ये, इसके बारे में बताइए ना, क्या है कहानी है?
1: नहीं, मैं आपको बताती हूँ ममता जी, शुरू से ही मेरे मन में ये था, क्योंकि मैं लगभग आप कह सकते हैं

0: महिला थी जिसने
1: अपने गांव से निकली,
0: जिसने मतलब उत्तराखंड से जो निकली फिल्म इंडस्ट्री में, थिएटर रंगमंच में पदार्पण किया. आजकल तो बहुत सारे लोग आ गए हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, लेकिन उस वक्त मैं पहली थी
1: जी.
0: लेकिन मेरे मन में जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो उस टाइम कारण जी, बीवी कारण जी डायरेक्टर थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करना चाहती, तो मेरा ये उत्तर था कि मैं अपने क्षेत्र में जाके कुछ काम करना चाहती हूँ
1: जी.
0: तो ये मैं क्या, जब एनएसटी में पढ़ती भी थी, स्टूडेंट थी, तभी भी जब छुट्टियां होती थी तो मैं आती थी, और मैं जो वहां के हमारे जो थिएटर के एंथुजियास्टिक लोग थे, काफी सारी संस्थाएं थी, उनके साथ वर्कशॉप लेती थी, जो मैंने सीखा था वो उनको सिखाती थी, और आके नाटक भी करती थी देहरादून, सहारनपुर, बच्चों के साथ थिएटर वर्कशॉप करती थी.

0: निकल जाते हैं लोग शहरों की ओर,
1: क्या करें। और उनको लोगों का ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आजीविका के साधन ही नहीं है। और पहाड़ में रहना बड़ा कठिन जीवन है। अभी भी मैं 3 बार देहरादून गई लेकिन अपने गांव नहीं जा पाई क्योंकि सड़क ही खराब हो चुकी थी। अब सड़क नहीं है तो कैसे जाएंगे। और गांव में सिर्फ मैं अपने जब गांव में गई जो मैंने गोद लिया तो वहां सिर्फ बूढ़े लोग ही ज्यादातर रहते हैं। महिलाएं हैं 30-35 बूढ़ी महिलाएं और 3-4 मतलब आई थिंक 10-15 वृद्ध पुरुष थे। क्योंकि जितने भी जो कमाने वाले जो यंग लोग हैं वो चले गए हैं पैसा कमाने के लिए। और जब बच्चों की छुट्टियां होती है गर्मियों की तब वो आते हैं महीने में एक बार गर्मी की छुट्टियों में। तो गांव एकदम खाली, घर खाली पड़े हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा। और मैं बचपन में जब जाती थी तो खेतियां होती थी, खेत खाली पड़े हुए, कोई है नहीं खेती करने के लिए। और वो है तो मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए अपने गाँव के लिए। तो मैंने इसलिए गांव अडॉप्ट किया। ये एक सपना है, बहुत जाइगेंटिक टास्क है,
0: बहुत ही ये बड़ा सपना देखा है। मानी जी यहां पर हम आपको रोक रहे हैं और ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद इस बातचीत को जारी रखेंगे।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती और आज है विशेष सखी सहेली 2 जून, सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ, और हमने आमंत्रित किया है जानी मानी अदाकारा हिमानी शिवपुरी जी को। हिमानी जी, आप बता रही थी अपने उस गांव के बारे में जो अडॉप्ट किया है आपने, गोद हाँ। लिया है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है, तो वो बताइए फिर क्या हुआ।
1: हाँ, तो मैं फिर काफी साल के बाद जब गांव में गई, इस मतलब घूमने के इरादे से नहीं, ये कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, तो मैंने सब औरतों से मुलाकात की कि क्या है, तो मैंने उनसे पूछा भाई खेत क्यों खाली है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक महिला ने मुझे बताया कि दीदी जी, दीदी बुआ जी ऐसे ही बोलते हैं गांव में, कि मतलब मेरे को बुखार हुआ तो मुझे सीधा देहरादून, 5-6 घंटे लगते हैं देहरादून, पहाड़ी रास्ता है, कभी सड़क सही रहती है नहीं रहती है। आप लोगों ने कुछ इंटरनेट में और उसमें सोशल मीडिया में फोटोज भी देखे होंगे, कोई बीमार पड़ रहा है तो चारपाई में लेकर जा रहे हैं, बल्कि मैंने अभी एक सीरीज भी करी है, वेब सीरीज, उसमें की चारपाई में जा रहे हैं क्योंकि साधन ही नहीं है कुछ, तो कि मुझे देहरादून आना पड़ा बुखार आने के चक्कर में, तो मुझे बड़ा
0: दुख हुआ होगा फिर आपको।
1: और जान, मैंने कहा खेत क्यों खाली पड़े, और मुझे बचपन की यादें में माल्टे बहुत हुआ करते थे, अब एक तो सीजन चेंज भी हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, मतलब आम के आम लग रहा है, बताओ पहाड़ों में आम लगते ही नहीं थे कभी पहाड़ में, आम लग रहे हैं, माल्टे गायब हो गए, और श्रोते ज्यादातर, हमारे गांव का श्रोता तो शुक्र है चल रहा है, लेकिन काफी सारे श्रोते भी सूख गए हैं, तो और बंदर का है, भालू का, ये सब का मिनेस है, वो सब, ये लोग कहते हैं हम कुछ भी उगाते हैं, दीदी जी बुआ जी कुछ भी उगाते हैं, सब
0: खा जाते हैं,
1: खा जाते हैं, भालू आते हैं, बंदर आते हैं उखाड़ के, लंगूर आते हैं, चूहे होते हैं, तो क्या हो करे। तो फिर मैंने लोगों से पूछा जो वहाँ पे कृषि जो करते हैं, तो कहते हैं कि इनको बीज दे सकते हैं आप, जैसे हल्दी हो गई, अदरक हो गई, तो मैंने ये मुहैया गांव के लोगों को दिलवाए, हल्दी और अदरक, वो उन्होंने उगाया, अच्छी फसल हुई, और एक मैंने कोशिश की कि एम्बुलेंस भी जाए किसी तरह से, तो ताकि बड़े खुश हुए, मतलब उनको लगा कि आसपास के गांव के लोग भी आ गए, कोई अपना बीपी टेस्ट करा रहा है, कोई शुगर टेस्ट करा रहा है, तो धीरे धीरे, और मेरे को यही कहना है ममता जी कि बहुत, ये मैंने बहुत बड़ा टास्क ले लिया है, और मैं
0: सच में
1: अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि लोग आए मेरी मदद करें, ताकि पहाड़ के जो गांव

0: जहाँ पे पलायन की इतनी बड़ी समस्या है वो फिर से बस जाए, वहाँ पे आजीविका के साधन हो। और एक मेरा मैंने बात की है सरकार से, वहाँ पे एक स्कूल है सरकारी स्कूल जिसमें
1: जी
0: मेरे पापा भी कभी पढ़ते होते, उसमें सिर्फ 5 बच्चे पढ़ते हैं, और बल्कि जो स्कूल के टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनके बच्चे खुद वहां नहीं पढ़ते हैं,
1: जी
0: क्योंकि वहां वो साधन ही नहीं है, क्योंकि आजकल तो इंग्लिश मीडियम के अलावा कुछ करता ही नहीं है, वो संस्कृत महाविद्यालय है। तो मेरा एक सपना है कि उस स्कूल को मैं थोड़ा सा बेहतर करूं, जिसमें एक सेंटर भी बने औरतें, क्योंकि औरतें ही बची हैं कि वो
1: जी
0: कढ़ाई बुनाई और कुछ ऐसे काम कर सकती है जिससे उनको आजीविका मिले।
1: जी
0: और जैसे कुछ गाँव में हो भी रहा है, पहाड़ों में कुछ औरतें काम कर रही है, तो ऐसा कुछ मैं चाहती हूँ कि लोग स्वावलंबी बने, उनको नीचे ना उतरना पड़े, पलायन ना करना पड़े, वो घर बैठ के कमा सके। तो ऐसे ये एक लंबा सा सपना है। और
1: ये सचमुच बहुत बड़ा सपना है, और हम विविध भारती परिवार की ओर से इस बात के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ा सकें, ताकि इतनी सारी लड़कियां खासतौर से जुड़ पाएं। और क्योंकि पहाड़ों पर लड़कियों का जीवन ज्यादा कठिन है, हमने तो
0: बहुत
1: ये भी
0: कठिन है, सारा काम
1: हाँ
0: लड़कियां और औरतें ही करती है,
1: करती
0: घास
1: हैं,
0: काटने से
1: हाँ
0: लेके जानवर चुगाने से लेके सब
1: सब
0: काम।
1: कुछ। हमने तो ये भी सुना है कि वहां पर पुरुष वर्ग, बहुत सारे पुरुष वर्ग गांव छोड़कर शहरों में आजीविका के लिए चले जाते हैं, और महिलाएं अकेली रह जाती हैं घरों में। और जानवर जो आते हैं, भालू बंदर जिसका जिक्र भी किया, शेर तक आते हैं, तो अकेले फाइट करती हैं, लड़ाई करती हैं उनको अपने बचाव के लिए। तो ये पहाड़ों की महिलाओं को हम सलाम करते हैं।
0: बिल्कुल
1: सलाम तो
0: बिल्कुल,
1: हम आपको भी कर रहे हैं
0: अरे
1: कि आप
0: थैंक यू।
1: कहां
0: नहीं,
1: से
0: मैं भी
1: आई।
0: पहाड़ियों, पहाड़ी महिलाएं बहुत स्ट्रांग होती हैं,
1: जी जी
0: और जितने भी मैं आपको बताऊं आंदोलन पहाड़ में चले हैं, उनमें सबसे ज्यादा योगदान महिलाओं का रहा है, चाहे वो चिपको आंदोलन जो हमारे भगुना जी ने और चंडी प्रसाद भट्ट जी ने चलाया, शराबबंदी आंदोलन महिलाओं ने ही उसका आगे बढ़कर, सारे पेड़ों से कौन चिपकी थी, महिलाएं ही चिपकी थी।
1: क्या बात है, सचमुच। तो हम
0: हाँ
1: इसी बात पर आज आपके हाथों एक पौधारोपण भी करेंगे, अभी इस
0: जरूर,
1: प्रोग्राम के बाद 4 बजे, जब हमारा प्रोग्राम सजीव प्रसारण खत्म होगा यहाँ विविध भारती के परिसर में। और उस पौधे का नाम हम सखी सहेली हिमानी पुरी रखेंगे, तो ये हम सब के लिए गौरव की बात होगी।
0: ये मेरे
1: यहाँ
0: लिए भी बहुत गौरव की बात है, और धन्यवाद। और पेड़ लगाना, ये आपने मुझे कहा, मैं बहुत
1: जी
0: खुश हूं, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि सब लोग अगर एक एक पेड़ लगाए तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग और ये जो
1: जी
0: एनवायरनमेंट, इसके इसमें सुधार होने का, क्योंकि हम ये सोच रहे कि सरकार सरकार ही क्यों करे, सरकार को भी करना चाहिए, जरूर हम टैक्स दे रहे हैं,
1: जी
0: लेकिन हमारा भी कर्तव्य
1: निजी
0: बनता
1: स्तर
0: है
1: पर
0: निजी स्तर पर, कि
1: बिल्कुल।
0: हम जो आगे पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए रहने लायक तो रहे।
1: बाप दादे ने जो पेड़ लगाए हैं आम
0: हाँ
1: जामुन के, बस वही हम खा
0: वही
1: रहे
0: हम
1: हैं।
0: खा रहे, वो भी कट चुके हैं।
1: जी बिल्कुल। तो आज आपने बहुत अच्छा संदेश और बड़ा संदेश दिया है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, हालांकि हमारे लिए आपकी फिल्मों से गाना चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन फिल्मों की लंबी फहरिस्त है, खामोशी द म्यूजिकल, कुछ कुछ होता है, हम आपके हैं कौन का गाना सुनवा ही दिया, कभी खुशी कभी गम, मैं प्रेम की दीवानी। तो यहाँ पर हम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गाना सुनवाते हैं।
0: जी जरूर।
1: बस इस पर्दे पर हिमानी जी को देखिए और महसूस कीजिए, वैसे तो फेसबुक लाइव में आप देख ही रहे उन्हें।

0: विविध भारती से ये है विशेष सखी सहेली कार्यक्रम और हिमानी जी के अभिनय यात्रा बहुत बड़ी और बहुत समृद्ध है और मुकम्मल है। बहुत सारे श्रोता भी सवाल पूछ रहे हैं, हम याद दिला रहे हैं हिमानी जी को, हमराही की देवकी भौजाई बहुत मशहूर हुई थी देवकी भौजाई से, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में नाम रखने लगे थे भाभी को भौजाई, देवकी भौजाई, है ना, याद है आपको?
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ससुराल सिमर का रज्जो द्विवेदी, मिसेज कौशिक की पांच बहुएं मिसेज लाजवंती और राधा जी, सुलक्षणा हसरते की सुलक्षणा, जाने कितने किरदार आपने निभाए हैं। तो हमारे श्रोताओं की ओर से सवाल है कि आपको कौन सा वाला किरदार ज्यादा अच्छा लगता है?
1: देखिए ये तो बहुत ही कठिन सवाल है क्योंकि ये ऐसा है कि क्योंकि मैंने तो 250 से ऊपर फिल्में करी हैं तो मैं गांधारी का ही एग्जांपल दूंगी क्योंकि आजकल तो पहले तो 10-12 बच्चे होते थे फिर आजकल तो एक एक भी होता है मुश्किल से दो। तो गांधारी से कोई पूछता कि कौन सा तुम्हें सबसे प्रिय है, ऐसे मैंने जितने भी किरदार किए हैं वो सब मुझे प्यारे हैं क्योंकि जैसे माँ को अपने बच्चे क्योंकि हमारे क्रिएशन होता है। लेकिन जैसे कि आपने अभी जिक्र किया देवकी भौजाई, इसलिए कुछ खास कुछ किरदार, सारे किरदार बहुत प्यारे हैं लेकिन कुछ किरदार जैसे कि देवकी भौजाई क्योंकि वो पहला किरदार था। क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं जब दिल्ली में थिएटर करती थी ना तो एनएसडी रेपर्टरी वो गवर्नमेंट जॉब था ना तो वो नॉर्मल टाइमिंग वो ही होता था 9 to 5 और जब शोज होते थे हमारे प्लेस तब हम शाम को प्ले करके लेट लौटते थे, नहीं तो चार्टर्ड बसेस। अब गरीब जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते थिएटर पैसा नहीं होता तो जमुना पार रहते थे मयूर विहार में, आजकल तो मयूर विहार एशियाड के बाद बड़ा ही पॉश कॉलोनी बन गई है तो उस टाइम वो थी स्ट्रगलर्स की। तो मैं चार्टर्ड बस से जाके मंडी हाउस आती थी और शाम को जैसे होता था ऑफिस वाले लोग जाते थे तो जैसे बैठे रहते हैं, अब रोज देख रहे हैं मंडे टू फ्राइडे एक महिला आ रही है तो ऐसी जैसे बात हो रही कि आप क्या करती हैं तो मैं बोलती थी थिएटर करती हूँ तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन वैसे क्या करते हैं
0: की
1: आदमी की औरत रोज सुबह कुछ तो करती होगी। लेकिन जब मैंने हमरा ही किया देवकी भौजाई का तब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ कि पहले से ही लोग बोलने लगे अरे देवकी भौजाई क्योंकि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट ना हम लोग कैरेक्टर के नाम से हमको जानने लगते हैं। और जो लोग उस टाइम देखते थे आज भी कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग आजकल के यंग लोग ने तो नहीं देखा दूरदर्शन के टाइम पर उन्हें आज भी देवकी भौजाई याद है। और वो मैं एनएसडी से फ्रेश निकली थी तो इतनी मेहनत से वो तैयार किया था कि वो कैसे बात करेगी कैसे, मैंने थोड़ा सा राजस्थानी पुट डाला था मुझे तो नहीं पता था पर मेरे हस्बैंड जयपुर रह चुके थे तो रोज मैं उनको परेशान करती थी अपनी स्क्रिप्ट ले जाके कि इसमें राजस्थानी पुट डालो।

0: क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी कम थी, तो मैंने डायरेक्टर के साथ बात करके, प्रोड्यूसर के साथ, कि जो पढ़े लिखे कम होते तो उनकी जो अपनी रीजनल भाषा है वो आ जाती है, और वो किस तरह से आंखें, खूब मेहनत से तैयार किया। वैसे तो जो भी मैंने रोल किया पूरी मेहनत से किया, लेकिन उससे मुझे पहली बार ख्याति मिली थी ऐसी, अगर कहें तो हम आपके कौन, क्योंकि वो मेरी पहली बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, तो वो भी मेरा फेवरेट है। वैसे तो मैंने कहा सारे
1: कुछ कुछ होता है, और
0: कुछ कुछ होता है कि रिफत भी, और दिलवाले दुल्हनिया की भी रज्जो बुआ बहुत फेमस है, हीरो नंबर वन की बुआ, और परदेश की बुआ, और बंधन, बहुत सारे किरदार।
1: उमराव जान में भी आपने काम किया,
0: उमराव जान में भी काम किया, और ये मेरा जो धारावाहिक आपने सब बोला, वो सुलक्षणा उस टाइम जो मैंने रोल किया था हसरते में, जी तभी आया था, बहुत बोल्ड कैरेक्टर था उस टाइम का सुलक्षणा, और ससुराल सिमर का की जो था। और इन दिनों मेरा एक धारावाहिक चला 7 साल, हप्पू की उल्टन पलटन,
1: जी जी जी, वो बहुत
0: किरदार, कटोरी अम्मा, वो भी बहुत लोगों ने आज तक उसको सराहा है, पसंद किया है। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में कि मैंने अलग अलग किस्म के रोल किए, चाहे वो फिल्म थिएटर में तो खैर करे ही हैं, लेकिन फिल्मों में बहुत मुश्किल होता है कि आप मैच्योर हैं तो आप माँ के रोल करनी है, और एक तरह के रोल होते थे, लेकिन मैं बड़ी इस मामले में लकी हूँ कि मैंने माँ का रोल भी किया। तो बंधन में जो मेरी माँ है, और मुझे कुछ कहना है, या मैं प्रेम की दीवानी हूँ, या बीवी नंबर वन की माँ, ये बिल्कुल अलग है। ऐसी बुआ का, आई स्टार्टेड विद बुआ या चाची जान, बुआ का कैरेक्टर हीरो नंबर वन में बुआ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम परदेश की बुआ या अपने डीडीएलजे की बुआ। तो इस मामले में मैं, क्योंकि मैं कॉमेडी भी किया है मैंने, नेगेटिव भी किया है, सीरियस भी किया है
1: जी। और अपने श्रोताओं को हम याद दिला दें कि श्याम बेनेगल की फिल्म सूरज का सातवां घोड़ा,
0: सूरज का सातवां घोड़ा, मम्मो
1: कला फिल्म है, इसमें आपने बहुत सशक्त अभिनय किया है, और हमारे श्रोता भी कुछ इसी तरह की बात लिख रहे हैं। और उसके बाद ये कमर्शियल फिल्में, तो वहाँ एक तरफ कला फिल्म, एक तरफ ये कमर्शियल फिल्में, तो कैसा आप, कैसे अपने आप को ढाल लेती हैं? हमारे श्रोताओं की ओर से ये सवाल है कि आप जो विविध किरदार निभाती हैं, तो रोने का, हंसने का, फिर नेगेटिव किरदार, ये सब कैसे एक साथ कर लेती हैं? ये बताइए, राज की बात है ये तो।
0: कोई राज की बात नहीं, ये क्या कहते हैं, हम किरदार करते हैं तो क्या करते हैं, जिंदगी जीते हैं ना, उस किरदार में घुस जाते हैं, उसको जीवंत करते हैं। और हर किरदार, जैसे कि लोग कहते हैं कि अरे आप इतने अलग अलग एक साथ कैसे, क्या हम जिंदगी में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, और कभी हमारे मन में गुस्सा भी होता है, तो थोड़े नेगेटिव भी हो जाते हैं, तो ये सब हम में है। और हम, ये जिंदगी इतनी बड़ी, मतलब एक थिएटर ही है, शेक्सपियर ने भी कहा है कि ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज,
1: रंगमंच है,
0: रंगमंच है जिंदगी। तो आप देखिए, सारे किरदार आपको आप आसपास मिलेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वही कर देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये तो जिंदगी सिखाती है
1: जी। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक गाना सुने या फिर श्रोताओं की कुछ टिप्पणियां भी आ रही हैं, हालांकि हमारे श्रोता भी आज कुछ ज्यादा उत्साही हैं और लगातार बधाइयां दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक कलाकार के रूप में सफलता और एक इंसान के रूप में संतोष, इन दोनों में आप किसे अधिक महत्वपूर्ण मानती हैं? हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है,
0: दोनों तराजू अगर एक साथ बैलेंस हो जाए तो क्या बात है, लेकिन अगर दोनों में से चॉइस करने की बात आएगी तो मुझे लगता है इंसानियत ज्यादा बड़ी है, वो सब ज्यादा बड़ी चीज है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब एक गाना सुनवाते हैं जिसे, जिसकी फरमाइश आपने ही की है, गाइड फिल्म का गाना
0: जी,
1: एक अंश सुनते हैं।

0: गाइड फिल्म का ये गाना हमने सुनवाया हिमानी जी की चॉइस पर। और हिमानी जी, बताइए कि आज की युवा पीढ़ी, जो खासकर लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, अभिनय के क्षेत्र में आगे आना चाहती हैं, तो उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए? आपने तो भी एनएसडी किया और बिल्कुल छलांग लगा दी आपने, लेकिन उन लड़कियों के लिए कहिए जो गाँव में, छोटे शहरों में, कस्बों में रहती हैं, क्या तैयारी करें, कैसे आए?
1: एक तो ये कि मैं कहना चाहूँगी कि जो ये अभिनय की दुनिया है, ये इतनी ग्लैमरस नहीं जितनी लगती है। ग्लैमर है ज़रूर, लेकिन आपको प्रिपेयर करना होगा कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए और सिंसेरिटी चाहिए, मेहनत चाहिए, जो कि किसी भी प्रोफेशन में करने के लिए होता है, लेकिन इसमें खासकर बहुत। और टाइमिंग्स, घंटे बहुत है। अभी भी आप देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो हीरोइन है टॉप पे पहुंच के, दीपिका पादुकोणे 8 घंटे या 6 घंटे के लिए लड़ रही हैं, उनको काम कम मिल रहा है, या मतलब जो लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं, लेकिन लोग एक्सपेक्ट करते हैं, काफ़ी सारे लंबे आर्ज होते हैं, और खासकर जो नए लोग आते हैं तो उनके तो बहुत लंबे आर्ज होते हैं, संघर्ष बहुत होता है। तो अगर आप में संघर्ष करने का मादा है,
0: लियाकत है,
1: हाँ, और सिंसेरिटी है, सिर्फ ग्लैमर की वजह से मत आइए, क्योंकि ये आसान प्रोफेशन नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि अगर आप में अदम्य प्रेम है अभिनय करने का, या आजकल तो बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं, अभिनय कर सकती हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर सकती हैं, कैमरामैन, आजकल औरतें कैमरामैन भी हो रही हैं, साउंड इंजीनियर्स, इतनी सारी विधाएं हैं, तो अगर आपकी एम्बिशन है तो आपको मेहनत करने के लिए तैयार है तो जरूर आइए। लेकिन अगर आप इजी वे चाहती हैं कि मतलब रातों रात आप स्टार बन जाए, तो सॉरी, फिर तो आपको मतलब कहना तो नहीं चाहिए, या तो फिर कपूर खानदान से होना पड़ेगा, या शाहरुख खान के खान होना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल,
1: आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और अगर आप में टैलेंट है और सिंसेरिटी है और आप मेहनत करने को तैयार है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आउटसाइडर्स भी आए हैं, सक्सीड हुए हैं।
0: बिल्कुल, और आपने खुद नाम लिया शाहरुख खान, तो कहीं आप
1: शाहरुख खान भी आउटसाइडर था, अक्षय कुमार जी आउटसाइडर थे,
0: बहुत संघर्ष था इनके जीवन में भी, और कहीं आप सलमान खान की माँ बनती हैं, कहीं कहीं इन बड़े जो हीरो हीरोइन हीरो हैं इनकी भाभी बनती हैं, चाची बनती हैं, इतने बड़े बड़े रोल आपने निभाए हैं। अब हम छोटे छोटे सवाल आपसे जानना चाहते हैं, बताइए हमें कि एक महिला के रूप में आपको किस तरह के संघर्ष करने पड़े, किस तरह की चुनौतियां झेलनी पड़ी?
1: देख, महिला के रूप में मुझे लगता है कोई भी महिला जो घर से बाहर निकलती है तो उसको मर्दों, पुरुषों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, कि उसको प्रूव करना पड़ता है।

0: है कि वो सिर्फ एक महिला नहीं है, उसमें टैलेंट है, उसमें अकल है,
1: बताना
0: चाहे
1: पड़ता
0: आप
1: है।
0: हाँ चाहे आप आपकी फील्ड में हो, चाहे जर्नलिज्म में हो, चाहे टीचिंग में हो, तो महिला को डबल प्रूफ करना चाहिए। और लोग तो ये समझते हैं कि मतलब मैं जब क्लास में मुझे अच्छे नंबर आते थे, अच्छा बिकॉज यू आर, लोग ये सोचते अच्छा बिकॉज यू आर हिमानी भट्ट, मैं भट्ट थी तो मतलब आप लड़की हैं, आप देखने में खूबसूरत है तो इसलिए आपको अच्छे मार्क्स मिल गए। क्यों, हमारी मेहनत कहाँ गई, हमने क्या पढ़ाई नहीं करी, या हम जो रोल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं हमको डबली प्रूफ करना चाहिए, करना पड़ता है। और महिला के साथ और साथ में जिम्मेदारी भी आती है कि महिला के अगर शादी होती है, शादी तो होगी और उसके बच्चे होते हैं, तो महिला माँ बनती है तो उसको घर भी संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, बाहर का फ्रंट भी संभालना पड़ता है। तो एक ये सब
1: दूरी तेरी जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल। और एक स्त्री की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है बताओ हिमानी शिवपुरी?
0: स्त्री की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो स्त्री है, शक्ति का रूप है।
1: बिल्कुल। और अपनी शक्ति को तलाशे और आपकी इस
0: और उसमें
1: लंबी
0: शक्ति
1: यात्रा
0: है और किसी भी चीज का सामना कर सकती है, वो सब औरतों ने प्रूव किया है।
1: जी, अब गाना सुनवाए एक?
0: जरूर।
1: कौन सा गाना? खामोशी द म्यूजिकल।
0: जी।

0: हिमानी जी, बहुत सारे श्रोता कमेंट भेज रहे हैं, तो हम सबके शामिल तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मिले जुले कमेंट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भट्ट जी तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में भी थे, अब पता नहीं वो आपके परिवार से थे या कोई और थे, और आपने जिक्र भी किया अपने पिताजी का, तो शायद इसलिए उन्होंने लिखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी सादगी, मधुर व्यक्तित्व और शानदार अभिनय ने भारतीय सिनेमा को अनेक यादगार किरदार दिए हैं, विविध भारती पर आपको सुनना अत्यंत सुखद लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने चार चांद लगा दिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे हिमानी जी के लिए एक वाक्य याद आ रहा है, मेरी मम्मी बिल्कुल हिमानी जी जैसी ही लगती हैं, तो उनका नाम भी हम लोगों ने हिमानी मम्मी, एक मामी, हिमानी मामी रखा है। तो हिमानी जी को देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए दी है। कुछ श्रोताओं ने पूछा है कि इन दिनों आप क्या कर रही हैं।
1: सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं श्रोताओं का करना चाहती हूँ, और मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, 40 साल से ऊपर हो गया है, ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है, आप लोग का प्यार जो मुझे मिलता है आज रेडियो के द्वारा मिल रहा है। मैं सड़क पे चलती हूँ, लोग आते हैं और मिलते हैं और मेरी पुराने किरदारों की बात करते हैं, रंगमंच की बात करते हैं जिन्होंने थिएटर, तो ये आपका प्यार है, प्रोत्साहन है, इसी की वजह से मैं आज ये काम जी, कर रही हूँ।
0: हिमानी जी, आपकी अभिनय यात्रा और आपकी निजी यात्रा इतनी दिलचस्प है, हमें तो लग रहा है कि अब ये बातचीत खत्म ना करें, तो बस अब ये

0: आपसे हम वादा करते हैं और आप वादा कीजिए कि आप विविध भारती के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए आएंगे।
1: जरूर हम जरूर
0: तो
1: आऊंगी।
0: अब आपने सबके सामने वादा कर दिया। हाँ। तो हमारा वादा पक्का रहा। अब बिल्कुल वक्त नहीं, अब चलने से पहले हम बता दें कि आज के फेसबुक लाइव की कमान जुबैर खान और तनिष्का नाइक ने संभाली। तकनीकी सहयोग किरण बंग, भावना सिंदल, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक का था। और हमारे उद्घोषक साथी मंदाकिनी जोशी, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और हमारी बहुत सारी सखियां सहेलियां जो नियमित रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होती हैं। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, कार्यक्रम प्रमुख श्री संतोष जाधव की प्रेरणा और सहयोग से यह प्रसारण सफल हुआ। और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग राजेश बेलदार सर और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी सोपान तायडे जी, और साथ में किशोर, किशन, एकता और हमारे विविध भारती की पूरी टीम, हमारी जो सखियां हैं इस कार्यक्रम में नियमित रूप से आया करती हैं। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपसे अभी थोड़ी देर बाद मुखातिब होंगी, तो विविध भारती के फेसबुक पेज को का दामन थामे रखिए। फिलहाल अब हम इजाजत ले रहे हैं। आप सभी को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। हिमानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नमस्कार।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में गूंजेगी बांसुरी की तान। फिल्मी गानों में बांसुरी के टुकड़े होते हैं जो हमें अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्म संगीत, गजलें, फ्यूजन और शास्त्रीय संगीत सभी मंचों पर अपनी बांसुरी की तान से सबको मोहित किए हुए हैं। उन्होंने जब वी मेट फिल्म के इस गाने में बांसुरी बजाई। फिल्म दम लगा के हईशा। फिल्म ओ माई गॉड। बांसुरी की इस मीठी तान को सुनकर आपको लग रहा होगा कि आज के सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आखिर कौन से बांसुरी वादक आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ। ये है पारस नाथ से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। तो चलिए विविध भारती के स्टूडियो में स्वागत करते हैं बनारस घराने के जाने माने बांसुरी वादक पारस नाथ जी का। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर?
1: मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि इतने संगीतमय माहौल में आपने मुझे याद किया। इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ।
0: दिल्ली में जब तक आप रहे तो कितने ऐसे कलाकार थे, बड़े कलाकार, जिनके साथ आपकी बहुत यादगार मुलाकातें रहीं संगीत की दुनिया के?
1: ईश्वर के आशीर्वाद से जितने भी दिल्ली के जितने बड़े कलाकार हैं उन सभी के साथ मुझे मौका मिला कि मैंने सबसे आशीर्वाद लिया। सभी के साथ संगीत

0: भी की और सबके साथ ट्रैवल भी किया, टूर भी किया, रिकॉर्डिंग्स भी की, चाहे आप म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम ले लीजिए, चाहे आप चाहे दिल्ली में क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्डिंग, डिवोशनल फोक म्यूजिक के साथ साथ बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, वो है क्लासिकल डांस का, जहाँ बहुत बड़े बड़े जैसे उमा शर्मा जी हैं और शोभना नारायण जी हैं, सोनल मानसिंह जी हैं और बिरजू महाराज जी का पूरा इंस्टीट्यूट है वहाँ, और बहुत सारे इनके बैलेज में बजाना, इनके प्रोग्राम में बजाना। और जब बैलेज में रिकॉर्डिंग होती थी तो हमारे पास 20-20 पेज का, 30-30 पेज का नोटेशन आता था बैले का, तो वो पढ़ के बजाना लाइव रिकॉर्डिंग में, और दैट वाज अ चैलेंजिंग जॉब।
1: बिल्कुल
0: और उसके बाद फिर दिल्ली रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में, जैसे जो फोक इंडस्ट्री है पंजाब की, यूपी की और गढ़वाल की, वहाँ पे बहुत सारे लद्दाख से लोग आते हैं,
1: अच्छा
0: आसाम से लोग आते हैं, कजाकिस्तान से लोग आते हैं अपने तरीके के रिकॉर्डिंग करवाने के लिए। वहाँ हमने कितनी रिकॉर्डिंग्स की हैं वहाँ पे।
1: वाह वाह
0: और दिल्ली इंडस्ट्री में जो नामचीन म्यूजिक डायरेक्टर का आप बोल लीजिए, स्टूडियोज बोल लीजिए, जैसे कि चरणजी जहूजा जी और मेरे चाचा जी दिनेश कुमार जी
1: जी
0: और जसपाल मुनि जी, हरि ओम जी और पंडित ज्वाला प्रसाद जी, और बहुत गुणी म्यूजिक डायरेक्टर मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त श्री चरणजीत आहूजा जी भी, पूरा मतलब पंजाब के जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं सबका उन्होंने नाम किया है अपने साथ जोड़ के,
1: जी
0: और जवाहर बट्टल जी, बहुत बड़े बड़े जितने भी संगीतज्ञ रहे हैं और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा, मैं माफी चाहता हूं। तो पिताजी का भी अपना एक अलग
1: दर्जा रहा
0: वर्चस्व रहा है दिल्ली
1: जी।
0: में। पिताजी का जब समय रिकॉर्डिंग में ऐसा होता था कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक किया जाता था। आप सोचिए कि आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, सब हैं, बट एक आर्टिस्ट का एक इतना प्यार, इतना सम्मान और इतने आर्टिस्ट की, उनके प्लेइंग की, उनके इमोशन की इतनी कदर है, इतना प्रेम है उनको मिल रहा है कि उनसे पूछ के स्टूडियो बुक हो रहा है, एक बहुत बड़े सम्मान की बात है।
1: वाह
0: फिर पिताजी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर भी बहुत सारा काम किया, और फिर वो सब होते होते कमर्शियल मुझे भी शौक चढ़ा अरेंजमेंट का।
1: अच्छा
0: हाँ, पिताजी को देख के, मेरे चाचा जी को देख के, मेरे चाचा जी श्री दिनेश कुमार जी,
1: जी
0: वो भी बांसुरी वादक हैं और म्यूजिक डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं।
1: जी जी
0: सो ये सब माहौल पूरा देख के वो फिर मुझे भी शौक चढ़ा कि मुझे भी अरेंजमेंट करना है। तो फिर धीरे धीरे मैंने भी कोशिश की फोक म्यूजिक में और डिवोशनल म्यूजिक में, और कुछ कुछ गजल वगैरह भी मैंने कुछ अरेंज किया, कंपोज किया, दिल्ली में रिलीज किया। तो ये इस तरीके का रहा सफर
1: ये सफर इस तरह से चलता
0: जी
1: रहा।
0: दिल्ली में।
1: हमारी बातचीत के सफर में अब एक गाने की जगह बनाते हैं, तो
0: जरूर
1: आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए?
0: आप बताइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: अच्छा देखिए, आप ही का पसंदीदा गाना मैं बता रहा हूं,
0: जी
1: और वो है तुम्हें देखती हूं तो लगता है ऐसे। ये आप बांसुरी पर काफी बजाते रहे हैं,
0: जी जी जी
1: है ना
0: जी जो मैं आपको बांसुरी सुना रहा हूं ना,
1: जी?
0: ये बांसुरी भी मेरी ही बनाई हुई है
1: क्या
0: मेरे
1: बात
0: पिताजी
1: है,
0: के साथ,
1: वाह
0: और ये बांसुरी कम से कम नहीं तो मैं बचपन से इस बांसुरी पर रियाज कर रहा हूं। आप
1: वाह
0: देख रहे होंगे इस पे ये निशान,
1: जी जी जी जी
0: और ये आप जब रियाज करते हैं तो ये भी निशान पड़ जाते हैं,
1: हाँ, उंगलियों
0: तो
1: के,
0: ये बहुत पुरानी बांसुरी है मेरी।
1: वाह
0: और ये जो थ्रेडिंग है ये
1: जी,
0: देख रहे हैं, ये वैकुंठ वेणु की थ्रेडिंग है।
1: अच्छा
0: तो वैकुंठ वेणु जो है, लॉकडाउन के समय पे पिताजी मेरे भाई और हमने सोचा कि अपने घराने को, अपने बुजुर्गों को, अपने दादा गुरु को और अपने संगीत को और अपने सास को एक इनिशिएटिव डेडिकेट करना चाहिए। तो तब एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव लिया था हमने, जिसके नाम से चैनल रिलीज किया वैकुंठ वेणु। तो वैकुंठ तो हम सब जानते हैं,
1: बिल्कुल
0: जहां से ना वापस आने का मन होता है, ना अगर उस तरफ मन और दृष्टि चली जाए और आपको एहसास हो जाए कि वो क्या है, तो फिर आप वापस नहीं आते वहां से। तो जब मैं बांसुरी बजाता हूं मुझे वो जो होना है जो प्रेजेंट टाइम पे वो जो सेंस है जो इमोशन है वो जो जुड़ाव है संगीत और सुर के और सांस के साथ
1: जी,
0: तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे वापस नहीं आना है मुझे।
1: क्या बात है।
0: इसके लिए उसका नाम रखा वैकुंठ
1: वेणु
0: और वेणु, क्योंकि मानसरी को वेणु भी बोलते हैं।
1: जी जी।
0: तो इसलिए वैकुंठ वेणु नाम रखा हमारे इनिशिएटिव का। वो था धरोवर का, तो हमारे हमने यूट्यूब चैनल रिलीज किया, उसमें अपने संगीत जगत के मुंबई के इंडस्ट्री के जितने भी बड़े दिग्गज कलाकार, चाहे श्री अनूप जलोटा जी हों, चाहे हरिहरन जी हों, चाहे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हों
1: जी,
0: और श्रेया घोषाल जी से लेके सलीम सुलेमान जी से लेके विशाल शेखर जी से लेके सभी ने बहुत आशीर्वाद दिया।
1: वाह।
0: और इस बात की, इस इनिशिएटिव की तारीफ की और उन सभी ने अपने अपने तरीके से सपोर्ट किया। और इस दौरान जब इस इनिशिएटिव का शुरुआत किया था तो हम सबकी ये प्रार्थना थी कि जितने बांसुरी वादक और शहनाई वादक हैं, कोशिश करूं कि मैं इस इनिशिएटिव में, क्योंकि ये एक पूजा जैसी है।
1: बिल्कुल।
0: जब आप घर पे पूजा कर रहे हैं, अपने मंदिर में पूजा कर रहे हैं, आप चाहेंगे कि उस पूजा की आरती सब लोग लें और उसमें जो बना कड़ा प्रसाद है वो सबको मिले,
1: सबको मिले,
0: ये आप चाहेंगे। क्योंकि पूजा आप कर रहे हैं, ये आपकी आत्मा से कर रहे हैं, आपका शरीर नहीं कर रहा, आपकी सोच कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है, और वो आत्मा आपको ईश्वर से जोड़ रही है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो सबको मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी सोच से फिर मैंने कोशिश की कि जितने भी बांसुरी वादक जुड़ सकें, अब उसमें पंडित प्रवीण गोरखिंडे जी ने बड़ा अच्छा योगदान दिया, उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे, उन्होंने बड़े प्यार से एक्सेप्ट किया। पंडित अजय प्रसन्ना जी ने किया
1: जी,
0: और अश्विन श्रीनिवासन जी ने किया
1: जी,
0: एंड नवीन अन्ना जी ने किया। ये सब बड़े इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं
1: जी जी,
0: हिंदुस्तान के बड़े नाम हैं। और राकेश जी ने अपना एक इमोशन व्यक्त किया था, वो बजा नहीं पाए थे।
1: अच्छा।
0: हाँ, रोनू जी भी बजा नहीं पाए थे, पर उन्होंने अपना भावना प्रकट की थी, अभिव्यक्त किया था। और फिर उसके बाद मेरे भाई हैं, कजन ब्रदर्स हैं, शहनाई बजाते हैं
1: जी जी,
0: संजीव कुमार जी, श्री संजीव कुमार जी, अश्विनी कुमार जी, और तीन भाई हैं, वो एक तबला बजाते हैं, दो शहनाई बजाते हैं
1: जी जी।
0: और फिर और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे, काफी देवप्रिया जी जो हरि जी की शिष्या हैं वो जुड़ी थी, और भी काफी आर्टिस्ट जुड़े थे। फिर मेरे पिताजी ने खुद हाजिरी दी थी इसमें।
1: वाह।
0: उन्होंने राग मालकोस बजाया था
1: जी,
0: मेरे भाई ने राग हंसुधनी बजाया था, और मैंने राग दुर्गा और एक और दो राग बजाए थे। तो ये हमारा वैकुंठ वेणु का बनाया हुआ बांसुरी है।
1: वाह वाह वाह,
0: जो मैं आपको इतनी देर से सुना रहा हूँ।
1: जी जी जी। क्या बात है।
0: फिर मेरे पास दो और इंस्ट्रूमेंट है
1: जी,
0: जो मैं आपको सुनाऊंगा
1: जरूर,
0: उनके बारे में भी बताऊंगा
1: जी।

0: अर्जी, बहुत आनंद आ रहा है आपकी पूरी जीवन यात्रा के बारे में जानकर और इस जीवन यात्रा के दिलचस्प पहलुओं से आप हमें वाकिफ करवा रहे हैं। दिल्ली से मुंबई तक का जो मामला है, ये किस तरह से जमा और कब आप समंदर वाले इस शहर की तरफ आए?
1: जी, मैं दिल्ली में जब कुछ साल हो गए काम करते हुए
0: जी,
1: तो कुछ लोग ये प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे। दिल्ली के जो नामचीन काम करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, पिताजी के मित्र हैं, कुछ म्यूजिशियंस हैं जो पिताजी के करीबी दोस्त रहे हैं, तो वो प्रस्ताव लेके पिताजी के पास जाते थे कि ये बच्चा केपेबल है आगे बढ़ने के, तो इसको सिर्फ एक लिमिट तक सीमित ना रखा जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। तो अब ये डिसीजन बहुत बड़ा था पिताजी का और परिवार का कि उस एज में मुझे भेजना। तो फिर हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक दिल्ली के बहुत ही बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जसपाल मोनी जी, मैं उनकी रिकॉर्डिंग में ही था, तो जब उनकी रिकॉर्डिंग हुई वो बहुत खुश हुए, बहुत प्यार उन्होंने दिया मुझे। उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ घर पे। तो वो घर मुझे ड्रॉप करने आए, उन्होंने पिताजी के साथ मिले। वो मेरे पिताजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे पिताजी भी उनको बहुत प्यार देते हैं। सो उन्होंने पहली बार इस तरीके से प्रस्ताव रखा कि पारस को मुंबई आप जरूर भेजिए। वहां से फिर कड़ी बनी मुंबई की आने की।
0: अच्छा, हाँ, तो इस तरह से
1: मुंबई आना हुआ
0: जसपाल मोनी जी।
1: हाँ, वो इतना आसान, जिस तरीके से बताया मैंने, इतना आसान था नहीं
0: जी, जी।
1: बट मैं वो इमोशन आपको मैं बताना चाहूँ तो भी नहीं बता सकता
0: जी।
1: बट इट वॉज डिफिकल्ट डिसीजन फॉर फ्रॉम फैमिली साइड। बट वो बोलते ना कि वो अगर कुछ अच्छा पाना है तो कुछ तो
0: त्याग करना पड़ेगा।
1: तो उन्होंने अपनी ममता का, प्यार का, अपने उस लगाव का त्याग किया
0: जी
1: उस एज में मेरे लिए।
0: बिल्कुल। एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो है मुंबई और दिल्ली दो अलग अलग दुनियाएं हैं। मुंबई एक बिल्कुल अलग संसार है और दिल्ली एक अलग संसार है।
1: बिल्कुल।
0: मुंबई में आपकी एक लंबी यात्रा रही है और उस यात्रा के विस्तार में हम नहीं जाएंगे, लेकिन किन किन फिल्मों में, जिनका आप जिक्र करना चाहें, आपने बांसुरी बजाई है उसके बारे में बताइए, और कुछ टेलीविजन सीरियल्स में भी बजाई है उनका भी जिक्र कीजिए।
1: जी, वैसे तो एक समय के बाद अभी वो लिस्ट बनाना छोड़ दिया है।
0: जी,
1: तो अभी चाहे वो दंगल मूवी हो
0: जी, जी,
1: और क्रिश 3 हो, काई पोचे हो, बधाई हो, तलवार हो, ओ माय गॉड हो,
0: ओ माय गॉड के बांसुरी पीस तो बहुत लोकप्रिय हुए
1: जी, जी, जी,
0: है ना, गानों में भी और बैकग्राउंड के जो भी पीसेस हैं
1: जी,
0: जी, जी,
1: और ऊंचाई एक पिक्चर आई थी, ऊंचाई
0: जी, जी, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की, अमिताभ बच्चन थे,
1: एक मिली पिक्चर आई थी
0: जी,
1: केदारनाथ, नजरअंदाज, धड़क पिक्चर है, मिशन मंगल है,
0: वाह,
1: अन्ना भाई एमबीबीएस रिटर्न है,
0: क्या बात है,
1: दबंग 3 है, दृश्यम है,
0: ये तो बहुत लंबी फेरिस है,
1: सरबजीत है, फितूर पिक्चर है, नोटबुक पिक्चर है, गुड बाय है, मन मर्जियां है,
0: वाह वाह,
1: शुभ मंगल सावधान, शुभ मंगल ज्यादा सावधान,
0: हाँ दोनों पार्ट,
1: हाँ दम लगा के हईशा, जॉली LLB,
0: वाह वाह,
1: बहुत सारी पिक्चरें
0: जी, बिल्कुल
1: बहुत सारी हैं। तो इनमें क्या रहा है कि कुछ मूवीज में मैंने सॉन्ग्स में बजाया है,
0: हाँ,
1: और कुछ मूवीज में मैंने बैकग्राउंड स्कोर बजाया है
0: जी, जी, बिल्कुल,
1: बट बिकॉज एज आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट, सो इट्स माई पार्ट ऑफ जर्नी।

0: एक तरफ फिल्मों में आप बजा रहे हैं, दूसरी तरफ शास्त्रीय महफिलों में आप बजा रहे हैं, तीसरी तरफ फ्यूजन की अपनी एक दुनिया है, तो इन सब के बीच में तालमेल कितना मुश्किल है और सबसे ज्यादा एंजॉय इसमें से किस पहलू को आप करते हैं?
1: एंजॉय तो मैं शास्त्रीय संगीत को ज्यादा करता हूं
0: जी,
1: और उसके बाद फिर फ्यूजन में ज्यादा करता हूं, फिर मैं फिल्म संगीत को

0: मैं इंजॉय करता हूँ
1: जी जी
0: बट क्योंकि शास्त्रीय संगीत में रहते हुए एक सिलसिलेदार जो गाना बजाना होता है उसको उसी तरीके से जीना होता है, उसी तरीके से रियाज करना होता है, वैसे ही आपके संस्कार हो जाते हैं, वैसे ही आप जीने लगते हैं।
1: वो फटाफट संस्कृति नहीं चलती
0: वो, हाँ वो नहीं चलता है वहाँ पे, तो वो आपको एक अनुशासन में लेके आता है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे।
1: बिल्कुल।
0: और फिर उसके बाद फ्यूजन में जब एक खास बात यह है कि आप जितना वास्ट सोच सको, मतलब जितना बड़ा सोच सकते हैं आप, आपके पास कोई बंदिश नहीं है। करेक्ट, क्लासिकल में बंदिश है, शास्त्रीय संगीत में बंदिश है, यहाँ बंदिश नहीं है,
1: बहुत एक्सपेरिमेंट
0: है। और फिल्म म्यूजिक में क्या है कि आप, जैसा कि आपको याद है ओ माय गॉड मूवी,
1: जी बिल्कुल,
0: मैंने तो सिर्फ फिल्म का नाम लिया, आपने ही बोला वो कृष्णा थीम,
1: जी जी,
0: तो वो जो लोकप्रियता है, लोगों तक घर घर तक पहुंचना एक आर्टिस्ट का, वो फिल्म म्यूजिक के जादू है।
1: एक और पहलू है आपका और वो है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फिल्मी गानों की ट्यून्स आपने बजाई हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हम विविध भारती में बैठे हैं, जहां से जब भी बीच में फिलर्स बजते हैं तो आपकी बांसुरी अक्सर, बल्कि मैं कहूं कि रोज गूंजा करती है।
0: क्या बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये जान के कि
1: जी
0: मेरी बांसुरी, मेरा बजाया हुआ संगीत आपके विविध भारती में रेगुलरली बजता है, तो मैं मतलब यहां हमेशा हूं आपके साथ।
1: हम बिल्कुल बिल्कुल हैं। अच्छा, फिल्म म्यूजिक में एक जमाने से बांसुरी एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट रहा है
0: जी,
1: तो पुराने फिल्मी गानों में से वो कौन सा गाना है जो आपके दिल के सबसे करीब है, जो बांसुरी का पीस है?
0: जी, पुराने में तो हम सब जानते हैं हीरो धुन, वो एक
1: हीरो का एक बहुत ही शानदार पीस है,
0: वो एक वो पीस है। और फिर उसके बाद एक गाना है जाने जा, उसमें फ्लूट का एक बहुत प्यारा पीस है,
1: वाह।
0: और फिर एक जिसमें मनोहरी दा जो हमारे इंडस्ट्री, मुंबई इंडस्ट्री के,
1: मेटल फ्लूट बजाया करते थे,
0: मेटल फ्लूट हो, नहीं ये मेटल फ्लूट है सर
1: जी, बिल्कुल,
0: दिस इज सिल्वर प्लेटेड,
1: वाह,
0: सिल्वर प्लेटेड फ्लूट है ये, मतलब सिल्वर प्लेटेड एज इन सिल्वर हेड है इसका, चांदी का हेड है, बाकी सिल्वर कोटेड है,
1: जी जी।
0: सो इसका बजाना और इसका टेक्निक और इसकी साउंड एकदम
1: डिफरेंट है, बिल्कुल।
0: सो एज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री,
1: ये भी बजाना होता है,
0: अलग अलग साउंड्स भी मैं बजाता हूँ
1: जी।
0: सो जिसमें से इंग्लिश फ्लूट है, इसको मेटल फ्लूट भी बोलते हैं, इंग्लिश फ्लूट भी बोलते हैं
1: जी,
0: और सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं
1: जी।
0: सो ये इसका

0: तो ये
1: वाह क्या बात है, क्या बात है।
0: ये ओकेरिनो है
1: जी जी,
0: ये आप देख रहे होंगे इसका शेप ही कुछ अलग है।
1: हाँ ये तो कुछ अलग ही चीज है।
0: दिस इज ओकेरिनो
1: जी,

0: उसका ऐसा साउंड है।
1: वाह वाह, ये बिल्कुल अलग साउंड
0: अच्छा,
1: है।
0: ये इसकी खास बात है, ये मैं इटली से लेके आया था।
1: अच्छा
0: ये एक बहुत कमाल के म्यूजिशियन हैं, उनके पास में गया था इटली में। वो
1: जी
0: एक बुजुर्ग से अंकल हैं, तो उनकी शॉप जो है इंस्ट्रूमेंट्स की, इट वॉज नॉट ओपन जब मैं था वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं इंडिया से हूँ और आई एम अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ म्यूजिक, सो आप प्लीज़ मेरे लिए एक मुझे दीजिए, क्योंकि मैं 2 दिन बाद जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए शॉप अपनी ओपन की, एंड आई ट्रेवल्ड ऑल द वे फ्रॉम फ्लोरेंस टू हिज सिटी, एंड आई बॉट कपल ऑफ मोर इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें से एक ये था।
1: वाह वाह, अच्छा हुआ आप ये हमारे लिए लेकर आए, बहुत ही सुंदर
0: और
1: सा।
0: ये आप देख रहे हैं सर, दिस इज कॉल्ड कजू,
1: जी जी
0: ये इसमें हम गाते हैं।

0: हाँ ये कर दूं तो बिल्कुल बिल्कुल,
1: इसमें हम गाते हैं ये तो पता ही आपको।
0: जी जी जी जी।
1: तो अब जैसे पता ही है, फिर भी मैं आपको एक लाइन गा,
0: जरूर बिल्कुल बहुत जरूरी है।
1: अब जैसे एक म्यूजिक है जो इसमें बड़ा अच्छा साउंड करता है,
0: हाँ हाँ
1: रहमान साहब के गाने का है।
0: हाँ हाँ हाँ

0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात
1: इसका
0: है।
1: एक ऐसा खुद से ही जुगलबंद निकले।
0: ये एक अलग वाद्य यंत्र हो
1: अब सर
0: गया।
1: एक मैंने जब मैं फ्लूट मेरा बहुत बड़ा पैशन रहा है हमेशा
0: जी
1: इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करना।
0: जी जी जी
1: मैं बहुत घूमा हूं, मतलब अकेले अमेरिका घूमा हूं, लंदन घूमा हूं, यूरोप घूमा हूं। जैसा मैंने कहा इटली में था, इटली स्पेशली एक जगह, जब मेरा फ्लोरेंस में प्रोग्राम खत्म हो गया तो मैं एक जगह से एक जगह गया सिर्फ इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने। तो मैं ऐसे दुनिया भर में सब जगह घूमा। अच्छा आप जब अकेले घूमते हैं ना तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का।
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में फिर हम कभी विस्तार से बात करेंगे। वो बहुत अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस हैं
0: जी,
1: और बहुत अलग अलग चीजें मैंने इंजॉय की है जिंदगी में।
0: क्या बात है।
1: अब जैसे ये बांसुरी है एक, तो
0: ये
1: एक
0: तो बहुत बड़ी सी बांसुरी है।
1: बड़ी बांसुरी, ये बांसुरी ही है। ये प्योर अपनी जो शास्त्रीय संगीत की जो कृष्णा बांसुरी है, बांसुरी ही है
0: कहां से लाए?
1: नॉर्मल, जहां से मैं, ये तो मेरे खुद बनाई हुई है।
0: अच्छा,
1: अब ये जो बांसुरी है, मैंने जब एक चाइनीज फ्लूट खरीदी, जब मैं दूसरे साउंड्स कलेक्ट कर रहा था, तो उसमें ऑप्शंस या स्केल्स अलग अलग नहीं मिल पा रहे थे मुझे। तो मैंने बहुत साल पहले एक मेरा एल्बम भी आया था जिसका नाम है इटर्नल विंड्स। उस एल्बम में मैंने वो ये साउंड बहुत पहले रिकॉर्ड करके रिलीज किया है 2011 में।
0: जी
1: हालांकि ये साउंड उससे पहले ही बना लिया था क्योंकि रिलीज करने में तो और 2 साल लगे थे।
0: जी,
1: तो इसका साउंड देखिए, नॉर्मल जो बांसुरी का साउंड है वो आपने सुना है,
0: बिल्कुल
1: इसका साउंड में सुनाता हूं आपको।
0: जरूर।

0: अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। अब ये साउंड जो है मैंने 2009 में क्रिएट कर दिया था। अब कई लोग इसको डीजी फ्लूट बोल के समझ के बना के वो अपना स्टैंप लगा के उसको फिर इंडस्ट्री में फिर यूज कर रहे हैं और कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी है उस बात की। बट अगर आप क्रिएशन की बात करते हैं, अगर आप सही बात करते हैं और सही होने की बात करते हैं, तो इस क्रिएशन का जो कि चाइनीज फ्लूट से एडॉप्ट किया हुआ है, तो अगर हिंदुस्तानी फ्लूट में एक्सपेरिमेंट अगर किया है ना इंडिया में, तो वो मैंने किया है। आई एम द फर्स्ट वन इन इंडिया
1: जी जी
0: हु क्रिएटेड इन हिंदुस्तानी बांसुरी इन टू डीजी फ्लूट और चाइनीज फ्लूट, दैट इज क्रिएटेड बाय मी
1: जी।
0: अब ये एक है, और इसका एक दूसरा जो हाई स्केल में ऐसा साउंड है,

0: ये इसका बाज नहीं है। हर साउंड का अपना बाज होता है,
1: बिल्कुल बाकायदा,
0: हर इंस्ट्रूमेंट का अपना बाज होता है, वो बाज समझना चाहिए। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा के उठा के भोपाली नहीं बजा सकते उसमें,
1: बिल्कुल।
0: साउंड जब उठा रहे कोई, उसकी नॉलेज भी तो जरूरी है ना। अब मैंने आपको इंग्लिश फ्लूट सुनाया, अब इसमें अगर मैं, हालांकि इंडियन भी बहुत अच्छा बजता है इसमें,
1: जी बिल्कुल,
0: इसमें मैंने एक इंडियन कंपोजिशन रिलीज किया था, तो मेरे जहन में क्या था कि इंडियन कंपोजिशन इंग्लिश फ्लूट में कैसे साउंड करेगी। अब देखिए, एक ये इसका जो स्टाइल है,

0: पूरा साउंड चेंज हो गया,
1: पूरा प्लेइंग चेंज हो गया ना।
0: जी जी,
1: अब वैसे ही जो ये जो साउंड है अब इसका जो प्लेइंग स्टाइल है,
0: हाँ क्या बात है।

0: ये स्टाइल है इसका।
1: वाह,
0: इस साउंड के स्टाइल के हिसाब से भी एक कंपोजिशन बनाई थी मैंने,
1: और ये फिल्म म्यूजिक में बहुत सुनाई दे रही है।
0: बहुत बजाया मैंने इसको जी, म्यूजिक में, मैंने अपने एल्बम में भी बजाया
1: जी।
0: एल्बम में जो कंपोजिशन था।

0: ये कंपोजिशन उसमें बजाई।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है, उसका अपना साउंड है, उसकी अपनी स्टाइल ऑफ प्लेइंग है।
1: बिल्कुल,
0: वो पता होना जरूरी है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता ऐसे चलेगा जब आप म्यूजिक सुनेंगे और स्टूडेंट बन के सुनेंगे,
1: बिल्कुल
0: उस्ताद बन के नहीं।
1: बहुत जरूरी है।
0: आजकल क्या है, सुनने से पहले उस्ताद बन जाते हैं, सीखने से पहले। अब ये देखिए, ये बांसुरी भी मैंने बनाई है,
1: ये छोटी वाली
0: है
1: जी।

0: वाह वाह वाह वाह, इसकी शार्पनेस बिल्कुल अलग है।
1: क्योंकि सर आप जब एक म्यूजिशियन बनते हैं ना
0: जी,
1: तो मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आर्टिस्ट, या आप आर्टिस्ट हो या किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको अपने काम से ईमानदारी रखनी चाहिए
0: जी,
1: और ईमानदारी आप तभी रख पाएंगे जब आप उसके धरोहर से, उसकी धरती से जुड़े हुए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: उसका बेसिक पता होगा आपको,
0: समर्पण कितना गहरा है।
1: अब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मुझे बांसुरी बजानी है, बांस तो जंगल से आ जाएगा, बनाने वाला कोई और होगा, मैं तो सिर्फ बजाऊंगा, तो मेरा प्रेम दिखाई नहीं देगा उसमें। प्रेम तो तभी होगा जब आप जानते हो बांसुरी बनती कैसे है।
0: वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बात बोली आपने।
1: आप जो चीज बजा रहे हैं वो आप खुद बना सकते हैं क्या?
0: जी,
1: अगर मैं बांसुरी किसी से ले रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर वो बांसुरी बनाना बंद कर दे तो मेरी बांसुरी छूट जाएगी। मैं डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरा प्रेम है उनके साथ, मेरा रिश्ता है उनके साथ। मैं जिनसे बांसुरी ले रहा हूं या जो भी मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट, अभी बड़ी प्यार से किसी ने भेजा, मैंने खोला भी नहीं अभी तक।
0: जी जी,
1: अब मैं खोलूंगा इसको, बांसुरी को सुनूंगा, देखूंगा, प्रेम करूंगा, मेरा नाता जुड़ गया अगर,
0: हाँ तो रख लेंगे,
1: रख लेंगे, बजाएंगे।
0: वाह,
1: पर अगर किसी ने प्रेम से भेजा है और वो इंस्ट्रूमेंट जो दिया है वो मेरे भाग्य है, वो बड़े भाग्य से कोई मिलता है आपको, अगर इंस्ट्रूमेंट अगर आपको कोई अच्छा दे रहा है और आपके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, ये आप समझिए कि आपका बहुत बड़ा भाग्य है।
0: क्या प्यारी बात है जी,
1: गुरु मिलना सबसे बड़ा भाग्य है
0: जी।
1: उसके बाद दूसरा भाग्य है कि आपको इंस्ट्रूमेंट सही मिले।
0: जी जी,
1: अब इसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है, हम बात करते रहेंगे तो 4 घंटे तक चलता रहेगा, पर सही इंस्ट्रूमेंट मिलना सबसे बड़ा भाग्य है गुरु मिलने के बाद। फिर आपको इंस्ट्रूमेंट से प्यार होना, उससे जुड़ना, तभी आपका साउंड 100 लोगों से अलग सुनाई देगा।
0: बिल्कुल, एक अलग पहचान।
1: सारे गामा पादा निसा आप सेम बजा रहे। अभी मैं आपको एक चीज, एक दो उदाहरण देता हूं
0: जी।
1: सपोज कीजिए सुबह कर आगे तोड़ी है
0: जी जी,
1: अब सारे गामा ऐसे भी बजता है थोड़ी, पर सिर्फ सारे ही गामा ही है, सिर्फ सरगम ही है।
0: वाह,

0: ये भी सारे काम है,
1: जज्बात आ गए
0: पर इसमें प्यार है।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ये जो प्यार है ये सर लेके पैदा होता है आदमी
1: जी,
0: या अगर बताया जाता है संस्कार से बताया जाता है, अगर लेके नहीं आया होता तो, तो जो लेके आया होता है उसकी लेयर जो होती है वो होती नहीं है। मतलब जो एक दुनियादारी की लेयर होती है ना, जो इनसेंसिटिविटी की लेयर है
1: जी जी,
0: वो नहीं होती है। तो उसका हिस्सा क्लियर है आत्मा का, तो वो ऑलरेडी महसूस कर रहा है। अब जो लेके नहीं आया संसार में, अब उसको अगर कोई सिखा रहा है, बता रहा है, पढ़ा रहा है, अब चार लोग हैं रूम में, एक को समझ में आ रहा है, एक को ज्यादा आ रहा है, एक को बहुत आ रहा है, एक को आ ही नहीं रहा। तो जिसको आ ही नहीं रहा उसे तब तक मेहनत करती रहनी पड़ेगी जब तक वो लेयर हटे ना उसके ऊपर से, जब तक वो सेंस नहीं कर पाए
1: जी।
0: तो वो प्रैक्टिस जब तक उसकी तब तक ही चलेगी जब तक वो सेंस नहीं कर पाएगा।
1: यस,
0: तो ये संगीत का ये एक आधार है।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर बातें हो रही हैं। और पारस जी, सबसे अच्छी बातें वो होती हैं जहां और ज्यादा बातों की गुंजाइश आगे के लिए छोड़ दी जाए।
0: क्या बात है,
1: तो आपके साथ जो महफिल है वो कभी खत्म होती नहीं है
0: जी।
1: इस महफिल को यहाँ रोकते
0: आपका,
1: हुए
0: आपका आपका और इस, अच्छा। इस जगह का जादू ऐसा है
1: जी,
0: मेरा खुद का मन नहीं करता जाने का, बट क्योंकि समय का भाव ऐसा रहता है।
1: मैं समझ सकता
0: आपका
1: हूं।
0: भी कार्यक्रम है आगे और मुझे भी कुछ कार्यक्रम में है जाना, सो मुझे दिल से एक बार फिर मैं आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं
1: जी
0: कि मुझे आपने इतनी प्रेम से और इतने सम्मान से याद किया और आमंत्रण किया यहाँ पे। ये मेरे लिए तो जैसा मैंने हमने शुरुआत की, दिस इज होम कमिंग बैक फॉर मी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जाने,
0: नहीं जाने।
1: एक बहुत अच्छा सा पीस बजाइए
0: तो मैं
1: गाने की फरमाइश कीजिए।
0: हीरो,
1: देखिए फरमाइश भी आ गई।
0: ये तो फरमाइश नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट है।
1: अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, हीरो के गाने की फरमाइश।
0: हाँ हीरो, मैं तो हीरो जैसा लग रहा हूं उनको शायद।
1: अच्छा। क्या बात है, क्या बात, कॉम्प्लीमेंट आया,
0: कॉम्प्लीमेंट है।
1: जी जी जी जी, तो हमारी टीम ने हीरो के गाने की फरमाइश की
0: जी,
1: और आपको भी हीरो कह दिया है।
0: मुझे निशब्द कर दिया आपने।
1: जी
0: सो ये हीरो धुन
1: जी
0: स्पेशली

0: डेडिकेशन टू यू,
1: शुक्रिया,
0: एंड टू जिन टीम की आप बात कर रहे हैं उन सबको एक दिल से मेरी तरफ से आप सबको डेडिकेशन है।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर। क्या आपको मेरे दिल से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: जी जी जरूर।
1: वो है ओ माय गॉड का थीम,
0: कृष्णा थीम,
1: कृष्णा थीम
0: जरूर।
1: सो दिस अगेन वंस अगेन दिस डेडिकेशन टू ऑल द लिसनर्स जो हमें इतनी प्यार से सुन रहे हैं
0: जी,
1: और इतना प्रेम हमेशा देते आ रहे हैं
0: जी
1: हमारे आकाशवाणी के विविध भारती को,
0: बिल्कुल
1: आए सारे आप सब टीम को, यहाँ आए सारे आर्टिस्टों को, जो ये सारी बुनियाद है ये उन प्यारे लिसनर्स, ऑडियंस और संगीत प्रेमियों पे निर्भर है जो हमें इतना सारा प्यार देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: सो दिस स्पेशल डेडिकेशन टू देम।
0: बिल्कुल, शुक्रिया।
1: एक हमारे बड़े अच्छे भैया हैं, उनका नाम है संजय विद्यार्थी जी।
0: जी।
1: सो बहुत गुणी आदमी हूँ, तो बहुत पुरानी बात है, तो उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया था। ही वॉज रिकॉर्डिंग वन सॉन्ग विद सम अनदर फ्लोटिस्ट, एक किसी बांसुरी वादक के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो रिकॉर्ड करते करते रिकॉर्डिंग हो गई, सब हो गया उनका, फिर जब मिक्सिंग कर रहे थे ना तो उनको एक अलग साउंड सुनाई दे रहा था गाने के बीच में, तो उन्होंने परेशान हो गए वो। फिर ना उस वक्त तो ये सॉफ्टवेयर वाला काम थी ना, डिजिटल था रहा था, तो वो ना एक एक चैनल मिक्सर में देख रहे हैं कि कहां से हो रहा है, क्या हो रहा है। सो फिर फाइनली उनको एक फ्लूट चैनल पे वो साउंड सुनाई दिया। तो वो क्या साउंड था मैं आपको बताता हूं
0: जी।
1: जैसे सपोज हो रहा है ना, ये कंपन जो हो रहा है,
0: बिल्कुल,
1: इसको हम विब्राटो कहते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब जो उनको विब्राटो जैसा सुनाई दे रहा था वो साउंड गाने में कैसा दे रहा था मैं बताता हूं आपको
0: जी।
1: तो विब्राटो इतना दिल से आ रहा था,
0: ये दिल से आ रहा था कि ये झटके से आ रहा था।
1: ये बड़ा कॉमेडी सीन था वो
0: जी।
1: जब उन्होंने सुनाया तो मैं पागल हो गया था।
0: अरे बाप।
1: खैर, ओ माय गॉड कृष्णा थीम फॉर
0: जरूर
1: एवरीवन।

0: शानदार, क्या बात है।
1: अच्छा क्या है, दो तीन पीस है
0: जी,
1: कुछ
0: जी।
1: फेमस जिसको लोग बोलते हैं कि मैं मतलब कुछ अलग आर्टिस्ट बोलते हैं कि शायद कुछ कंफ्यूजन हो सकती है
0: जी।
1: कभी कभी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक ही गाने को दो सिंगर गा जाते हैं, तीन
0: जी,
1: सिंगर
0: जी,
1: गा
0: जी,
1: जाते
0: जी,
1: हैं।
0: जी।
1: ऐसी कई बार मैंने भी कुछ कुछ गाने ऐसे बजाए हैं जो ऑलरेडी कोई बजा के गया है,
0: अच्छा अच्छा
1: फिर उसको फाइनल मैंने बजाया, फिर उसको रखा है।
0: जी
1: अब जैसे एक वो है कलर्स चैनल का जो थीम है, तो मैंने स्पेशली रिकन्फर्म किया जिसके साथ मैंने रिकॉर्डिंग किया था, जिस स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग किया था उनके पास आज भी सेशन रखा है, उसमें मेरा नाम है।
0: ओके
1: तो ये एक थीम है, और दूसरा फिर इस गाने में भी मैंने बजाया है मोमो के धागे वाले का
0: गाने, बहुत शानदार पीस है
1: आपके लिए स्पेशली मोमो के धागे।

0: क्या बात है, अद्भुत।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू,
0: बहुत बहुत शुक्रिया पारस जी विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच,
0: बहुत शुक्रिया।

जाने माने बांसुरी वादक पारसनाथ से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम। आज शाम के सभी साथियों को रेडियो सहेली इरम फातिमा का प्यार भरा सलाम नमस्कार। साथियों, आज की मुलाकात में हम बात करेंगे पर्यावरण की। पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है और हम और आप सभी इसको बखूबी जानते हैं, क्योंकि प्रकृति, पेड़ पौधे, नदियां सबसे हमारा जुड़ाव और लगाव रहता है। प्रकृति के सौंदर्य को देखकर शुद्ध वातावरण में सांस लेकर हम सब एक खुशी का एहसास करते हैं और साथ ही महसूस करते हैं अपने आप को सेहतमंद, क्योंकि जब शुद्ध हवा हमारे अंदर पहुंचती है तो हमारी न जाने कितनी अंदरूनी बीमारियों को दूर करती है और हमें सेहत का एहसास दिलाती है। पर्यावरण की इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए जरूरी है इसका बहुत ख्याल रखना, यानी संरक्षण करना दोस्तों, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें इतनी खूबसूरत ये प्रकृति अता की है, सौंदर्य अता किया है, तो इसको बनाए रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। जब हम इस खूबसूरती को निहारते हैं तो हमें एहसास होता है कि उस ऊपर वाले ने हमारे लिए कितनी खूबसूरत ये दुनिया बनाई है, कितना खूबसूरत ये चित्रकार है जिसने इतनी अच्छी चित्रकारी की है। कहीं खूबसूरत रंग बिरंगे पहाड़, तो कहीं उछलती कूदती लहराती नदियाँ, और कहीं खूबसूरत पेड़ पौधे और प्यारे प्यारे फूल। इन सबको बनाए रखने के लिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम इसे दूषित होने से रोकें, बचाएं, और साथ ही सराहना करें उस चित्रकार की।

0: आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: तो दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है कि हम लोग पॉलिथीन का इस्तेमाल कम से कम करें और जगह जगह कचरा ना फैलाएं, क्योंकि पॉलिथीन और कचरा ऐसे खुले में फेंकने से हमारी जमीन बंजर हो रही है। इससे प्लास्टिक को गलने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाइए। अगर हवा जहरीली होगी तो दोस्तों सांस कैसे ले पाएंगे हम? पेड़ कटेंगे तो बारिश कैसे होगी? याद रखिए, जल है तो कल है, और अगर प्रकृति नष्ट हुई तो हम सब भी सुरक्षित महफूज नहीं रहेंगे। और जंगलों की कटाई से अपने आप को रोकें और लोगों को भी जागरूक करें कि कम से कम पेड़ काटें, बल्कि वृक्षारोपण कीजिए, पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ लगाने से ही बारिशें होती हैं। और बारिश होने से तो आप जानते हैं, जहाँ फसलें अच्छी होती हैं, माहौल अच्छा होता है, वहीं जो मन को आनंद मिलता है काली घटा को देखकर, वो उसका बयान करना बमुश्किल है।

तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज से, बल्कि आज से क्या, आप लोग पहले से जानते हैं और यकीनन संकल्प ले ही रखा होगा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए और संरक्षण करने के लिए। और उम्मीद है कि जहां भी मुमकिन होता होगा पेड़ जरूर लगाते होंगे और पानी को व्यर्थ नहीं जाने देते होंगे, जितना जरूरी होता है उतना ही इस्तेमाल करते होंगे। दोस्तों, इस वक्त आप जानते नहीं कि अगर हमारे घर में पानी की इफरात है, ज्यादती है और हम मोटर चलाकर पानी के बहाव को नहीं रोक पा रहे हैं, तो नहीं मालूम आपको कि आपके आस पड़ोस में या दूर कहीं पर कोई पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। अगर आपके घर के टैप खराब हैं, नलकियां खराब हैं, तो आप उसको फौरन ठीक कर लें ताकि पानी नष्ट ना हो। पानी हो, हवा हो या पर्यावरण, ये सब हमारे जीवन से ऐसी जुड़ी हुई चीजें हैं जिनके बगैर हमारा जीवन

कार्यक्रम आज शाम मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं।

0: अतुलनीय है हमारा भारत देश।
1: हम भारतीयों में कदापि नहीं है
0: छल कपट दंभ और द्वेष।
1: सरल और सौम्य है हमारा वेश।
0: संपूर्ण जगत में एक ही है ऐसा देश
1: हमारा भारत।

हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। शाम के 5:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो साथी तरुणा जोगेश,
1: और साथ हूं मैं आपकी रेडियो मेजबान कशिका अग्रवाल। आशा करते हैं चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए और दिल में लिए एक नई उमंग आप सभी सुन रहे होंगे हमारा आज का कार्यक्रम।
0: तो चलिए, हमेशा की तरह अब करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत आज के सवाल के साथ। हमारा आज का सवाल है, आकाशवाणी यानी AIR की सिग्नेचर ट्यून किस राग पर आधारित है?
1: साथियों, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून किस राग पर आधारित है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको जाना होगा आकाशवाणी रामपुर के फेसबुक पेज पर, और आज अपलोड किए गए सवाल के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने हैं अपने अपने जवाब। सवाल का सही जवाब और सही जवाब देने वाले सभी श्रोता साथियों के नाम हम बताएंगे कार्यक्रम के अंत में।
0: अच्छा कशिका, एक बात बताओ, तुम सुबह की सैर करने वालों में से हो या उन लोगों में से जो अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हैं?
1: सच बताऊं तरुणा, इरादा तो रोज सुबह जल्दी उठकर वॉक पर जाने का होता है, लेकिन मेरा बिस्तर और नींद शायद मुझे जाने ही नहीं देना चाहती।
0: अरे वैसे मुझे तो लगता है ये कहानी बहुत से लोगों की होगी, लेकिन हम सभी जानते हैं कि थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा एक्टिव रहना हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है।
1: बिल्कुल, और जब बात स्वास्थ्य जागरूकता की हो तो एक छोटी सी पहल भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।
0: एग्जैक्टली कशिका, और पता है इसी सोच के साथ आकाशवाणी रामपुर लेकर आ रहा है एक खास आयोजन, वॉकाथॉन 2026, जो आयोजित किया जा रहा है 8 जून को।
1: हाँ तरुणा, और मैं तो वॉकाथॉन को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। और जानती हो, इस आयोजन की खास बात यह है कि इसी दिन आकाशवाणी अपने गौरवशाली सफर के 90 वर्ष भी पूरे कर रहा है।
0: मतलब ये 90 वर्षों का सेलिब्रेशन होगा, वो भी एक हेल्दी वे में।
1: हाँ बिल्कुल तरुणा, और दोस्तों आपको बता दें कि 90 वर्षों से आकाशवाणी सूचना, शिक्षा, संस्कृति और मनोरंजन के माध्यम से देशवासियों से जुड़ा हुआ है, और अब अपने इस ऐतिहासिक पड़ाव पर आकाशवाणी केवल अपनी यात्रा का उत्सव ही नहीं मना रहा, बल्कि समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश भी देना चाहता है, स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें।
0: वैसे ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने स्वास्थ्य को पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ कुछ कदम रोज चलना भी स्वास्थ्य की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।
1: हाँ तरुणा, और आकाशवाणी भी तो इस वॉकाथॉन के माध्यम से हम सबको यही समझाना चाहता है कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही बेहतर जीवन की आधारशिला है।
0: बिल्कुल ठीक कहा कशिका। तो आइए साथियों, हम सब मिलकर आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस विशेष अवसर पर स्वास्थ्य जागरूकता और सकारात्मकता जीवन शैली का संदेश फैलाएं।
1: और दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि 8 जून को सुबह 5:30 बजे आपको पहुँचना है आकाशवाणी रामपुर, पर उससे पहले गूगल फॉर्म के जरिए आपको करना है अपना रजिस्ट्रेशन, जिसकी जानकारी भी आकाशवाणी रामपुर के द्वारा जल्द ही आपके साथ साझा की जाएगी।
0: और याद रखिए साथियों।

लंबी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है, तो क्यों ना वो कदम हम सब साथ मिलकर उठाएं। और साथियों, इसी तरह हम बढ़ेंगे कार्यक्रम में आगे जगजीत सिंह जी की आवाज में ये गजल सुनते हुए।

साथियों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, हम फिर जुड़ेंगे आपसे आपके साथ एक बार ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के उस पार बहुत कुछ है खास।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर आप जुड़ गए अपने मन पसंद कार्यक्रम युववाणी से। चलिए बढ़ते हैं हमारे दैनिक सेगमेंट कुछ खास है आज की ओर और जानते हैं आज का दिन क्यों है इतना खास।
2: कुछ ख्वाबों की बात, कुछ अपनों का साथ, नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे कह रहे हैं बहुत कुछ आज। वाकई कुछ खास है आज, कुछ खास है आज।
3: साथियों, आप सब तो जानते ही हैं कि भारत की खूबसूरती उसकी विविधता में बसती है। यहाँ हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है और अपनी एक अनूठी कहानी है।
1: और आज कुछ खास है आज में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही राज्य की जो अपनी समृद्ध विरासत, जीवन संस्कृति और तेज विकास के लिए जाना जाता है।
3: जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। साथियों, आपको बता दें कि तेलंगाना वर्ष 2014 में आज ही के दिन यानी 2 जून को भारत का 29वां राज्य बना था।
1: हाँ दोस्तों, लंबे समय तक चले आंदोलन और जन भावनाओं के बाद आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना ने एक नए राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई
3: और तभी से हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है।
1: साथियों, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। सिर्फ अपनी चार मीनार के लिए प्रसिद्ध नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक, शिक्षा और व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
3: ये राज्य अपनी लोक कलाओं, बथुकम्मा जैसी रंग बिरंगे त्योहारों, समृद्ध इतिहास और संस्कृति विरासत के लिए भी जाना जाता है।
1: तेलंगाना की धरती ने हमें कई महान साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक और खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है।
3: और स्थापना दिवस केवल एक राज्य के गठन का उत्सव नहीं है दोस्तों, ये उन लोगों के संघर्ष, सपनों और आकांक्षाओं को याद करने का भी दिन है जिन्होंने तेलंगाना को एक अलग पहचान दिलाने में योगदान दिया।
1: तो आइए आज इस अवसर पर हम तेलंगाना की समृद्ध संस्कृति, उसकी उपलब्धियों और उसके लोगों की मेहनत को सलाम करें। साथियों, ये था हमारा सेगमेंट कुछ खास है आज।
2: कुछ ख्वाबों की बात, कुछ अपनों का साथ, नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
4: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।
1: चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं हमारी अगली गजल आशा भोसले जी की आवाज में।

साथियों, अब समय हो गया है आपके लिए एक खास पेशकश का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं यूथ परिचर्चा, जिसका संचालन किया है हमारी साथी कशिका ने, और आप सुनेंगे इसमें हमारी युवा प्रतिभागी क्रिस्टीना नेल्सन, प्रियांशु प्रजापति और आदित्य सक्सेना को।

0: नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे की जो केवल हमारे वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य से भी गहराई से जुड़ा है। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और घटते वन, जहरीली होती हवाएं हमें लगातार चेतावनी दे रही हैं कि यदि हमने अभी भी प्रकृति की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वस्थ पृथ्वी देना कठिन हो जाएगा। इन्हीं गंभीर और प्रासंगिक प्रश्नों के साथ आज की हमारी परिचर्चा का विषय है पर्यावरण संरक्षण, युवाओं की भूमिका, चुनौतियां और इसी परिचर्चा पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में शामिल हैं क्रिस्टीना नेल्सन, प्रियांशु प्रजापति और आदित्य सक्सेना।
1: नमस्कार, आकाशवाणी को सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम क्रिस्टीना नेल्सन है और मैं रामपुर की ही निवासी हूँ।
2: आकाशवाणी को सुनने वाले श्रोता साथियों नमस्कार, मैं प्रियांशु प्रजापति रामपुर का ही निवासी हूँ।
3: आकाशवाणी को सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मेरा नमस्कार, मैं आदित्य सक्सेना रामपुर का निवासी, धन्यवाद।
0: दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा, चेतना और परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। उनके पास नई सोच है, तकनीक की समझ है और समाज को दिशा देने की क्षमता है। लेकिन मैं अपने साथियों से पूछना चाहूंगी, क्या आज का युवा पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी मानता है या उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं?
3: प्रगति के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। आज ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और घटते प्रकृति संसाधनों के इस दौर में पर्यावरण संरक्षण कोई विकल्प नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन गया है। भारत जैसी युवावादी में जहाँ 65 से अधिक जनसंख्या युवा है, पर्यावरण को बचाने की सबसे बड़ी कमान इसी पीढ़ी के हाथ में है। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। सेफ सॉइल, फ्राइडे फॉर फ्यूचर जैसे ग्लोबल मूवमेंट इसका उदाहरण है। ग्रीन कंज्यूमरिज्म को अपना रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ना, कपड़े की थैली का उपयोग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ईवी को प्राथमिकता देना इनका आधार बनता जा रहा है। कई बार युवा पर्यावरण की खराब स्थिति को देखकर लाचार महसूस करते हैं या फिर ऐसा सोचते हैं कि मेरे अकेले बदलने से क्या होगा वाली सोच उनका शिकार कर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा दित्य आपने। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पर्यावरण संरक्षण एक विकल्प नहीं बल्कि हमारी जरूरत है। और ये भी आपने ठीक कहा कि पर्यावरण को बचाना भी युवा पीढ़ी के हाथ में ही है। और जैसा भी आपने हमें कुछ मूवमेंट्स के बारे में बताया, मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में हमारे श्रोता साथियों को विस्तार से बताएं।
4: जैसा कि आपने बात करी मूवमेंट की, तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जो हमारे एनवायरमेंट को अच्छा बनाते हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की, जो कि आंदोलन है, हमें याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज का संकट कितना गंभीर है। जहां आज की युवा पीढ़ी अपने सुरक्षित भविष्य की मांग को लेकर हर शुक्रवार सड़कों पर उतरती है, उनका ये कदम सरकारों को पर्यावरण नीतियों में ठोस बदलाव करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन नीतियों के साथ साथ हमारी बुनियादी जमीन से की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। जैसे सेफ सॉइल यानी मिट्टी बचाओ आंदोलन के जरिए हम मिट्टी का सही से इस्तेमाल करते हैं और मिट्टी बचाते हैं। आज दुनिया की लगभग 52% कृषि भूमि बेजान हो चुकी है। यह आंदोलन दुनिया भर की सड़कों को कानून बनाने के लिए प्रेरित करता है ताकि मिट्टी में कम से कम 3-6% ऑर्गेनिक कंटेंट को वापस लाया जा सके, क्योंकि मिट्टी सुरक्षित रहेगी तभी हमारा भोजन और अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। इन सब बदलावों के बीच एक आम नागरिक के रूप में हमारी सबसे बड़ी भूमिका ग्रीन कंज्यूमरिज्म में दिखती है। ये एक ऐसी जीवन शैली है जहां उपभोक्ता के तौर पर हम केवल पर्यावरण के अनुकूल, इको फ्रेंडली और रिसाइकल होने वाले प्रोडक्ट को चुनते हैं। जब हम जागरूक होकर ग्रीन प्रोडक्ट की मांग करते हैं तो कॉर्पोरेट कंपनियों को भी उत्पादन शैली बदलनी पड़ती है। निष्कर्ष के तौर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये तीनों आंदोलन आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। जहां फ्राइडे फॉर फ्यूचर हमें राजनीतिक और नीतिगत स्तर पर जागरूक करता है, वहीं सेफ सॉइल हमारे अस्तित्व की बुनियाद, हमारी धरती माँ की रक्षा करता है। और ग्रीन कंज्यूमरिज्म और हमारे व्यक्तिगत स्तर पर हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। जब तक हम सब मिलकर अपनी सोच और आदतों में बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक एक सुरक्षित और हरे भरे कल की कल्पना करना असंभव है। अब समय सिर्फ बात का नहीं बल्कि सामूहिक रूप से कदम उठाने का है।
3: पर्यावरण से जुड़े बड़े फैसले और सरकारी नीतियों में युवा की राय को अक्सर उतनी तवज्जो नहीं दी जा सकती जितनी मिलनी चाहिए। आज युवाओं के पास वेस्ट मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के क्षेत्र में नए बिजनेस शुरू करने के अपार अवसर हैं। हमको अपनी प्रगति को बचाने के लिए हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम प्रगति को बचाएंगे तो उसमें हमारा ही फायदा है।
2: बिल्कुल ठीक कहा आदित्य ने। पर्यावरण प्रदूषण से उभरने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी युवा शक्ति को आगे आना होगा। भारत जैसे देश में जहां युवाओं की आबादी सबसे अधिक है, पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। युवा किसी भी समाज में बदलाव के सबसे बड़े वाहक होते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए वह विभिन्न प्रकार से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आदतों में बदलाव करके समाज के सामने मिसाल पेश कर सकते हैं। वह प्लास्टिक की थैलियों का बहिष्कार कर सकते हैं और ते हैं बिजली और पानी की बर्बादी को रोक सकते हैं और सार्वजनिक वाहनों।
1: जैसा कि प्रियांशु ने बिल्कुल सही कहा, हमें पर्यावरण को बचाने के लिए अपने दैनिक जीवन में बहुत सी सरल आदतों को अपनाना होगा, जैसे कि पानी और बिजली की बचत, कपड़े के थैले का प्रयोग करना, सार्वजनिक परिवहनों को प्राथमिकता देना, कचरे का पृथक्करण करना और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, तो इसका प्रभाव अत्यंत सकारात्मक हो सकता है।
0: जैसे अभी आपने बात की कचरा पृथक्करण के बारे में, तो इस बारे में हमारे श्रोता साथियों को कुछ बताइए कि कैसे वो इस प्रक्रिया को कर सकते हैं।
1: मैं सभी श्रोता साथियों को यह बताना चाहती हूँ कि कचरा पृथक्करण पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसका अर्थ है कचरे को उसके प्रकार के अनुसार अलग अलग करना, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा और हानिकारक कचरा। गीले कचरे में भोजन के अवशेष, फल सब्जियों के छिलके आदि आते हैं, जबकि सूखे कचरे में कागज़, प्लास्टिक, कांच और धातु शामिल होते हैं। यदि हम घर से ही कचरे को अलग अलग करना शुरू कर दें तो उसको रिसाइकल करने में और उसके उचित निपटान में काफ़ी आसानी होती है। मैं स्वयं अपने घर में कचरा पृथक्करण का पालन करने का प्रयास करती हूँ। हम गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन का उपयोग करते हैं। गीले कचरे से खाद बनाई जा सकती है, जबकि सूखे कचरे को रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा सकता है। इससे ना केवल प्रदूषण कम होता है, बल्कि लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा भी घटती है। मेरा मानना है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति इस आदत को अपनाए तो हम अपने शहर और देश को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त कचरा पृथक्करण से प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत होती है। यह ऊर्जा की खपत को कम करता है और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। सरकार और समाज के संयुक्त प्रयास से इसे और प्रभावी बनाया जा सकता है।
5: मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक सामाजिक दायित्व ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए अनेक अवसरों का द्वार भी है।
0: बिल्कुल सही कहा क्रिस्टीना आपने। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण केवल एक सामाजिक दायित्व ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए अनेक अवसरों का द्वार भी है। पर इस पर मैं प्रियांशु जी आपके विचार जानना चाहूंगी कि पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के बीच में क्या संबंध है।
2: पर्यावरण संरक्षण और रोजगार के बीच का संबंध बहुत गहरा और सकारात्मक है। पुराने समय में माना जाता था कि उद्योगों के विकास के लिए पर्यावरण के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, लेकिन आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था में पर्यावरण को बचाना खुद में रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पारंपरिक तरीकों को छोड़ते हैं तो कई नए उद्योग खड़े होते हैं जो लाखों युवाओं को काम देते हैं, जैसे नवीनीकरण ऊर्जा, कोयला और पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए जब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रोजन पावर लगाए जाते हैं तो इनमें मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के लिए भारी संख्या में इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी और मजदूरों की ज़रूरत होती है। प्रदूषण कम करने के लिए ईवी इंडस्ट्री का तेजी से विस्तार हो रहा है। इसके कारण बैटरी बनाने, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने और नई कार बाइक डिज़ाइन करने के क्षेत्र में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। कचरा और प्लास्टिक प्रदूषण आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन इसे रिसाइकिल करना एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है।
0: बिल्कुल सही कहा प्रियांशु आपने। पर इस पे आदित्य मैं आपके भी विचार जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि पर्यावरण संरक्षण में रोजगार मुमकिन है?
3: जैसे कि प्रियांशु जी ने बताया हमें कि सोलर पैनल और ईवी की मदद से हमारी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं और पर्यावरण को भी फायदे पहुंचते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात बोली आपने। साथियों, अक्सर कहते हैं कि युवा हमारे देश का भविष्य है, लेकिन जब बात पर्यावरण की आती है तो युवा सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान भी है। जैसे जैसे हम सांस ले रहे हैं हवा में और पानी पी रहे हैं, वह दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है। अगर जैसे हम ईवी का इस्तेमाल करेंगे, हम उससे प्रदूषण को बचा सकते हैं, और सोलर पैनल का इस्तेमाल करके हम सूर्य ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को बचाएगी।
0: दोस्तों, हमारे प्रश्न का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया आदित्य और प्रियांशु ने। अब कृष्णा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके अनुसार पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत घर से कैसे की जा सकती है?
5: इस पर मेरे विचार यह है कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत वास्तव में घर से ही सबसे आसान और प्रभावी तरीके से की जा सकती है। छोटे छोटे कदम मिलाकर बड़े बदलाव ला सकते हैं, जैसे पानी की बचत करें, ब्रश करते समय नल खुला ना छोड़ें, शावर के बजाय बाल्टी का उपयोग करें, लीक हो रहे नलों को तुरंत ठीक करें, बिजली की बचत करें, कमरे से निकलते समय लाइट और पंखा बंद रखें, एलईडी बल्ब का प्रयोग करें, ऊर्जा संरक्षण वाले उपकरण अपनाएं, कचरे का सही प्रबंधन, गीले और सूखे कचरे को अलग रखें, रिसाइकल योग्य वस्तुओं को अलग करें।
0: बहुत खूब कहा क्रिस्टीना जी आपने। आपकी बात से मुझे एक चीज ध्यान आई। महात्मा गांधी जी ने कहा था, आप स्वयं वह परिवर्तन बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। दोस्तों, जब युवा स्वयं पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो परिवार, मित्र और समाज भी उनसे प्रेरित होंगे। आइए इसी के साथ जानते हैं हमारे साथियों से कि युवाओं के मार्ग में आने वाली ऐसी प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं जो वो पर्यावरण संरक्षण के समय फेस करते हैं। इस प्रश्न पे हम विचार जानना चाहेंगे। प्रियांशु जी, आपके बताइए, आपका क्या कहना है?
2: पर्यावरण संरक्षण के प्रति युवाओं में जोश और इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब वे धरातल पर काम करने उतरते हैं तो उन्हें कई जटिल और बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी बड़े बदलाव या आंदोलन को लंबे समय तक चलाने के लिए विपत्ति सहायता और बुनियादी संसाधनों की आवश्यकता होती है। युवाओं के सामने इस क्षेत्र में विभिन्न बाधाएं आती हैं, जैसे शुरुआती पूंजी। यदि कोई युवा पर्यावरण अनुकूल स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, जैसे प्लास्टिक के विकल्प तैयार करना या वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाना, तो उसे भारी निवेश की जरूरत होती है। बैंकों और निवेशकों से आसानी से लोन या फंडिंग नहीं मिल पाती, क्योंकि पर्यावरण से जुड़े बिजनेस में मुनाफा दिखने में लंबा समय लगता है। बहुत से युवाओं के पास विचार तो बेहतरीन होते हैं, लेकिन लैब टेस्टिंग, रिसर्च और उन्नत तकनीकों तक उनकी पहुंच नहीं होती। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आज भी व्यावहारिक पर्यावरण अनुसंधान के लिए आधुनिक प्रयोगशालाओं की कमी है।
0: बहुत खूब कहा प्रियांशु जी आपने। आदित्य, आपके इस पे क्या विचार है?
3: सबसे बड़ी चुनौती समाज की मुझे ये लगती है कि सबका मानना ही होता है क्या मुझे क्या फर्क पड़ता है वाली मानसिकता। युवा जब लोगों को टोकता है या जागरूक करते हैं तो अक्सर लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेकर उनका मजाक उड़ाते हैं। लोग दशकों से प्लास्टिक और संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के आदि हो चुके हैं। इस पुरानी आदत को बदलना बहुत धीमी और थका देने वाली प्रक्रिया है, जिसको कई बार युवा निराश हो जाते हैं और छोड़ देते हैं। भारत में युवाओं पर करियर और आर्थिक रूप से जल्दी सेटल होने का काफ़ी दबाव होता है। ऐसे में पर्यावरण के लिए समय निकालना कई बार परिवार के लोगों के लिए समय की बर्बादी समझने लगते हैं।
0: बहुत अच्छी बात की आदित्य आपने, कि लोग सोचते हैं मुझे क्या फर्क पड़ता है, और ये मानसिकता ही है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए चुनौती

0: बनती जा रही है। जब तक हम जितनी आवश्यकता हो उतना ही लें और भोजन का सम्मान करें, इन जैसी आदतों को नहीं अपनाएंगे तब तक खाद्य अपशिष्ट की समस्या बनी रहेगी। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि भोजन की बर्बादी का सीधा संबंध पानी, ऊर्जा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी से भी होता है। इसलिए हमें स्वयं जागरूक होना होगा और दूसरों को भी इसके प्रति प्रेरित करना होगा।
1: सही कहा आदित्य आपने। पर्यावरण के लिए समय निकालना, कई बार लोग समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है इसमें समय की बर्बादी ही होगी। कुछ छोटी छोटी आदतें ऐसी हैं जिससे युवा पर्यावरण संरक्षण कर सकता है। अगर कोई युवा कचरा अलग अलग कर भी ले, तो नगर निगम की गाड़ियां कई बार उसे ले जाकर एक ही डंप यार्ड में मिला देती हैं। सही रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने से युवा की मेहनत बेकार भी चली जाती है, जिसे कई बार हम देखते हैं कि कागज़ों पर तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है, लेकिन बाज़ार में यह आसानी से मिल जाता है। सरकारी नियमों के इस ढीले क्रियान्वयन के कारण ज़मीनी स्तर पर काम करना मुश्किल होता है। जैसा कि ग्रीन वॉशिंग का भ्रम, आजकल कई कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को केवल दिखाने के लिए इको फ्रेंडली कहती हैं, जबकि असल में ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। इस धोखे को पहचानना और सही जानकारी जुटाना युवाओं के लिए एक चुनौती।
0: दोस्तों, ये तो बात रही चुनौतियों की, पर मैं अपने युवा साथियों से जानना चाहूँगी कि इस पे उनके क्या विचार हैं कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को अधिक महत्व दिया जा रहा है, या उनको लगता है कि इससे भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। आदित्य, इस पे आपके क्या विचार हैं?
2: जी हाँ, बिल्कुल। विद्यालय और महाविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को ना केवल अधिक महत्व देना चाहिए, बल्कि इसे सिखाने के तरीके में भी एक बड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है। आज के समय में पर्यावरण शिक्षा को सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए किताबी विषय बनाकर नहीं रखना चाहिए। इससे अधिक महत्व देने के पीछे कई ठोस कारण और इसके फायदे हैं। अगर स्कूल स्तर पर बच्चों को पानी बचाना, पेड़ लगाना और कचरा अलग करना सिखाया जाए, तो उनकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। किताबी ज्ञान से ज़्यादा जब छात्र सीखते हैं, तो पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील बनते हैं। महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र के नीति पॉलिसी मेकर, इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, यदि एक सस्टेनेबिलिटी बनाकर रखें और भविष्य को ऐसे रखें कि जिससे हमारी प्रकृति को हानि ना हो, तो हमारा पर्यावरण बच सकता है। ये शिक्षा युवाओं को यह समझाने में मदद करती है कि आर्थिक विकास और प्रकृति का संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आदित्य आपने। मेरा भी मानना है कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में हमें पर्यावरण संरक्षण को एक जिम्मेदारी की तरह समझाना चाहिए, ना कि सिर्फ एक विषय की तरह पढ़ना चाहिए। प्रियांशु जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: जैसा कि अभी आदित्य जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। आज के छात्र कल के नीति निर्माता, इंजीनियर, डॉक्टर और बिजनेसमैन बनेंगे। यदि उन्हें कॉलेज स्तर से ही पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए, तो वे भविष्य में ऐसे फैसले लेंगे जो प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं। इसे सतत विकास की नींव जा सकता है। जैसे आज दुनिया भर में ग्रीन टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और बेस्ट रिसाइकलिंग के क्षेत्रों में लाखों नौकरियां आ रही हैं, महाविद्यालयों में इस शिक्षा को बढ़ावा देने से छात्रों को इन नए क्षेत्रों में करियर बनाने की प्रेरणा मिलेगी।
1: दोस्तों, जैसा कि पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को डराना नहीं, बल्कि उन्हें इन समस्याओं से लड़ने के लिए समाधान खोजना सिखाना है। संक्षेप में कहें तो पर्यावरण शिक्षा को एक अतिरिक्त विषय मानने के बजाय हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्से बनाया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी एक सुरक्षित और स्वस्थ धरती पर रह सके।
0: साथियों, अंत में मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि आप हमारे युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे। पहले आदित्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे युवाओं को क्या सलाह देंगे।
2: अंत में मैं आप सभी को यही सलाह देना चाहूंगा कि प्रकृति के पास हमारी जरूरतों के लिए सब कुछ है, लेकिन हमारे लालच के लिए कुछ भी नहीं। हमें ये समझना होगा कि पर्यावरण को बचाना कोई चैरिटी या दान नहीं है, यह हमारे खुद के अस्तित्व की रक्षा का मामला है। धन्यवाद।
3: मैं प्रियांशु अंत में अपने देश के युवाओं से इतना ही कहना चाहूंगा, हमें पृथ्वी अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना हर युवा की जिम्मेदारी है।
1: दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, आज के युवा समाज की सबसे बड़ी ताकत हैं। यदि युवा जागरूक होकर छोटे छोटे कदम उठाएं, तो पर्यावरण संरक्षण में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही एक बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद
0: साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी रामपुर से जुड़ने के लिए। आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि पर्यावरण संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसमें युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, धरती हमारी है, प्रकृति हमारी है और इसकी रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और सच ही कहा गया है कि यदि युवा जागरूक हों तो परिवर्तन निश्चित है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या संस्थाओं का कार्य नहीं बल्कि हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। युवा शक्ति में ऊर्जा है, विचार है और बदलाव लाने की क्षमता है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने और अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक कदम उठाएं। चुनौतियां अवश्य हैं, परंतु यदि जागरूकता, इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयास हो तो हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। आइए हम सभी संकल्प लें कि प्रकृति की रक्षा करेंगे, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित पर्यावरण छोड़कर जाएंगे। धन्यवाद।
4: तो साथियों, ये थी हमारी खास पेशकश यूथ परिचर्चा
0: और अब वक्त है प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव का। चलिए जानते हैं आज के सवाल का सही जवाब, साथ ही जानते हैं कि हमारे किन किन श्रोता साथियों ने आज सही जवाब देकर बाजी मारी है। हमारा आज का सवाल था, आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो की सिग्नेचर ट्यून किस राग पर आधारित है, और इसका सही जवाब है राग शिवरंजनी। और सही जवाब देने वाले श्रोता साथी हैं आप सभी
4: जॉन डी कास्ट्रो, अजीत कसाना, धर्मेंद्र चिप्पा, हीरामणि वर्मा, राष्ट्रपाल गजभैये, पुंजाजी नावकर, सुदर्शन शाह, राजेश, मोहम्मद रफीक पवार, विमल सक्सेना भारती, मोहम्मद वक्कार फरीदी, अनोखे लाल, रियासत हुसैन सिद्दीकी, पुष्पा लता शर्मा, संजय ढींगिया, राम कुमार रिवार, मसरूर हसन, सीताराम शर्मा, गुरमीत सिंह मीता, दीपेश वर्मा, किशन सपकाल, फागुराम यादव, जाकिर मंसूरी, कैलाश फूलमाली, जगदीश ठाकर, किशोर हिवराले, राजू मिगलानी, इरशाद अहमद, आफताब अंसारी, शमसुल क्वामर राही, मोहम्मद आमिर अंसारी, विनोद मुनत, निसार सलमानी, भुवन प्रकाश, लालगिरी गोस्वामी, रामशरण, बी एल धाकर, राधेश्याम पांडे, उत्तम कुमार भगत, बीपी गौतम, विठल सुरोशे, सदाशिव थोरात, अभिजीत गवानकर, संतोष खड़से, हुकुम करमरकर, हरख राम पटेल, अशोक सिंह, चंदूलाल पटवा, शाहजी बोटके, मिशबा समसी, सुरेश गगनेजा, नाज रेडियो क्लब, मुजफ्फर अली खान, विजय सुरलकर, गजानन येले, मोहम्मद सैयद अब्बासी, राजवीर सिंह यादव, अरविंद कुमार, सुनील पाठक, रवि रस्तोगी, प्रवीण चौहान, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, देवशंकर तामुरिया, लाल मोहम्मद अंसारी, के आर चौहान, एम खलील कुरेशी, मोहम्मद यासीन अनजान, रवि कुमार राहुल, शाहरून नूर अंसारी, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, विजय सिंह महोबिया, भाई रफत साहब, एसी मिश्रा, मुकेश कश्यप, गंगा सिंह रावत, नारायण प्रधान, अल्ताफ हुजारे, चौधरी राजवीर सिंह और दुर्गा राम साहू।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे विदा लेने का। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताना ना भूले हमारे इस पते पर। हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन संख्या 244901।
4: आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है patramila@rampur.gmail.com। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर भी संदेश भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
0: साथियों, नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9410087876। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई आवाज़ और एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए अपनी रेडियो पार्टनर कशिका अग्रवाल
4: और तरुणा जोगेश को दीजिए इजाज़त।
0: नमस्कार।

हमारे युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातेले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति शी चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है। इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने

0: सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

0: Akashwani at 90.
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है बॉस। रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। अब समय है चित्रपट संगीत का। पहला गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में

हसीना मान जाएगी फिल्म के इसी गीत के साथ। कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं, शाम के 6:20 में हैं। अब प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनन बारे सब भैया बहनन को आपकी बहन दीपा
1: और आपके भैया जसविंदर की
0: राम राम। जसविंदर भैया, क्या हाल चाल है तुम्हारे और खेती बाड़ी के?
1: दीपा बहन, हमारे हालचाल भी अच्छे हैं और हमारी जो खेती बाड़ी है वो भी ठीक ठाक है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान भैया बहन है ना, वे भी अच्छे होंगे और उनकी खेती बाड़ी भी अच्छी होगी।
0: हाँ भैया, किसान भैया बहन अच्छे तो होंगे ही, खेती भी अच्छी हुई और हमारे भैया बहनन के पशुओं बहुत अच्छे होंगे।
1: बिल्कुल सही बात कही दीपा बहन।
0: भैया हमने सुनी है कि कल तुम ब्लॉक गए।
1: हाँ दीपा बहन, हम गए तो है ब्लॉक।
0: का वहाँ कुछ नई योजना की बोर्ड लगो, जिसमें नंदिनी योजना को नाम भी सुनन में आ रहा हो भैया?
1: हाँ दीपा बहन, नंदिनी योजना को नाम को बोर्ड तो लगो, मैं तो गाय की दवाई लेन गओ,
0: अच्छा।
1: लेकिन जो पशु अस्पताल है ना वहाँ गओ और वहाँ डॉक्टर साहब ने पकड़ के बिठा लो और
0: अच्छा
1: कहने लगे, भैया तुम तो पहले से दूध को काम करते हो, जय योजना तुम्हारे लिए है।
0: जा, तो बहुत अच्छी बात है भैया। हमारी महिला समूह भी तो 6 महीने से सोच रहे होंगी कि कुछ बड़ो काम शुरू करो जाए, सिलाई कढ़ाई से कितनों कमावें। दूध को काम तो हर दिन को है भैया, पर डर लगता है ना कि कहीं घाटो ना हो जाए।
1: डर तो मुझे भी लगो पहले, पर डॉक्टर साहब ने जब पूरा गणित समझाओ ना,
0: हाँ
1: देखो बहन, सरकार चाहती है कि यूपी में देसी गाय को दूध बढ़ाए, विदेशी गाय तो गर्मी में बैठ जाती है,
0: हाँ
1: देसी गाय टिकाऊ होती है और इसलिए गिर, साहिवाल, थारपाकर, गंगातीरी नस्ल पर जो योजना लाए हैं।
0: नाम तो बहुत सुनो भैया। साहिवाल को काली काली होती है, बड़े थन होते हैं, पर मिलती कहाँ है और बहुत महंगी हो मिलती है भैया।
1: देखो दीपा बहन, मिल जाती है बड़े आराम से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ब्रीडर होते हैं ना, सरकार ने रेट भी तय कर दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 तक एक गाय को मानेंगे। उससे
0: अच्छा।
1: महंगी अगर आप लेगी तो बाकी को पैसा अपनी जेब से देने पड़े।
0: 60,000 भैया एक गाय के लोग, योजना में तो 25 गाय लेनी है, यानी कि 25 गुणा 60,000 कुल 15 लाख हुए। बाप रे, इतनों पैसा कहाँ से हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं भैया, कहाँ से लाएंगे?
1: अरे पूरी बात सुनो तो, 15 लाख में से 7.5 लाख तो सरकार दे ही,
0: अच्छा
1: 50% सब्सिडी है, मतलब आधो पैसा माफ और बाकी 7.5 लाख ही तो आपको देने हैं।
0: फिर भी भैया 7.5 लाख कहाँ से लाएंगे? हम 20 औरतें समूह में, सब मिलकर भी 2 लाख इकट्ठे होना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
1: उसके लिए बैंक है ना बहन, पशुपालन विभाग NOC बना देता है और बैंक को भरोसा होता है, क्योंकि आधो पैसा तो सरकार पहले ही दे रही है, ऊपर से पशुधन क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख तक बिना गारंटी के मिल जाता है, ब्याज में भी 3% तक की छूट है दीपा बहन।
0: अच्छा, तो बैंक वाले मना ना करेंगे भैया? पर भैया ना, कई गाय 25 में एक सोच कर ही डर लगता है। जो 25 गाय तो बहुत ही की, इतनी जगह चाहिए, चारों चाहिए, कोई बीमार पड़ेगी तो क्या होए?
1: भाई तो मैं कह रहा हूँ, सरकार भी जानती है कि 9 आदमी डूब सकता है, इसलिए पहले 3 दिन की ट्रेनिंग जरूरी कर दी है।
0: अच्छा।
1: बरेली, मथुरा, लखनऊ में सरकारी ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहीं आपको रहने हैं, खानों और सब कुछ फ्री है।
0: तो भैया ट्रेनिंग में क्या सिखाओ जाए? किताबी बातें ना हुई, हमें तो जमीन पर काम करनी है
1: ना बहन। देखो सब प्रैक्टिकल है, मैं खुद एक दिन देखन गया वहां पर ना, सिखाता है कि साहिवाल गाय को दिन में कितनों हरो चारो, कितनों सूखो, कितनों दानो देने हैं और गोबर कैसे उठाने हुआ, थन की सफाई कैसे करनी है, मशीन से दूध भी निकालना सिखाते हैं,
0: अच्छा।
1: बीमारी के लक्षण कैसे पहचानते हैं वो भी हमें बताते हैं।
0: यह तो बहुत बढ़िया है, मशीन से दूध निकाले तो टाइम बचाए भैया, साफ उराए, और वरना हाथ से निकालो तो बाल वगैरह गिर जान को डर रहता है। डेयरी वाले फिर रेट कम कर लेते हैं अगर कोई गंदगी देखते हैं तो।
1: बिल्कुल सही बात कही, लेकिन और सुनो दीपा बहन, सेड भी पक्को बनाने पड़ा है, सीमेंट को फर्श, टीन की छत, पानी की नाली, जाके अलावा चारा खान की जो नांद है ना वो भी डॉक्टर साहब नाप लेके जाएंगे।
0: अच्छा।
1: अगर कच्चो पशु सेड भाव ना,
0: हाँ।
1: तो पहली एक किस्त नहीं मिलेगी दीपा बहन।
0: तो सेड को का खर्चा भी तो भैया काफी लगाए, वो भी तो 2-3 लाख बैठ जाए, वो 25 लाख के गाय के लिए।
1: पर मनरेगा से मदद मिल जाती है दीपा बहन।
0: अच्छा।
1: गांव में जो प्रधान जी होता ना, उनसे बोलो तो लेबर को पैसा मनरेगा से निकलवा देंगे, ईंट सीमेंट को इंतजाम तो देखो आप को करने पड़ा है, वो 15 लाख की लागत में ही जोड़ लेंगे।
0: अच्छा भैया जय बताओ, सब्सिडी मिलती कैसी है? 1.5-7.5 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे
1: ना बहन? 3 किस्तन में आवेंगे, जैसे हमने बताई ना, पहली किस्त जब तुम सेड की फोटो, जमीन के कागज और 5 गाय की खरीद रसीद दिखाई दे ना, तब 25% यानी करीब 2.25 लाख रुपए मिलाए।
0: अच्छा भैया, जाको मतलब है हमें 5 गाय अपने पैसन से खरीदनी पड़ाई तभी सरकार भरोसा करे हम पर।
1: बिल्कुल सही बात कही। फिर जब 25 गाय पूरी हो जाए ना, उनके कान में टैग लग जाएंगे, बीमा हो जाए, तब दूसरी किस्त 50% मिलाई और आखिरी 25% 3 महीने बाद मिलाई। जब ध्यान रखियो, अब सर आए के देखेंगे कि गाय जिंदा हैं या आपने कहूँ ऐसे ही कागजन में तो ना बना दी सब चीजें, दूध दे रही हैं तभी देंगे।
0: यानी भगवान को रास्ता बंद। सही भी है भैया, बहुत लोग पैसा लेकर गाय बेच देते हैं। अच्छो बीमा कितने को होता है?
1: एक गाय को करीब 3,000 रुपये साल को, 25 को 75,000 और 3 साल को करवाने हैं ना, तो वो भी प्रोजेक्ट में जोड़ सकते हैं। बीमा कंपनी गाय अगर मर जाए तो 80% तक पैसा वापस कर देती है।
0: अच्छा चलो, यह टेंशन खत्म भाई भैया। अब दूध को हिसाब लगाते हैं, साहिवाल गाय कितनो दूध दे देती हुई रोज?
1: देखो नई जो ब्याई गाय होती है ना, वो 12 से 15 लीटर आराम से, और पुरानी हुई जाए तो 8 से 10 लीटर। और अगर बात करें ना औसत की, तो 10 लीटर तो मानिए लियो, 25 गाय को 250 लीटर रोजाना दूध।
0: हमारे यहाँ पराग डेयरी भैया 52 रुपये लीटर ले रही है। अभी 250 × 52 हुआ भाव, तो 13,000 रुपये रोज को, मतलब महीना को हम कमा सकते हैं, यानी कि महीना को 90,000, 3,90,000।
1: बिल्कुल दीपा बहन, अगर गुणा भाग करा ना तो एक महीना को 3,90,000, लेकिन खर्चा हुआ है। एक गाय दिन में कम से कम 100 रुपये को चारों खाती है, और 25 को लगभग 25,000 रुपये रोज, महीना को 75,000। अगर हम बात करें ना दवाई बिजली एक नौकर रखेंगे तो 25,000 कुल मिला के 1,00,000 खर्च।
0: हाँ भैया, फिर भी 2,90,000 बच गए। औरतें तो 20 औरतें तो भैया एक हिस्से में 14,500 रुपये महीना, इससे तो घर चल जाएगा भैया। ऊपर से गोबर से 2 ट्राली खाद बनाए महीना में, और 5,000 की बिकी हो जाएगी आराम से।
1: बिल्कुल, देखो दीपा बहन, जो तो ही कुछ बात नंदनी कृषक समृद्ध योजना की, और देख रही हूँ आपकी, अब दो हमारी खरीफ की फसलें हैं हमारे किसान साथी लगाना चाह रहे हैं, और बामे हमारे जो किसान साथी हैं वो दलहनी फसलें भी करते हैं।
0: हाँ,
1: तो दलहनी फसलन में कौन कौन से रोग लगते हैं, उनसे कैसे बचाव जा सकता है, अगर जाके बारे में हमारे किसान साथी इनको जानकारी हो ना, तो हमारे किसान साथी अच्छे से खरीफ में जो दलहनी फसलें हैं उनसे उत्पादन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल भैया,
1: और जाई से संबंधित आज अपने किसान साथियों को सुनवा रहे हैं, खरीफ दलहनी फसलन में रोग नियंत्रण, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर KPS कुशवाहा, और आपसे बातचीत कर जानकारी करवा रहे हैं राजेंद्र भट्ट। दीपा बहन देखो, जय जानकारी तो हम सुनवावेंगे अपने किसान साथियों के लिए, बासा पहले सुनवा देते हैं अपने किसान साथियों के लिए कुछ संदेश।
0: बिल्कुल भैया,

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: किसान भाइयों नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं पंतनगर विश्वविद्यालय के पादप रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केपीएस कुशवाहा जी। सर आपका स्टूडियो में स्वागत है। और किसान भाइयों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, खरीफ में जो अब दलहनी फसलें लगाई जाएंगी तो इन फसलों का बुआई से पूर्व कैसे जो रोग बचाव के तरीके हैं वो कौन कौन से हैं, ऐसे कई बिंदुओं पे आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर साहब से। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यह डॉक्टर साहब कि आने वाले दिनों में कौन कौन सी जो है दलहनी फसलें लगाई जाएंगी किसानों के द्वारा?
2: जो बारिश का समय आता है उस समय जो फसलें लगाई जाती हैं उनको कहते हैं खरीफ की फसलें। तो आने वाला जो समय हमारा खरीफ का है और खरीफ मौसम के दौरान जो प्रमुख दलहनी फसलें जो लगाई जाती हैं उसमें सबसे प्रमुख फसल है अरहर और साथ ही फिर इसमें उड़द और मूंग, दो और ये दलहनी फसलें हैं जिनका काफी जो है इंडस्ट्री में भी उपयोग, इनसे बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं। उड़द और मूंग से नमकीन है, पापड़ है, बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं इसकी, तो इसकी मांग जो है किसानों में बहुत अच्छी है। तो हमारे किसान भाई अरहर उड़द मूंग जो है खरीफ के दौरान दाल की फसलों के रूप में इसको लगा सकते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब अगर हम बात करते हैं कि इन फसलों में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, थोड़ा इसके बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं।
2: देखिए बीमारियों की अगर बात करें तो जो प्रमुख बीमारियां हैं इन फसलों में, खास तौर से अरहर की अगर हम लोग बात करें तो अरहर में एक बहुत ही भयंकर बीमारी लगती है जिसको उकठा रोग कहा जाता है। उकठा रोग, वेल्ट या कहीं इसको मलानी रोग भी कहा जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, लेकिन आमतौर पर जो हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में इसको उकठा रोग के नाम से जानते हैं
1: जी।
2: और उकठा रोग में होता है, देखिए कि आमतौर पर ऐसा लगता है कि फसल धीरे धीरे पीली पड़ गई और सूख गई। जो शायद हमारे किसान भाई जो फसलें लगा रहे होंगे उन्होंने शायद देखा होगा कि इनकी फसल में ऐसा लगता है कि लगभग ये तो पौधा छोटा है तब से भी, इवन पौधा बड़ा हो गया तब भी ऐसा दिखता है कि पत्ते धीरे कुछ पीले हो गए, या इवन लग रहा है कि ऊपर की जो टहनी है जो उसका अग्रभाग है पौधे का वो लग रहा है कि मुरझाए के झुक के जमीन की तरफ गिर रहा है पौधा। जो लक्षण दिखाई देता है आमतौर पर वो जैसे पौधे में पानी की कमी हो गई, जब पौधे में पानी की कमी हो जाती है, हम लोग नॉर्मल पौधे में अगर पानी नहीं डालना है तो लगता है कि पौधा मुरझा रहा है
1: जी जी जी,
2: तो इसको मुरझाना कहते हैं
1: जी जी।
2: मुरझाने का जो कारण है पौधे में पानी की कमी का होना
1: जी,
2: लेकिन जब खेत में हमारे पानी पर्याप्त मात्रा में है
1: जी
2: और फिर भी अगर पौधा मुरझा रहा है, दर्शाता है कि हमारे फसल में उकठा रोग लगा हुआ है। तो एक तो उकठा रोग हो जाता है
1: जी।
2: वैसे ही अरहर में एक और रोग लगता है जिसको कहा जाता है तना झुलसा रोग
1: जी,
2: जो तने को ही झुलसा देता है
1: जी।
2: तो ऐसे पौधा तो खड़ा है बिल्कुल, उसमें ऐसा दिखता है खासतौर से जहाँ पर हमारे जो तराई इलाका है
1: जी,
2: चाहे उत्तर प्रदेश का हो चाहे उत्तराखंड का हो, जो तराई क्षेत्र है हमारा इसमें इस बीमारी का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है
1: जी।
2: और इसके जो लक्षण जो दिखाई देते हैं आमतौर पर अगर देखें, अगर किसान भाई अगर महसूस किया होगा, जो जमीन से जो पौधा जैसे उग रहा है तो जमीन के पास जो जड़ और तने का भाग जहाँ जुड़ रहा हो, जिसको आमतौर पर कॉलर रीजन कहा जाता है अंग्रेजी में, तना और जड़ का जो संधि वाला भाग है वहाँ पर कुछ भूरे रंग के धब्बे बनने लगते हैं, लगता है कि चारों तरफ से तने को घेर लिया, या कभी कभी एक डेढ़ मीटर की ऊंचाई तक भी पौधे जो बड़े हो गए ये लक्षण ऐसे लगता है कि तने पर दिख रहे हैं और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो गांठ सा बनाने लगता है जड़ के पास जो है, लगता है तना फूलने लगा और गांठ सी बनने लगी
1: जी।
2: और बहुत ही जब एडवांस स्थिति होती है तो लगता है कि तना जो है फटने लगा, जैसे क्रैकिंग होने लगी
1: जी जी,
2: और उसमें से कुछ गूंद जैसा भी निकलने लगता है। तो ये लक्षण अगर इस तरह का दिखाई दे रहा है तो ये माने कि उसमें तना झुलसा लग गया है और इसकी वजह से पौधा बहुत कमजोर हो जाता है। और थोड़ा भी अगर झटका लगा कोई जंगली जानवर उसमें चला गया या हवा तेज चल गई तो जहाँ प्रभावित भाग है वहीं से पौधा टूट के अलग हो जाता है और नुकसान होता है
1: जी।
2: अरहर में एक और बीमारी जो प्रमुख है वो लगती है जिसको कहा जाता है बंझा रोग
1: जी।
2: बंझा रोग कहें या बंधेता रोग कहें, जैसा इसका नाम है बंझा रोग या बंधेता रोग, वो ये दर्शाता है कि पौधे में फूल और फल नहीं बनते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम ही रखा गया बंझा रोग या बंधेता रोग कि इसमें लग रहा है फूल नहीं बन रहा है। अब फूल नहीं बना तो फल कहाँ से बनेगा, फलियां नहीं बनती। अब इसका जो लक्षण दिखता है, जो आम पौधे जो है ऐसा लगेगा कि अच्छा हरा दिख रहा है, इस रोग से प्रभावित जो पौधे होंगे उनका पौधों का रंग कुछ लगेगा कि हल्के हरे रंग का या कुछ पीलापन लिए हुए रंग उसका, और पत्तियों की जो आकार है वो छोटा छोटा हो जाता है और उसमें ढेर सारी शाखाएं निकलने लगती हैं, ऐसा लगता है कि झाड़ी नुमा पौधा दिखने लगा और उसमें फूल और फली नहीं बनती है। तो ये रोग अरहर के जो प्रमुख रोग हैं। जो दूसरी जो फसलें हैं, खासतौर से अगर उड़द मूंग की अगर हम लोग बात करें, तो उड़द और मूंग में जो प्रमुख बीमारी है, एक तो इस क्षेत्र में सबसे जो कहेंगे भयंकर बीमारी लगती है, जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, एक तो है जो विषाणु जनित है रोग, जिसको कहा जाता है पीला मोजाइक रोग। तो इसकी पत्तियां लगता है कि पीली पड़ गई या चितकबरी हो गई, लग रहा कुछ हरी है, कुछ पत्तियों पर ऐसा लगेगा कि धब्बे से बन रहे हैं, कुछ पीलापन लिया हुआ है, कुछ हरा है। जब बहुत रोग ज्यादा प्रकोप हो जाता है इसका, तो लगता है कि पूरा पौधा पीले रंग का दिखाई देने लगा
1: जी।
2: पौधा जिंदा है लेकिन पूरा लग रहा है कि पीला पीला दिखने लगा, और जिसकी वजह से फसल पूरी खराब है, तो उसमें फिर फली नहीं बनती है या कुछ फलियां बनती हैं। ये विषाणु जनित रोग है जिसको पीला मोजाइक रोग कहा जाता है। एक और इसमें जो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बीमारी आती है, जो तराई क्षेत्र में अपने हमारे जो उत्तराखंड या यूपी के जो किसान भाई हमारे हैं, जिसको कहा जाता है वेब झुलसा रोग, जालिका झुलसा रोग भी कह सकते हैं, क्योंकि जाल जो ऐसा लगता है पत्ती झुलसा जैसा नाम ही है, ऐसा लग रहा है पत्ती जैसे आग में झुलस गई हो। जालिका इसलिए कहते हैं, जैसे मकड़ी के जाले होते हैं ना
1: जी,
2: उस तरह का उस पर लक्षण दिखाई देता है
1: जी।
2: अगर देखें फील्ड में खेत में जाएंगे, लग रहा है पत्तियां सूख रही है, और खास तौर से जो निचली पत्तियां होती हैं उन पर इसका ज्यादा प्रकोप दिखाई देता है
1: जी।
2: धीरे धीरे ऊपर को आएगा, लेकिन सबसे पहले जमीन के पास उसका प्रकोप दिखाई देगा, क्योंकि इसका रोग कारक जमीन में रहता है। और अगर खास तौर से जब नमी ज्यादा होती है वातावरण में, तो जब खेत में जाएंगे सुबह के इस दौरान, तो ऐसा लगेगा कि जो प्रभावित पौधे हैं उसके ऊपर मकड़ी के जाले की तरह कुछ रेशे जैसा कुछ दिख रहा है, उसकी वजह से इसका नाम रखा गया वेब झुलसा। और वो उस रोग कारक जो फफूंदी है, उसकी वजह से वो फफूंदी का कवक जाल है। तो ये भी जो जहां नमी ज्यादा होगी उस क्षेत्र में इस रोग का प्रकोप ज्यादा होता है, वेब ब्लाइट या वेब झुलसा का। और ये भी जो है मौसम अगर फेवरेबल रहा रोग के लिए, तो पूरी की पूरी फसल जो बर्बाद कर देता है। और एक और बीमारी फफूंदी से होती है, जिसको कहा जाता है सरकोस्पोरा झुलसा रोग, वो भी झुलसे है या सरकोस्पोरा पर्ण धब्बा रोग कहा जा सकता है, ये भी फफूंदी से ही होता है। उसमें शुरू में लगेगा कि आपको छोटे छोटे से धब्बे बन रहे हैं पत्ती पर, और उसके किनारे ऐसा लगेगा धीरे धीरे वो बढ़ते हैं, और किनारे लग रहा है कि जो धब्बे भूरे भूरे रंग के बन रहे हैं, किनारे की तरफ लग रहा है कुछ कत्थई रंग के बॉर्डर लाइन बनती है, और बीच वाला भाग लगता है कि कुछ हल्के भूरे रंग का, या कहें कि जैसे भूसे का रंग होता है, इस तरह का वो दिखाई देगा। और धब्बे आपस में फिर धीरे धीरे मिल जाते हैं और बड़े धब्बे बना लेते हैं, और फिर वो धीरे धीरे ऐसे करके जैसे मौसम अगर अनुकूल मिला तो पूरे के पूरे पौधे की पत्ती पर ऐसे धब्बे बन जाएंगे और पत्ती को झुलसा देते हैं। तो इसको कहा जाता है एक सरकोस्पोरा, जो एक फफूंदी का नाम है, और इस फफूंदी की वजह से बीमारी होती है, इस वजह से इसको सरकोस्पोरा पर्ण धब्बा रोग भी कहा जाता है। इस उड़द मूंग में एक और बीमारी लगती है, जिसको कहा जाता है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज बीमारी जो है, ऐसा लगेगा आपको शुरू में जो पौधे अगर लगे हैं, पौधे की पत्ती को थोड़ा ऊपरी हिस्से से आपको लगे कुछ धब्बे बन रहे हैं, और पत्ती को अगर पलट के देखें तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कत्थई रंग के बड़े बड़े से धब्बे दिख रहे हैं, कुछ छोटे भी होंगे कुछ बड़े भी होंगे। जैसे आमतौर पर पान खाने वाले जो लोग हैं, कि पान खाने के बाद वो पीक कर देते हैं, तो जैसा धब्बा दिखता है वैसे ही बिल्कुल आपको पत्ती के पीछे दिखाई देगा। तो इस तरह का अगर धब्बा पत्ती के पीछे दिख रहा है, तो समझिए कि एंथ्रेक्नोज बीमारी लगी हुई है, जो फफूंदी जनित है। तो कुछ एक बैक्टीरिया जनित भी बीमारी आती है, जो कहा जाएगी जीवाणु जनित बीमारी, या जीवाणु जनित जो है पर्ण धब्बा रोग। इसमें ऐसा लगता है कि इस बीमारी में कि जो धब्बे बनते हैं पत्ती के ऊपर, शुरू में तो लगेगा कि बहुत हल्के धब्बे से बन रहे हैं, और वो धब्बे अगर आप देखेंगे तो जो फफूंदी वाला जो धब्बा है वो तो आपको बिल्कुल लगेगा पत्ती पर प्लेन दिखाई दे रहा है, वो पत्ती से उभरा नहीं होता है फफूंदी वाला। जबकि जो इस जीवाणु से जो धब्बे बनते हैं, उसमें आपको लगेगा कि पत्ती के ऊपर जैसे फफोले बन जाते हैं ना, ऐसे कुछ फफोले से बन रहे हैं छोटे छोटे, और वो फफोले धीरे धीरे शुरू में तो हल्के रंग के होते हैं, बाद में कुछ गहरे कत्थई रंग के या गहरे भूरे रंग के वो बन जाते हैं पत्ती के ऊपर
1: जी।
2: तो इस तरह से कई सारी बीमारियां हैं जो इन फसलों में लगती हैं और फसल को काफी नुकसान पहुंचाती हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें किस तरह से जो बीमारियां हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती हैं,
2: देखिए किस तरह से अगर बीमारियों की अगर बात करेंगे, तो बीमारियों के नुकसान करने का, जैसे अभी हमने आपको लक्षण बताया कि पौधा में पत्ता पीला हो गया या पत्ती झुलस गई है ना, या तना ही उसका झुलस गया या उकट गया, जो भी ये बीमारी है, इन बीमारियों जो भी इसके रोग कारक हैं, ये सब चीजें जब होती हैं, तो आमतौर पर हमारे जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी में जो पौधे हरे हैं वो अपना खाना बनाते हैं, उससे ही वो आगे बढ़ते हैं। जबकि हमारे पौधे अगर सूख गए या पत्ती पीली पड़ गई या पत्ती झुलस गई तो अपना खाना बना ही नहीं पाते हैं, और खाना नहीं बना पाते हैं इस वजह से उसमें अच्छी बढ़वार नहीं होगी, या पौधे जो मर गए वो कम हो गए तो आपकी पौधों की संख्या कम हो गई, जिसकी वजह से आपकी उपज जो है प्रभावित होती है। और ये अगर देखें आमतौर पर इन बीमारियों से लगभग 10-50% तक नुकसान कर देती है उपज में आपके। और अगर कभी वातावरण अनुकूल हो गया बीमारियों के तो, और बीमारी का प्रकोप ज्यादा है जैसे महामारी के रूप में अगर बीमारी फैल गई है तो कभी कभी पूरा आपका 100% नुकसान कर देती है, पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी। खासतौर से जैसे स्ट्रेल्टी मोजैक लग गया या उकठा लग गया, अगर ये बीमारी अगर पूरे फसल में आ गई तो आप 100% नुकसान कर सकती है
1: जी। अगला सवाल आपसे हमारा डॉक्टर साहब ये है कि अगर हमारे किसान भाई इन फसलों की लगाने की तैयारी कर रहे हैं आने वाले दिनों में, तो फसल लगाने से पूर्व जो हमारे किसान भाई हैं किन किन तरीकों से इन बीमारियों का जो है नियंत्रण कर सकते हैं बुआई से पूर्व?
2: ये करना है कि हम अपने पौधे को इन बीमारियों से बचा सकें, और दूसरे ध्यान ये भी रखना है कि उस बचाने में जो रसायन है उन रसायनों का उपयोग कम से कम हो, क्योंकि आजकल जितने रसायन का इस्तेमाल हो रहा है उपज तो मिल रही है लेकिन कहीं ना कहीं उसका रेजिडुअल इफेक्ट रहता है और कहीं ना कहीं हमारे शरीर को ही नुकसान करती है। तो एक जगह कहेगी कोशिश किया जाए कि ऑर्गेनिक उपज ली जाए, ऑर्गेनिक नियंत्रण किया जाए। तो सबसे पहले जैसा आपने अभी बात किया कि बुआई से पहले कुछ ऐसा किया जाए कि इनका प्रकोप कम हो बीमारियों का, तो बुआई से पहले कुछ जो नियंत्रण के उपाय अपनाने की बात है इन फसलों में, तो एक तो आपको काम ये करना चाहिए जहाँ फसल आपको लगाना है उस खेत की सफाई अच्छी हो, उसमें खरपतवार है या दूसरे फसलों के जो अवशेष तो उनको हटा दिया जाए, सफाई उसकी कर दी जाए। दूसरी जो बात है किसानों को चाहिए कि उस खेत की अच्छी गहरी जुताई कर दें। गहरी जुताई कर देने से कुछ जो रोग कारक जमीन में हैं वो कुछ खत्म हो जाएंगे और हमारे रोग फसल को कम नुकसान करेंगे। तो एक तो गर्मी में गहरी जुताई किया जाए, दूसरी जो एक सबसे आसान सी बात कही जाती है जो फसल चक्र अपनाना, अगर किसान भाई फसल चक्र अपनाते हैं तो भी बीमारी के प्रकोप से बच सकते हैं
1: जी।
2: हम एक ही फसल अगर बार बार उस खेत में उगा रहे हैं तो रोग उसमें पनपता रहता है उसी खेत में, और हम दूसरी फसल लगाए तो उसमें भी आ जाता है। तो एक ही खेत में एक ही फसल को हर साल मत लगाइए, तो फसल चक्र को अपनाना जरूरी है। जो भूमि जनित जो रोग कारक हैं, खासतौर से उकठा रोग है, चाहे आपका वेब ब्लाइट है, जो भी इस तरह के बीमारियां हैं, चाहे तना झुलसा रोग है, इस सब के रोग कारक जो है मिट्टी में पनपते रहते हैं। जिस खेत में अगर पिछले साल आपने अरहर या उड़द मूंग लगाया हुआ था तो आप कोशिश करो कि उसमें दूसरी फसल उगाइए, और दूसरे खेत में आप जहाँ कोई दूसरी फसल आप लगाए थे, वो चाहे आप वो धान लगाए हो या कुछ दूसरी चीज लगी हो, वहाँ पर आप फिर से इसको लगाएं। तो खेत का चुनाव करना को महत्वपूर्ण है रोग से बचने के
1: बचने।
2: अगला जो बचाव का जो उपाय है, देखिए बीज उपचार एक है
1: जी।
2: बीज उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर उसको अपनाते हैं तो कई सारी बीमारियों से आपको निजात मिल जाता है
1: जी।
2: तो बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। बीज उपचार करने के लिए इन फसलों का देखिए कई सारी चीजें हैं। एक तो जो जैव नियंत्रक हैं जो हमारे जो पंतनगर से भी कुछ विकसित किए गए हैं हमारे,
1: कौन कौन से जैव नियंत्रक उनके नाम थोड़ा बता दो।
2: जैव नियंत्रक जैसे आपका है जैसे ट्राइकोडर्मा पंतनगर का ही बनाया हुआ पंत बायो एजेंट
1: एक
2: जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला जिसको बायो कंट्रोल लैब कहते हैं, आप वहाँ से आप संपर्क करके इस बायो एजेंट को आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रयोग करने की बात है तो करीब 2.5 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद ली जाए, और उसमें करीब 2.5 किलोग्राम वो पंत बायो एजेंट को डालना है
1: जी।
2: 2.5 क्विंटल गोबर की खाद और 2.5 किलो उसमें पंत बायो एजेंट, उस गोबर की खाद में इस बायो एजेंट को मिलान करके आपको प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना है
1: ठीक है
2: बुआई से पहले
1: जी।
2: तो बायो एजेंट वहाँ चला जाएगा तो आपकी फसल को इन रोगों से बचाएगा
1: जी।
2: दूसरा है कि आपको बीज उपचार करने के लिए कुछ रसायन से भी बीज उपचार किया जाता है, खासतौर से जो फफूंदी नाशक जो रसायन है कार्बेंडाजिम, जैसे उकठा रोग लग रहा है तो उड़द मूंग में इस जो इस तरह की जो बीमारी आ रही है उससे बचने के लिए कार्बेंडाजिम नाम की दवा है फफूंदी नाशक, उस दवा का ये कहें कि करीब 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम की दर से लें, उस दवा से उपचारित कर दें बीज को
1: जी।
2: बुआई के एक दिन पहले जरूर उपचारित कर लें, उपचारित बीज को ही खेत में बोएं
1: जी।
2: तो अब जो रोग कारक जमीन में है और आपकी दवा मिली हुई बीज आपने डाला है तो उस रोग कारक का प्रकोप इस बीज के ऊपर कम पड़ेगा और आपका बीज जो है सुरक्षित रहेगा
1: जी,
2: और आपकी फसल उस रोग से बच जाएगी
1: जी। तो किसान भाइयों, आज हमारे साथ स्टूडियो में थे डॉक्टर KPS कुशवाहा जी, पादप रोग विशेषज्ञ हैं आप। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
3: दीपा बहन, देखो अभी हमारे किसान साथी ने जो भेंटवार्ता सुनी, खरीफ दलहनी फसलों में रोग नियंत्रण, इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे डॉक्टर KPS कुशवाहा और आपसे बातचीत कर जानकारी करा रहे राजेंद्र भट्ट। और अब अपने किसान साथी के लिए सुनवा दें एक लोकगीत, लखनऊआ दिखाए लइयो, जिसको अपनी आवाज़ दिए उषा पंतना।

0: भैया बहनों, अभी आपने सुनो जो लोकगीत, और अब समय हीरो है क्षेत्र संकलित कार्यक्रम को। तो हमारे जसविंदर भैया ने काका बात करी है क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के अंतर्गत, आप वो सुन लेते हैं।
1: परिचय, देवीदास नाम है सर।
2: आपका गांव कौन सा है?
1: हर गौंदिया।
2: अच्छा, ये कौन से ब्लॉक में पड़ता है?
1: मझगवा।
2: आप बहुत समय से खेती बाड़ी कर रहे हैं।
1: हाँ,
2: कितनी उम्र है आपकी?
1: उम्र हो 45 साल।
2: खेती बाड़ी कब से कर रहे हैं?
1: अब तो 10-12 साल है, गैर पढ़े लिखे सर।
2: अच्छा।
1: हाँ, खेती का काम है। और
2: अच्छा, 10-12 साल से ही आपने खेती का काम हाँ। स्टार्ट कर दिया था। पढ़ाई लिखाई पढ़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी आप खेती की तरफ आप अग्रसर हुए। और आपके क्षेत्र में ज्यादातर फसलें कौन कौन सी करते हैं?
1: गेहूँ, धान है सर, और मिर्ची खेती ज्यादा है सर।
2: अच्छा, अभी मिर्च के बाद इसमें कौन सी फसल लगाएंगे?
1: मिर्च के बाद धान गड़िया सर।
2: अच्छा, मिर्च ये कौन से समय में लगाई थी आपने?
1: मिर्च के अगर सर जो धान की बेड़ डालते हैं तभी बेड़ डालते हैं तंबू लगाए सर।
2: अच्छा।
1: हाँ,
2: ये तंबू लगा के क्यों लगाते हैं?
1: बरसात से खराब हो जाएगी सर।
2: अच्छा, हम देख रहे हैं कई तरह की मिर्च लगी हुई है आपकी, एक मोटी वाली
1: हाँ,
2: मिर्च लग रही
1: है सर।
2: अच्छा, ये किस रेट निकल जाती है आपकी?
1: जब बाटे तो 50-60 रुपए शुरू बिक जाती है भादों में और कुंवर में जैसे।
2: अच्छा, और भी बात करेंगे हम इसके बारे में, लेकिन सबसे पहले जैसे आपने बात करी कि समय धानों की पौध पड़ती है
1: हाँ।
2: उसी समय आप इसकी पौध डाल देते
1: हाँ,
2: हैं।
1: पौध डालते
2: तो मिर्च की फसल बहुत अच्छी आपके यहाँ पर होती है, इससे कैसे उत्पादन मिल जाता है?
1: बढ़िया आए सर, कहा तो रेट अच्छे मिल गए, बिक गई 50-60 रुपए तक।
2: अच्छा,
1: पतरी बारी।
2: और एक बीघे में लगभग लागत की बात करें तो कितनी आ जाती है?
1: लागत जैसे देसी घूर डालते हो सर तो कागज लागत कम आती है न। डीएपी डालते हैं सर।
2: तो देसी घूरा का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं आप?
1: देसी घूर सब में डालते हैं, देसी घूर न डालो सर, मिर्च न उठाई, पीर आतराई काली न भराई।
2: हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पर कुछ रेताली जमीन
1: है। रेताली जमीन है,
2: हाँ। क्योंकि जहाँ मटियार जमीन होती है वहाँ कम खाद का भी प्रयोग करके भी
1: हाँ।
2: काम चल जाता है।
1: तो वहाँ सर मटियार जमीन में पानी ज्यादा भर हो जाए सर तो मिर्च सूख जाए।
2: अच्छा, तो पानी के साधन कैसे हैं आपके यहाँ पर?
1: पानी सही है सर।
2: क्या व्यवस्था है?
1: ट्यूबवेल है तो सीख रही सर।
2: अच्छा, अपना खुद का है?
1: हाँ, ट्यूबवेल।
2: अच्छा, ट्यूबवेल से एक घंटे में कितने एरिया की भराई कर देते हैं?
1: 2-2.5 एकड़ भर जाता है।
2: अच्छा, और उसका कितना खर्चा आ जाता है?
1: अबे तो सर बिलोलो न जा रहो, सरकार ने माफ कर दिया है।
2: अच्छा
1: हाँ।
2: तो बड़ी अच्छी बात है आपको। हाँ। जो ट्यूबवेल लगाने में जो खर्चा आया होगा
1: हाँ।
2: वही आया होगा
1: हाँ।
2: बाकी आपका बिल जाएगा।
1: 2 साल से बिल न जा रहा सर। हाँ,
2: कितने साल से?
1: 2 साल से बिल न जा रहा
2: हूँ। बिल्कुल भी नहीं आ रहा?
1: पहले 17-18 रुपए महीना जाती सर।
2: अच्छा, अगर 18 रुपए महीने आपके बिल भी गए तो एक महीने में आप लगभग कितने एरिया की भराई कर लेते थे?
1: अपनी सब कतरा तो साहब भराई कर देते, 120 रुपए घंटा ले रहे हैं सर।
2: 120 रुपए घंटे?
1: हाँ।
2: घंटे में चाहे
1: पाइप सब अपनों देंगे सब चीज अपनी।
2: अच्छा, घंटे हाँ। में कितने बीघे की भराई हो जाती है?
1: 2-2.5 बीघा आराम से। धान की खेती भरिया 2 बीघा।
2: अच्छा।
1: खेती भर दो। हाँ, गेहूँ ज्यादा भरिया 3-4 बीघा भरिया सर
2: एक घंटे में।
1: हाँ।
2: तो बड़ा अच्छा पानी है आपके यहाँ पर।
1: हाँ। गंगा करीब है ना।
2: अच्छा, और इसके अलावा और कोई साधन हो?
1: इंजन चलते पहले सर।
2: अच्छा, आप गंगा के किनारे हैं तो यहाँ पर जो कद्दू वर्गीय वाली फसलें हैं जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, या फिर कद्दू है, लौकी तुरई है, ये नहीं करते हैं आप?
1: सर पहले बहुत करते हैं, 10-11 में सैलाब आओ सर, सुअर और सही आ गई घर।
2: अच्छा
1: हाँ, सुअर सही ना रख रही, ना मक्का वगैरह हमारी ये सब चीज हुई आई।
2: अच्छा, तो अभी
1: पानी साधन सही है।
2: ये जंगली सुअर हाँ। और जंगली सही जो है हाँ। वो आपके यहाँ ज्यादा है?
1: ज्यादा।
2: तो उससे अपनी फसलों की रखवाली कैसे करते हैं?
1: का करो सर, कागज खानवारी फसल रखते ना है।
2: अच्छा, इसीलिए मिर्च की फसल करते हैं?
1: हाँ, मिर्च की फसल।
2: लेकिन मिर्च की फसल
1: किल्ली किल्ली खा जाती है, ताजी मिर्च महीना खाड़ी तो किल्ली खाती रहती है।
2: अच्छा, और अगर मिर्च आ जाए तो मिर्च नहीं खाती?
1: फिर ना, मिर्च ना खाती है।
2: अच्छा, मिर्च नहीं खाती।
1: हाँ, मिर्च को लीलो वगैरह बाजार वगैरह कोई चीज ना खाती।
2: अच्छा, नीलगाय है आपके यहाँ?
1: हाँ, नीलगाय है।
2: तो उसके लिए कैसे आप प्रबंध करते हैं उसका?
1: नीलगा नुकसान नहीं करते, जैसे नीलगा जा रहे हो तो एक मुहन मारो एक मुहन मारो, बाजार ज्यादा नुकसान करते हैं।
2: अच्छा,
1: नीलगा नुकसान नहीं करते
2: जो छोटा आवारा पशु है। अच्छा, इसका कारण क्या है कि छोटा पशु बहुत है हमारे?
1: पहले सर आप बड़े बूढ़े जमाने में क्या कहते हैं, डल्ला बुल्लब चलते, लड़िया रब्बा चलते, तो बद्दा चल रहे थे, बिक्री ना आए तो क्या कहते आदमी पालना रहो।
2: चलो बिक्री तो नहीं है, लेकिन हमारे खेती में तो काम वैसे ही है आज भी।
1: खेती में कोई ना, सब बाबू जी गए।
2: अच्छा
1: हाँ,
2: ऐसा क्यों?
1: हाँ, ले सबने कौन चला पड़े हैं।
2: अच्छा, जानवरों से जुताई कम होगी।
1: हाँ,
2: समय ज्यादा लगेगा। हाँ, आदमी के पास समय की अभाव है।
1: पहले लड़िया चोरी कवार ले आए काट गए लड़िया से, अब तो मूड से ले आओ मोटरसाइकिल। अच्छा, पे मोटरसाइकिल से ला दिलाते।
2: आप जानवर पालते हैं?
1: हाँ, जानवर है।
2: कितने जानवर हैं?
1: 2 भैंसियाँ 3 पड़ियाँ।
2: अच्छा, तो उनके लिए चारे वारे की व्यवस्था करते हैं?
1: हाँ,
2: कहते हैं कि हमारे जो पशु हैं उनके लिए अगर
1: चरी वैदी एक डेढ़ बीघा सर
2: वो दी। इससे पहले आपने हरे चारे के लिए क्या?
1: बरसी नहीं सर, 1 बीघा।
2: अच्छा, वो भी खत्म कर दी?
1: खत्म कर दी।
2: अच्छा, तो ये चरी आपकी कब तक तैयार हो जाएगी?
1: चरी 15-20 दिन में तैयार हो जाएगी।
2: अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपके पास पशु हैं लेकिन खेत में काम करने वाले पशु नहीं पालते हैं
1: ना, खेत में करने वाले,
2: ऐसा क्या कारण है कि लोग अब पशुपालन से दूर हट रहे हैं?
1: क्या करो जाए सर फिर?
2: नहीं, गांव में लोग पशुपालन
1: पहले बद्दा उद्दा जैसे बिकत रहे थे, अब कहा गए थे बुढ़ा जाएंगे फिर भी कामयाब ना रहते, कहाँ छोड़िए देव आदमी।
2: अच्छा, देखो ये सब हमारी ही कमी है, हम लोगों की कमी है। कि पहले पशुओं से हम जब उत्पादन ले रहे हैं तो अच्छा खासा हम उनको पालते भी हैं, उनका देखरेख भी करते हैं, और जब उनसे उत्पादन नहीं मिलता है तो हम उनको छोड़ देते हैं।
1: वैसे घर के गाय तो जरूर पालना चाहिए।
2: तो आप गाय नहीं पालते हो?
1: ना, गाय ना है सर।
2: अच्छा, गाय पालना चाहिए वैसे तो।
1: जगह का मैं अब बनावेंगे सर तो फिर गाय।
2: तो गाँव में रह रहे हो तो गाँव में तो जगह बहुत सारी होती है लोगों के पास में, काफी व्यवस्थाएं भी होती है गाँव में, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, गाँव हम देख रहे हैं आपका बड़ा साफ स्वच्छ सुंदर है।
1: साफ सुंदर सर।
2: अच्छा, क्या कारण है कि इतना विकास गांव में हुआ है?
1: जे तो सर कागज मेहनतों के ऊपर है सर। अब जो कागज है माल तुम्हारे आपके सही ना है हमारे, तो खाना कहाँ से मिलेगा खाने को?
2: नहीं, बिल्कुल
1: मेहनत करोगे तो ऊपर वाले को ध्यान है वो कहीं से देगा।
2: गांव के जो प्रधान जी हैं वो भी ध्यान रखते हैं। अच्छा, आपके गाँव में ही है प्रधान जी या कोई और?
1: मिर्जापुर के।
2: अच्छा, दूसरे गाँव में लगता है?
1: मिर्जापुर के।
2: अच्छा, तो उन्होंने काम अच्छा कराया है। हम देख रहे हैं की आपके यहाँ जो खेतों पे चलने वाली सड़कें हैं वो भी बड़ा अच्छी है, इस पे भी काम कराया गया।
1: नरेगा वाले से मट्टी भरी जाती
2: है। अच्छा अच्छा, कभी आपने देखा है कि नरेगा में कुछ काम वाम करने को मिला है आपको? अच्छा, गांव के और लोग करते हैं?
1: नरेगा वाले करते हैं,
2: काम मिल
1: जाता है, बनी नहीं है उनको।
2: अच्छा, तो उसके लिए कुछ और कोई व्यवस्था होती हो कुछ ऐसी कि आपको कि जब खाली समय है अपने पास काम नहीं है तो उस समय क्या करते हैं?
1: फिर तो उठा लिया है।
2: अच्छा,
1: खेती में काम नहीं तो
2: खेती में भी आपके पास में जब आप बता रहे हो कि मिर्च वाली जो फसलें आपने लगा रखी है, जैसे अभी ये वाला खेत जो आपने लगाया, कितने बीघे में मिर्च है आपकी?
1: मिर्च 5-6 बीघा में।
2: अच्छा, 6 बीघा खेत में मिर्च जो है अगर देखा जाए अंत तक तो कितना पैसा इस बार मिल जाएगा?
1: अब ये चौथा का टूटा है सर।
2: अच्छा, लगभग कितना पैसा मिल जाएगा?
1: अब तो सर मध्य है, अब जब पकाए देंगे सर।
2: अच्छा,
1: तो 150 रुपया से 200 रुपए तक किलो बिक रही
2: है। पका के जब
1: बेचते हैं?
2: अच्छा, तो यहीं गांव में ही बिक जाती है या फिर कहीं दूसरे?
1: दूसरा ले जाते हैं सर।
2: अच्छा, कहाँ ले जाते हैं?
1: दूसरा।
2: यहाँ से दूसरा कितनी दूर?
1: 8 किलोमीटर है।
2: अच्छा, आने जाने के साधन क्या है?
1: ट्रैक्टर से ले जाते हैं सर।
2: अच्छा, अपने पास ट्रैक्टर है तो ज्यादा समस्या नहीं है कोई भी?
1: हाँ।
2: वहाँ पर आसानी से बिक जाती है?
1: हाँ, आसानी।
2: अच्छा, और भी अगर कुछ आपको खरीदना हो या फिर बेचना हो तो आपके नजदीकी जो बाजार है वो दूचरा है?
1: हाँ, दूचरा है, बड़ी मंडी है।
2: बड़ी अच्छी बात है, दूचरा का नाम भी सुना है, हमारे किसान साथी भी आपको सुन रहे होंगे तो वो समझते हैं कि अगर कुछ भी खरीदना होता है, चाहे बात जानवरों की करें या अनाज की करें, तो दूचरा जो बाजार है वहाँ बताते हैं कि हर चीज उपलब्ध हो जाती है और हर समय हो जाती है। अच्छा, जो बात करी आपने मिर्च की फसल की, अब ये मिर्च की फसल लगभग आपकी बता रहे हैं कि 1 या 2 बार और तुड़ाई करेंगे, उसके बाद इसे हटा देंगे। इसके बाद इसमें कौन सी फसल लेंगे?
1: धान लगाएंगे सर।
2: तो इसके लिए आप अभी से तैयारी?
1: हाँ, जोत लग रहे हैं।
2: अच्छा, बड़ी अच्छी बात है कि आप सभी फसलें करते हैं और बड़ी अच्छी जानकारी आज हमारे किसान साथियों को आपने दी। आपने अपने खेत में ये कटहल का पेड़ भी लगा रखा है, हम देख रहे हैं कि कटहल भी बहुत सारे लगे हुए हैं। मतलब आपने स्पेशल लगाया था या अपने आप
1: के चक्कर में लगाया था सर? खाना खर्चा साग सब्जी चल रहा है।
2: अच्छा, इसमें तो बहुत सारे फल लगे हुए हैं।
1: फल तो काफी।
2: हाँ, ये कब तैयार हो जाएंगे आपके?
1: अब जो 2-1.5 महीना भाई जा रहे हैं सर।
2: अच्छा, बहुत सारे फल लगे हैं?
1: 50-60 फल है सर अब तैयार।
2: अच्छा,
1: और लग रहे हैं नए?
2: अच्छा, नए भी आते रहते हैं?
1: नए आते रहते
2: हैं, साल में तो एक ही बार आता है।
1: हाँ, एक बार है।
2: आपसे आज बातचीत हुई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और भैया अब सुन, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम के बाद अब समय हीरो कृषि संकेत को।
2: और दीपा बहन, सुनिए कि आप कल समूह की बैठक में कुटीर उद्योग की आपने बात छेड़ी, क्या सोच रही हूँ?
0: हाँ भैया, सोच रही थी कि गांव की औरतन को घर बैठे कुछ कमाई कर लें तो कितनो अच्छो होए। खेत को काम तो सीजन में ही होते भैया, बाकी दिन तो हम सब खाली बैठे रहते।
2: बिल्कुल सही बात, खाली दिमाग शैतान को घर, और जब खाली जेब हुए ना तो और भी भारी पड़ती है। तुम लोगों के पास हुनर तो पहले ही सही है, बस उसे रोजगार बनाने को काम है। काका आता है समूह की बहन को।
0: भैया अचार पापड़ तो हर घर में बनता ही है, सिलाई कढ़ाई बांस की टोकरी दोना पत्तल गोबर के उपले और दिए बनान को काम होते भैया। जैसे राधा तो मिट्टी के कुल्लड़ बहुत सुंदर बनाती हैं, पर बेचे कहाँ भैया अपने? हम जय सोचते हैं कि हम काम तो कर लेते हैं, लेकिन अपने काम को करें कैसे और कहाँ करें?
2: देखो दीपा बहन, जय तो कुटीर उद्योग को फायदा है, बड़ों कारखाना ना चाहिए जाके ले, 4-5 औरतें मिलकर घर से ही काम शुरू कर सकती हैं और सरकार भी मदद करती है। PMEGP योजना में 35% तक सब्सिडी मिलती है महिलाओं को। और एक और है NRLM के तहत, तुम्हारा जो समूह है ना वहाँ में 10-15 हज़ार को रिवॉल्विंग फंड भी मिलता है।
0: हाँ भैया, सब्सिडी तो ठीक ठाक मिलती है, पर कागज पत्र को तो झंझट बहुत है, बैंक वाले लोन देन क्यों आन कानियों तो बहुत करते हैं।
3: देखो दीपा बहन, अब पहले जो सुना है उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन 5 मिनट में हो जाता है, आधार कार्ड और बैंक खाता तो चाहिए बस, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। पहले तो जो तय करो कि शुरू का करने है, जो चीज गांव में आसानी से मिल जाए उसे ही को बनाओ।
0: हाँ भैया, मुझे लगता है ना मसालों उद्योग ठीक रहा है, हल्दी मिर्च धनियो सब जय उगाता, शहर में पैकेट वाले मसालों महंगो मिलते हैं और मिलावटी होते हैं, हम शुद्ध पीस कर बेचेंगे तो लाभों मिले अच्छो।
3: बिल्कुल दीपा बहन, बढ़िया सोचो आपने, 20-25 हजार में छोटी चक्कियों आ जाई और पैकिंग के लिए तो गांव संगठन से पैसा ले लो, नाम रखो किसी महिला समूह के नाम पे।
0: हाँ भैया,
3: और पहले गांव में फिर पास के कस्बे की दुकानों से बात कर लियो, अब तो ONCD और गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस पे भी बेच सकते हो, मोबाइल से फोटो खींच कर डाल दो और आपके पास में ऑर्डर आना शुरू ही जाएंगे।
0: हाँ भैया, मोबाइल चलाना तो आता है पर ऑनलाइन बेचने पर थोड़ा डर लगता है, कहीं धोखो ना हो जाए हमारे साथ।
3: देखो डरने की कोई बात ना है, ब्लॉक में हर महीने डिजिटल ट्रेनिंग होती है, बैंक सखी दीदी भी सिखाई देंगी, शुरुआत छोटे ऑर्डर से करो और हाँ क्वालिटी से समझौता मत करियो, एक बार नाम बन गो ना तो काम खुद चलाए। मेरठ के पास एक समूह ने सिर्फ अचार से साल को 8 लाख रुपए कमा लो।
0: अच्छा भैया, 8 लाख, हे भगवान, मतलब मेहनत करें तो घर बैठे लखपतियों बन सकते हैं। तो भैया अगली बैठक में आ जाओ, सब बहनन को समझा दियो, हम मसाले के साथ साथ पापड़ भी बना लेंगे, दो चीज आई तो और ज्यादा हमें
3: रिस्क कम ही जाते हैं।
0: हाँ, कम ही जाए।
3: देखो दीपा बहन, पक्के आवेंगे और तुम आज ही 10 बहनों की लिस्ट बना लियो जो काम करना चाहती हैं, मैं फार्म वगैरह तो लिए आवाऊंगा। और याद रखियो दीपा बहन, कुटीर उद्योग सिर्फ पैसा को मामलो ना है।
0: अच्छा,
3: इससे औरतन में आत्मविश्वास भी आता है, घर में इज्जत बढ़ती है और बेटी को भी स्कूल भेजने को हौसला मिलता है।
0: सही कह रहे हो भैया, जब अपने हाथ में 4 पैसा होता है ना तो किसी के आगे हाथों न फैलाना पड़ता है। तो आज ही राधा और सुनीता से बात करती हूँ, कल लिस्ट तैयार पक्का कर लूंगी भैया।
3: शाबाश, शुरू के 3 महीना मेहनत वाले होंगे। देखो दीपा बहन, हाँ एक बार अगर तो गाड़ी पटरी पाएगी ना तो फिर देखियो अगली दिवाली पर पूरे गाँव में तुम्हारे बनाए दिए जलेंगे और मसाले भी सब्जी बनेंगी। हाँ दीपा बहन, जो तो ही कुछ बात। और देखो अब हम अपने किसान साथियों को बता दें कि कल के कार्यक्रम में का कल चर्चा को विषय होएगा UP रोजगार संगम योजना, सफल कृषक से भेंट और लोकगीत सुनवाएंगे, कृषि संकेत के अंतर्गत करवाएंगे धान की पौध की तैयारी कैसे करें इस पर बात, क्षेत्र संकेत कार्यक्रम हुआ है और मौसम को पूर्वानुमान।
0: हाँ
3: जो तो हो हमारो आज को कार्यक्रम हमारे किसान साथियों को कैसो लगो हमें लिखना ना भूलें। हमारो पत्र लिखने के लिए पतो है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर पिन 244901। और अब कार्यक्रम के अंत में अपने भैया जसमिंदर
0: और अपनी बहन दीपा को दे अनुमति।
3: राम राम, राम।

किसान भाई अभी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को ही कुछ ही पलों में समाचार होंगे। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून और हम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अधिवक्ता हैं सौरभ सक्सेना, प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम कानून और हम में अवधेश का नमस्कार। कार्यक्रम कानून और हम के हर अंक में हम किसी न किसी लीगल विषय पर एक अधिवक्ता की मौजूदगी में चर्चा करते हैं और उसी प्रकार आज हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिस पर कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियोज में हाजिर हैं अधिवक्ता सौरभ सक्सेना जी। सर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि हमारा आज का विषय है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सर पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस अधिनियम की ज़रूरत क्यों पड़ी और पर्यावरण की क्या परिभाषा हो सकती है।
1: पर्यावरण का मतलब है जीवन। पर्यावरण में जल, वन और वायु, ये सारी चीज़ें समाहित हैं, जिसमें जल, वायु और वन, ये सारी चीज़ें मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं। और यदि पर्यावरण स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा, तभी जीवन भी स्वच्छ और स्वस्थ हो सकता है। इसी वजह से हमारी भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जो 23 मई 1986 को पारित किया गया और 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी और पॉपुलेशन के साथ ही जल, वन एवं वायु का दोहन होता है और ये सारी बातें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये कानून को पारित किए जाने की आवश्यकता महसूस हुई।
0: इस अधिनियम के लागू होने से पहले पर्यावरण से संबंधित कानूनों की क्या स्थिति थी?
1: देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू होने से पूर्व में सर्वप्रथम 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का भी निर्माण किया गया था। लेकिन इस कानून का और इसके साथ साथ जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित किया गया था, लेकिन इसका सही तरीके से इम्प्लीकेशन ना होने के कारण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई। हम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को एक अम्ब्रेला एक्ट भी कह सकते हैं
0: जी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 संविधान से कैसे संबंधित है?
1: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था, जिसमें जीवन के अधिकार के समान ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण को बराबर भाग दिया गया था। अर्थात जीवन जीने का अधिकार जितना है उतना पर्यावरण संरक्षण का भी अधिकार होना चाहिए
0: जी।
1: जब वन एवं वायु और जल पर किसी प्रकार की संकट जैसी स्थिति आती है, मीन्स उसका उसमें प्रदूषण वगैरह जैसी स्थिति आ जाती है और वो उपयोग लायक नहीं रहता, तब इसके संशोधन की आवश्यकता आती है कि यह स्वच्छ हो जाए और स्वच्छ होने पर प्रत्येक प्राणी के जीवन पर अपना प्रभाव दे और प्रत्येक प्राणी का जीवन सरल और सुगम हो। इसी वजह से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसमें मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा था, उसमें सुधार करना था और पर्यावरण प्रदूषकों पर नियंत्रण करना था।
0: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में मुख्य रूप से क्या प्रावधान है?
1: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत इससे पूर्व पारित जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और उसी के साथ साथ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 हमारे देश में लागू थे, लेकिन अच्छी तरह इम्प्लीकेशन ना होने के कारण एज एन अम्ब्रेला एक्ट के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसमें 4 अध्याय और 26 धाराएं हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से पेनल्टीज एवं कन्विक्शन सजा का भी प्रावधान है।
0: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की भूमिका को कैसे देखा जा सकता है?
1: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भूमिका एवं पर्यावरण संरक्षण बोर्ड की भूमिकाओं को इस तरह से लागू किया जा सकता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को ये समझा

0: में कामयाब हों कि हम कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करें, उसका दुरुपयोग ना करें और प्रदूषण रोकने में हम सहायक हों। जितना कम प्रदूषण होगा, हमारा जीवन उतना ही सरल होगा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत देश की समस्त नगर पालिकाओं को एवं विकास प्राधिकरणों को निर्देशित किया जाता है कि वे जितने भी हमारे नागरिक हैं, यदि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करता है तो वे वहाँ अपने निर्माण कार्य के साथ साथ ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखें, पेड़ पौधे लगाएं और कम से कम प्रदूषण वाली स्थितियाँ उत्पन्न करें। यदि वे कानून के विरुद्ध कोई कार्य करेंगे तो उन्हें सजा का भी प्रावधान है और उन पर पेनल्टी भी इम्प्लीकेट की जा सकती है।
1: सर, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण क्या है और किस प्रकार इस एक्ट के साथ यह कार्य करता है?
0: राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का मकसद देश में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी उत्पन्न करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना है, जिससे स्वच्छ हमें वातावरण प्राप्त हो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की उपलब्धता हो और नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ हवा प्राप्त हो सके। इसलिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण बनाया गया, जो 18 अक्टूबर 2010 को अस्तित्व में आया और NGT भी संविधान के अनुच्छेद 21 से अभिप्रेरित है, जिसमें पर्यावरण को जीवन के अधिकार के समतुल्य माना गया है, उसका ही भाग माना गया है।
1: पर्यावरण संरक्षण के मामलों में न्यायपालिका की क्या भूमिका है?
0: सर्वप्रथम जब हमारे यहाँ वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम था, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम था एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था, लेकिन अच्छी तरह इम्प्लीकेट ना होने के कारण 1984 में 3 दिसंबर 1984 को जब भोपाल गैस त्रासदी हुई, तब मिस्टर MC मेहता द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक बात दायर किया गया और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत उसमें जो पार्टीज थीं उन्हें सजा भी हुई और भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ा। तब वायु प्रदूषण एकदम हाईलाइटेड हुआ और लोगों को वायु प्रदूषण जल प्रदूषण इसके विषय में अधिक जानकारी हुई और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जागरूक होने लगे। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि अब लोग जागरूक होने के बाद वायु एवं जल प्रदूषण पर अपना विशेष ध्यान दे रहे हैं और अपना जीवन सुधार रहे हैं।
1: न्यायपालिकाओं ने समय समय पर पर्यावरण को लोगों के जीवन के आधार को देखकर अपने न्यायोचित दिशा निर्देशों में कई स्तर पर कार्य किया है। अगर एक आम नागरिक, उसको कोई दिक्कत होती है, पर्यावरण से कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रदूषण से कुछ उसके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है, तो एक आम नागरिक किस प्रकार अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसकी प्रक्रिया क्या होगी?
0: यदि कोई आम आदमी को पर्यावरण से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत होती है तो वो निचले स्तर पर नगर पालिका में या विकास प्राधिकरण में अपनी कंप्लेंट दे सकता है, या वह चाहे तो सीधे ही राष्ट्रीय ग्रीनरी ट्रिब्यूनल में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। उसकी शिकायत का निस्तारण समुचित रूप से स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जाता है।
1: पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वालों के लिए किस प्रकार की सजा के प्रावधान हैं?
0: जो लोग पर्यावरण के प्रति दुर्भावना रखते हैं या जानबूझकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रदूषित करते हैं, उसके लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। यदि किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट होती है तो वह लोकल प्रशासन में उसकी शिकायत कर सकता है, अदरवाइज कोर्ट में भी सीधा अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। और जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं उन्हें उसके तहत सजा भी मिलती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत 5 साल की सजा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। लेकिन अभी सन 2020 में दिल्ली NCR में अमेंडमेंट के पश्चात सजा 5 साल की रही, लेकिन जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक का किया गया है, ताकि लोग अपनी जिम्मेदारी को समझें और पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दे सकें।
1: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में और ये जो एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसके इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में क्या चुनौतियां देखी जा सकती?
0: कुछ लोग अपने राजनीतिक या कह दीजिए सामाजिक संबंधों के आधार पर कानूनों का पालन नहीं करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे कानून का अक्षरशः पालन करें। संविधान का रक्षा हम सबका दायित्व है, कानून की रक्षा हम सबका दायित्व है। सब लोग कानून से बंधे हैं, कानून के साथ चलेंगे तो हमारा जीवन और देश भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा, हम सुगम जीवन यापन कर सकेंगे।
1: सर, एक आम नागरिक इस अधिनियम के अनुरूप पर्यावरण संरक्षण की दिशा में क्या क्या कदम उठा सकता है? एक मार्गदर्शक संदेश आपकी तरफ से।
0: आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ

0: कि कृपया आप किसी भी खुशी अथवा गम के मौके पर एक पेड़ अवश्य लगाएं, अपने माता पिता के नाम से पौधा लगाएं, अपने बच्चों के जन्मदिन पर पौधा लगाएं, या बहुत ऐसा एक समय जहां आप बहुत खुश होते हैं उस स्थिति में खुशी बनाने के लिए आप पौधा लगाइए। जल का दुरुपयोग ना करिए, पौधे ज़्यादा ज़्यादा लगाइए और प्रकृति का संरक्षण कीजिए। प्रकृति का संरक्षण आप करेंगे तो प्रकृति आपका संरक्षण अवश्य करेगी। आपका जीवन सुगम होगा, सुलभ होगा, स्वच्छ होगा।
1: कार्यक्रम कानून और हम के इस अंक में हमारा आज का विषय था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिस पर बहुत ही सरल भाषा में और सार्थकता के साथ हमें महत्वपूर्ण जानकारी इस एक्ट के बारे में अधिवक्ता सौरभ सक्सेना जी द्वारा दी गई, जो हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं। सर, आपका हम कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: श्रोताओं, कानून और हम के अगले अंक में हम फिर से एक नए लीगल विषय के साथ और एक अधिवक्ता के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अवधेश कुमार गौतम को दीजिए अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून और हम। कार्यक्रम का विषय था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अधिवक्ता थे सौरभ सक्सेना, आपसे बातचीत कर रहे थे अवधेश कुमार गौतम। मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारे आज के प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:31 पर सुगम संगीत के अंतर्गत सुनवाई जाएंगी गज़लें मिताली सिंह और गुलाम अली की। व्हाट्सएप पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चला आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे। 9:30 पर कवि गोष्ठी प्रसारित की जाएगी जिसका विषय होगा पर्यावरण सुरक्षा पर। प्रतिभागी कवि होंगे डॉक्टर प्रेमवती, अभिषेक मिश्रा, ओमकार सिंह और विवेक मिश्रा। खेल दर्पण कार्यक्रम रात्रि 10 बजे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन सकेंगे।

0: है सेंसस 2027, हमारी जनगणना हमारा विकास।
1: और अब कल की प्रथम सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त रूपरेखा आपको बता दें। कल प्रातः 6:05 पर रोजाना की तरह प्रसारित किया जाएगा भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। आज का चिंतन प्रसारित किया जाएगा 6:30 पर। स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत जानकारी का विषय होगा अंगदान का महत्व। जानकारी देंगे असीम सक्सेना। समय याद रखिएगा 6:35 पर। श्री रामचरित मानस से प्रसंग सुनिएगा 6:45 पर। सुबह 7:00 अमृत कलश कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा डिजिटल साक्षरता। वाचन होगा शासिया परवीन का।

सुबह सवेरे कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा 7:31 पर 102.9 मॉर्निंग हिट्स में नए फिल्मी गीत सुनेगा 8:45 पर प्रेरक प्रसंग में 9:25 पर कल सुन सकेंगे गोस्वामी तुलसीदास के जीवन से प्रसंग। उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर किया जाएगा 9:30 पर 9:50 पर सुनेगा उपशास्त्रीय संगीत में अवधेश कुमार गोस्वामी का गाया ख्याल दादरा 10:05 पर सुनेगा फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। श्रोताओं, ये थी हमारे आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7:18 होने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा अगला कार्यक्रम।

0: सोच रहा।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के।
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर

0: के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। कुशीनगर अब पिछड़ेपन की पहचान नहीं बल्कि तीव्र गति से आगे बढ़ते नए उत्तर प्रदेश का प्रतीक बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
1: इसी सत्र में हम लोग कुशीनगर के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का भी संचालन करने जा रहे हैं। उसमें सत्र प्रारंभ होगा, बच्चों का एडमिशन हम करवाएंगे। कुशीनगर में अपना विश्वविद्यालय हो, कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने आज गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है, इन्हें टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित कर रही है। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला कर दिया है। वहीं सीबीएसई द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सीबीएसई ने कहा है कि ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। बोर्ड ने बताया कि सुरक्षा बढ़ाने के लिए आधार सत्यापन को शामिल किया गया है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है उनके माता पिता, रिश्तेदार या अभिभावक के आधार कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपए और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपए का भुगतान करना होगा। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनावों में अपना वोट डालें। उन्होंने कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। श्री कुमार 2 दिवसीय दौरे पर कल आगरा पहुंचे थे।
3: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
0: मुख्य सचिव एसपी गोयल ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के मास्टर प्लान और लेआउट का अवलोकन करते हुए संबंधित विभागों को समयबद्ध और प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्री गोयल ने कल ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25 से 29 सितंबर तक होने वाला ये शो और अधिक भव्यता के साथ आयोजित किया जाए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12

0: वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आगरा के बिरहरू को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार इस उपलब्धि के लिए कल दिल्ली में सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सरकार और ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया है।
2: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनू और गांव की दुर्दशा पहले बहुत ज्यादा खराब थी, लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर, सचिवालय, आरआरसी सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य कराई गई, सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने के आरोप में आजमगढ़ से एक युवक को गिरफ्तार किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह आतंकवादी गिरोह नौजवानों को अहम व्यक्तियों और संस्थानों की निगरानी करने, उनकी हत्या करने, राजनीतिक दलों के कार्यालयों पर बमबारी करने, सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों की हत्या करने और उनके कार्यालयों और मुख्यालयों पर हमला करने जैसे अपराध को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। खुफिया जाँच के दौरान आजमगढ़ निवासी मोहम्मद शेख का पता चला, जो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। शेख पाकिस्तान और दुबई के फोन नंबरों का उपयोग करके व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए शहजाद भट्टी के आतंकवादी गिरोह से जुड़ा हुआ था। वो अपने साथियों और अन्य लोगों को भी आतंकवादी गिरोह में शामिल होने और गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए भड़का रहा था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ज्येष्ठ माह के 5वें बड़े मंगल के अवसर पर लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिली। बजरंगबली के जयकारे के साथ लोग दर्शन पूजन करते नजर आ रहे हैं। जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़े मंगल पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज झोंकेदार हवाओं के साथ बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के चिलुआ ताल में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विकास कार्यों का किया लोकार्पण। कहा, प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन डेस्टिनेशन में बदल रही है सरकार। केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का किया तबादला। ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद की जांच के लिए समिति गठित। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज आगरा के कैलाश मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं अब आनंद लीजिए फिल्म
2: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सुगम संगीत में सुनिए मिताली सिंह और गुलाम अली की गायी गजलें। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मिताली सिंह की गायी गजलें।
3: और अब मैं चाहूंगा कि मेरी शरीके हयात, शरीके गजल और शरीके महफिल मिताली जी कुछ आपको सुनाएं।
4: भूपी जी माफ कीजिएगा, इस गजल में शिकायत है और साहिबान बात आपस की है, मगर आप कोई गैर नहीं है, आप भी सुनिए।

महफिल को ज़रा और जज्बाती बनाने के लिए, शाइस्ता बनाने के लिए एक अलग रंग की गज़ल पेश है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी।

सुगम संगीत में अभी आप गजलें सुन रहे थे मिताली सिंह की, और अब सुनिए गुलाम अली की गाई गजलें।

सुगम संगीत में अभी आप सुन रहे थे गज़लें। आज की कलाकार थी मिताली सिंह और गुलाम अली। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर। अब समय है व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित कार्यक्रम गीत गाता चल का।

गीत गाता चल के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं आज हूँ आपकी रेडियो सहेली इरम फातिमा। कबूल कीजिए प्यार भरा नमस्कार सलाम। साथियों, आज का पहला व्हाट्सएप संदेश हमें लिख भेजा है। राजेश साबिल पाटिल जी ने अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा ने कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान और निखत परवीन ने एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक और परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोड़े, योगिता कुमारी प्रियाली, पार्थ हरजिंदर, छिंदा जसवीर, जस्सी और सीता, गीता नथाना पंजाब से, जिला नांदेड़ कुंडलवाड़ी से गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर, गंगाधर सावनकर, विजया लक्ष्मी सावनकर, करणवीर हाउस भूचा कैंचिया भटिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दमपिंदर वरिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन, अभिजोत, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से संदेश भेजा है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बीबी गर्वी ने। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और बिरभा देवी तामोरिया और मास्टर अलकबीर, किंकेरी मेटा बिलहारी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से संतोष शर्मा, रुकमणी शर्मा, मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, सरदा हिना कौसर ने वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान ने। आप सभी की फरमाइश पर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत फिल्म ताजमहल से।

और अब अगला व्हाट्सएप संदेश हमें भेजा है विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, गौरी सुरलकर और ने मोताला महाराष्ट्र से।

निवासा खुपट्टी महाराष्ट्र से, वंडू लोहार पोपट घट, चंद्रकला और देवीदास। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश कमला रानी और गीतिका खोरवाल ने

हिंगोली महाराष्ट्र से रामचंद्र इंगोले, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली मुरादाबाद से, जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से व्हाट्सएप संदेश हमें लिख भेजा है योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और सुरेश चौरसिया फरुखाबादी ने। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया और ताहिरा ने। ऊपरकोट बुलंदशहर से व्हाट्सएप संदेश में लिख भेजा है मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनाज शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सोहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों ने। लिसनर्स वर्ल्ड ग्रुप से ये संदेश हमें भेजा है अशोक ग्रोवर जी, नितेश कुमार देवगंध और किशन सपकाल जी ने। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम है शंकर हुसैन।

बजाजी, विठलराव सारस्वतजी, राजू मिगलानी, सुभाष योगी, प्रकाश वर्मा, विजय सुरलकर जी और विजय सिंह, कोमल मास्टर जी, रिजवान खान, पवन कुमार साहू, सुदर्शन शाह, गजानन येले, अरुणा दामोदर, रमेश चंद्र सेन, अजीत सोनिया, अनिल कुमार और लालगिरी स्वामी, संतोष नामदेव, संजय ढींगिया, दीपेश वर्मा, पी एस नाहमकर, चंदूलाल पटवाजी, कमल बालूजा, उमंग मलिक, सोहन जोशी जी, जयवंती केवट जी, शिव कुमार चौहान, उत्तम कुमार भगत जी, मुन्ना भगत जी, लक्ष्मण राव लोखंडे जी, एम फारूक शेख, गंगाधर येमेकर, दिनेश वर्मा, गंगाधर सावनकर, सैयद मसरूर जी, राष्ट्रपाल गजभिये, बसंत कुमार सिन्हा, सैयद आलम हाशमी, मुरलीधर साहू, सोपान तायेट जी, वसंत राव तुलसी मस्किन, राहुल कुराना, राहुल मुनव्वर, मोहम्मद यासीन अनजान, नरेश मल्होत्रा, मुकेश गोस्वामी, श्री राम गोंधाली, बलकरण वर्मा, राज शर्मा, श्री राशिद हुसैन अंसारी, संतोष नामदेव जी, मोहम्मद सईद अब्बासी, अशोक दल जी, हरजिंदर सिंह, पवन कुमार सेन, अकरम हुसैन, सुरेश गगनेजा, पनेश कुमार चंदन, भारत भूषण जी, हिरमणि वर्मा, हरजिंदर सिंह छिंदा, सौरभ निषाद, कारी रायकारी, सुरेश राठौर, सुधाकर, राजेश जाधव, संचित दाता सिंह शेखावत जी, मिंटू टोमस, मास्टर विठल सरोश, माखन वर्मा, के आर साहू और गन्नूलाल रजक जी। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण यादव, गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा शोभा नंदिनी रघुवंशी, आराध्या खड़से, विष्णुरी खड़से, ललित नारायण भाव खड़से, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक ने आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म भरोसा से।

मेरठ के कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर ने, गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से रेखा रघुवंशी, पूजा रघुवंशी, बबीता रघुवंशी, शोभा आराध्या खड़ से ललित नारायण, भाव खड़ से ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ ने, गांव चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया ने व्हाट्सएप संदेश भेजा है। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से, अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय ने

योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका नायक, सुशांत नायक और दोस्त सुरेश चौरसिया फरुखाबादी ने फरमाइश की है। ज़िला कासगंज, उत्तर प्रदेश से। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार। छत्तीसगढ़ चोरी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा ने। करेली ज़िला बरेली से मोहम्मद आमिर अंसारी, माहे नूर अंसारी, शमीम अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी। जलालाबाद वेस्ट से व्हाट्सएप संदेश भेजा है सुरेश गगननेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा ने। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी और हिमांशु। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक, बलबीर सिंह। आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत मुकेश की आवाज़ में। आपकी फरमाइश पर ये गीत आपकी नज़र में।

कार्यक्रम का अगला व्हाट्सएप संदेश हमें लिख भेजा है आप सभी ने। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला पर सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर ने। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा ने। भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग, शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, दिल्ली शहर मोरी गेट से। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती महाराष्ट्र से संदेश भेजा है सैयद भाई, सुफियान अनस आयजा ने और सैफ अल्फिया सदफ ने। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख उल्ला बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख,

वटिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टोमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दाऊदी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार। हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके और हनुमान बोटके। ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हांगोड़े, योगिता और कुमारी प्रियाली, पार्थ और इनके परिवार के अन्य सदस्य। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, पिरखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। हाउस नंबर 44, माफ कीजिए, संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव ने ये संदेश लिख भेजा है। छत्तीसगढ़ महासमुंद से कलीम आसमा, सलीम आसमा, यूसुफ आसमा, यूसुफ चांदनी चौक बिहार से शरफुद्दीन जाटव, फातिमा डब्लू वली, सोनम वली, पद्मा टॉकीज नेपानगर से फरमाइश आपको एक बार संदेश पढ़ने के बीच में ही याद दिलाना होगा कि एक ही नाम के कई संदेश मत भेजिए, क्योंकि बार बार हमें अटकना पड़ता है इसमें बोलने के लिए और नाम रिपीट हो जाते हैं तो आप लोगों की ही शिकायत आती है। चलिए आप सभी की फरमाइश पर लीजिए, सुनिए ये गीत तीसरी कसम का, आवाज़ है मुकेश की।

कार्यक्रम के अगला संदेश हमें लिख भेजा है। आप सभी ने मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर ने भोपालगढ़, राजस्थान से धर्मेंद्र जीपा, कपिल जीपा, ईशान जीपा और पूजा परिहार ने ग्राम पंचायत कालीदेव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे कुमार संचित, प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख ने अजीत कसाना ने माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना ने लदावली मुरादाबाद से ही संदेश लिख भेजा है। जनकपुरी

सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत, आप सभी की नज़र।

साथियों, इसी खूबसूरत गीत के साथ कार्यक्रम गीत गाता चल अब यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो सहेली इरम फातिमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गाता चल। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सवेरे के माफ कीजिए रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए 1 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति 1 महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
2: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
4: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
3: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
5: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
3: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका

0: फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। एनटीए ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स ओटीटी की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ। 2-3
1: ब्रांचेस ऑल्सो। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए खिदमात की दस्तियाबी की जांच के सिलसिले में पैनल तश्कील दिया है। हुकूमत ने लोखंडे प्रशांत सीताराम को CBSE का चेयरपर्सन मुकर्रर किया है। भारत ने नेपाल के साथ बाहमी मामलात के हल के लिए किसी तीसरे फरीक की शमूलियत को मुस्तरद कर दिया है। भारत ने फिजा से जमीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने अपने आगाज के 2 साल के अंदर अंदर 1 करोड़ से ज्यादा सारेफीन का संगे मील पार कर लिया है। यूक्रेन में रूसी हमलों में 21 अफराद हलाक हो गए हैं। और खवातीन क्रिकेट में आज रात टोंटन में तीसरे और आखिरी T20 बैन अलावामी मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने CBSE की जानिब से ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM सिस्टम खिदमात की खरीद से मुतालिक मामलात की जांच के लिए 1 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। कमेटी की सरबराही सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन

0: इसी ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज्यादा आसान तर्ज पर और बिला रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके। सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज्यादा सारिफिन की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में सीबीएसई ने बताया है कि 16,000 से ज्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं। सीबीएसई का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: इस दौरान सीनियर आईएएस अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तकरूरी राहुल सिंह की जगह हुई है, जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी ज़िरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है। हुकूमत ने वरुण भारद्वाज को भी सीबीएसई में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फ़राइज अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरूरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुदकफील, बाखबर और बासलाहियत बनाती है। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफदीन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हकीकी मानी में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की करें।
2: जुबा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातियों समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों ने कबाइलियों की जिंदगी में यकसर तब्दीली लाई है और उनके लिए आला तालीम और नए मौके तक रसाई मुमकिन हो पाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फरोग देने के लिए उसकी निशानदेही करने, परवान चढ़ाने और सही मकाम अता करने पर जोर दिया।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के तहत भारत में खातिर खा तब्दीली लाई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में हम बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
0: गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान भारत में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिमत में नुमाया तब्दीली हुई है, जो हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। इन कोशिशों का मकसद ख़वातीन को सेहत, तालीम, रोज़गार के मौके, माली शमूलियत और क़्यादत के शोबों तक रसाई को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 2015 में शुरू की गई थी, ने लाखों ख़वातीन को अपना कारोबार शुरू करने और इसे उसत देने के लिए बग़ैर ज़मानत के कर्ज हासिल करने के काबिल बनाया है। इस स्कीम के तहत रवा माली साल मार्च तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज मुस्तफिदीन को फराहम किए गए हैं, जिनमें से 17 लाख करोड़ रुपए खवातीन को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसे अहम प्रोग्रामों ने मुश्तरका तौर पर खवातीन की बैंककारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्म तक रसाई को मजबूत बनाया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 33 करोड़ अकाउंट्स खवातीन के नाम हैं। दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے نیپال

सा। और मैं एक गीत से अपनी उपस्थिति इस गोष्ठी में दर्ज कराता हूँ, और इसके बाद मैं एक एक करके हमारे बीच में जो ये वरिष्ठ और वरेण्य गीतकार यहाँ पर उपस्थित हैं, हम सभी उनके गीतों से सुनकर आनंदित होंगे। ये गीत है जो गांव में पर्यावरण का जो बदलता परिवेश है उसको लेकर है, और देखिएगा कि पर्यावरण किस तरीके से हमारा जो बदलता परिवेश है उसमें आवश्यक है, वैसा ही कुछ भावना इस गीत में है।

0: है गांव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
1: बहुत
0: निश्चित
1: बढ़िया,
0: रूप से गांव बड़े आवश्यक हैं, पर्यावरण बहुत आवश्यक है। आइए अब इसके पश्चात बदायूं से हमारे बीच में श्री विवेक हरि मिश्र जी, जिनका गीतों पर बहुत ही अच्छा अधिकार है और उनके गीत बड़े मनोयोग से सुने जाते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वे हमारे बीच में अपने गीतों को इस काव्य गोष्ठी में प्रस्तुत करें। श्रीमान विवेक हरि मिश्र जी, आपके बीच।
1: मैं अपना गीत आपके सामने रख रहा हूँ। जी

0: सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और आप अभी सुन रहे थे ये सुमधुर गीत भाई श्री विवेक हरिमिश्र जी हमारे बीच में उपस्थित थे बदायूं से। इसी क्रम में अब मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में रामपुर से आदरणीय श्री ओमकार सिंह विवेक जी, जो मूलतः गजलकार हैं लेकिन गीत और दोहे पर समान अधिकार रखते हैं, और आज वह हमारे बीच में पर्यावरण के संदर्भ में कुछ दोहों के साथ उपस्थित हुए हैं। मैं आदरणीय सर से निवेदन करता हूँ कि वे इस काव्य गोष्ठी में अपने दोहे के द्वारा पर्यावरण संचेतना को एक नया स्वर, नया सोपान प्रदान करें। आदरणीय श्री ओमकार सिंह विवेक जी, आपके मध्य।
1: धन्यवाद भाई अनंत जी। पर्यावरण में बहुत सी चीज़ें आती हैं, पेड़ ही नहीं आते, जंगल, नदी, पहाड़, बहुत सी चीज़ें हैं, तो समेटना फिलहाल मैं प्रयास करता हूँ। पहले गज़ल के दो शेर हैं वो पेश करता हूँ, फिर दो कुंडलियाँ, उसके बाद अंत में कुछ दोहे प्रस्तुत करूँगा।
0: स्वागत है।
1: मिलता जुलता विषय है, पर्यावरण की चिंता इसमें झलकती है। एक गज़ल का मतलब कुछ इस तरह था कि शीशम साखू महुआ चंदन पीपल देते हैं,
0: वाह,
1: शीशम साखू महुआ चंदन पीपल देते हैं, कैसी कैसी नेमत हमको जंगल देते हैं,
0: वाह वाह भाई,
1: कैसी कैसी नेमत हमको जंगल देते हैं। और इसमें एक शेर ये भी हुआ था कि मिलती है कितनी तस्कीन तुम्हें क्या बतलाएं,
0: वाह
1: मिलती है कितनी
0: कितनी
1: तस्कीन तुम्हें क्या बतलाएं,
0: जी,
1: आंगन के प्यासे पौधों को जब जल देते हैं,
0: वाह वाह वाह,
1: आंगन के प्यासे
0: प्यासे
1: पौधों
0: पौधों
1: को जब
0: जब
1: जल
0: जल देते
1: देते
0: हैं,
1: हैं,
0: वाह वाह
1: शीशम साखू महुआ चंदन पीपल देते हैं,
0: वाह,
1: कैसी कैसी नेमत हमको जंगल
0: जंगल
1: देते
0: देते
1: हैं। और एक पर्यावरण को लेकर एक कुंडलिया है
0: जी, स्वागत है
1: कि पेड़ों के संरक्षण और संवर्धन की बात कही अभी भाई ने,
0: जी
1: उसी बात को मैं आगे कुंडलिया के जरिए बढ़ाता हूं
0: जी
1: कि करता है ये प्रार्थना मिलकर सारा गांव,
0: जी
1: करता है ये प्रार्थना मिलकर सारा गांव, बनी रहे यूं ही सदा बरगद तेरी छांव,
2: वाह बहुत बढ़िया, वाह
1: बनी रहे यूं ही सदा बरगद तेरी छांव, बरगद तेरी छांव न कोई तुझे सताए, बरगद तेरी छांव न कोई तुझे सताए,
0: वाह
1: छाया तेरी खूब घनेरी होती जाए,
0: वाह,
1: छाया तेरी खूब घनेरी होती जाए। और ग्रीष्म काल में नित जोर जब सूरज भरता, ग्रीष्म काल में नित जोर जब सूरज भरता, सबके सिर पर छांव मित्र तू ही तो करता,
2: वाह
1: सबके सिर पर छांव मित्र तू ही तो करता।
0: वाह
1: और एक कुंडलिया और है,
0: जी
1: पर्यावरण में पानी विषय भी है,
0: जी स्वागत है
1: तो पानी जीवन के लिए है अनुपम वरदान,
0: जी,
1: पानी जीवन के लिए है अनुपम वरदान, व्यर्थ न इसकी बूंद हो रखना है ये ध्यान,
2: वाह
1: व्यर्थ न इसकी बूंद हो रखना है ये ध्यान, रखना है ये ध्यान करें सब संचय जल का,
2: जी,
0: वाह
1: रखना है ये ध्यान करें सब संचय जल का, संकट हो विकराल पता क्या है कुछ कल का,
0: वाह
1: संकट हो विकराल पता क्या है कुछ कल का, और करता विनय विवेक छोड़ दें अब मनमानी, करता विनय विवेक छोड़ दें अब मनमानी, मिलकर करें उपाय बचा लें घटता पानी,
0: वाह
2: वाह
1: मिलकर
0: वाह
1: करें
0: वाह वाह
1: उपाय बचा लें घटता पानी। और अंत में कुछ दोहे प्रस्तुत करता
0: जी
1: हूं,
0: जी
1: स्वागत है
0: बहुत सुंदर, स्वागत है
2: स्वागत
1: कि कर

0: पार,
1: वाह
0: जंगल और पहाड़, और ताप धरा का बढ़ रहा, पिघल रहे हिमखंड,
1: वाह
0: ताप

0: आज प्रकृति से छेड़का मनुज पा रहा
1: बहुत
0: दंड,
1: अच्छी, बहुत सुंदर, वाह।
0: मनुज पा रहा दंड। और इसी सिलसिले का एक दोहा और देखें कि सभी मेला कर रहे निश दिन इस कानीर, सब ही मेला कर रहे

0: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर।
1: जाकर अपनी पीर, और पेड़ों का मानवीकरण करने का प्रयास किया है
2: जी,
1: कि देते हैं हम पेड़ तो प्राण वायु का दान,

और अंतिम दोहा एक कामना, एक प्रार्थना, एक अनुरोध है मानव जाति से कि सबसे है मेरी यही विनती बारंबार, सबसे है मेरी यही विनती बारंबार।

0: और गंगा माँ को जो समर्पित दोहा था, मुझे अच्छा लगता है,
1: जी
0: फिर से उसको पढ़ता
1: जी
0: हूँ
1: बहुत
0: अंत
1: स्वागत
0: में,
1: स्वागत है।
0: कि सभी मेला कर रहे निशदिन इसका नीर,
1: वाह।
0: सभी

0: धन्यवाद,
1: बहुत सुंदर।
2: आप
1: सुन रहे थे ये सुमधुर दोहे श्री ओमकार सिंह विवेक जी रामपुर से जो हमारे बीच में थे। मैं इसके पश्चात इस काव्य गोष्ठी को इसके शीर्षस्थ पायदान की ओर ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर श्रीमती प्रेमवती उपाध्याय जी मुरादाबाद से एक वरिष्ठ कवित्री यहाँ पर उपस्थित हैं। गीतों पर आपका बहुत ही सुंदर एक ऐसा नाम, मैं चार पंक्तियों से आदरणीय मैम का स्वागत करता हूँ, उन्हें काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करता हूँ।

0: कि छुअन तेरी हवाओं में नई धुन घोल जाती है, तुम्हारी याद मन में शब्द की माला सजाती है, तुम्हारा नाम आते ही महकती है कलम मेरी, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरे गीतों से आती है, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरे गीतों से आती है। गीतों का एक सुमधुर नाम, आदरणीय डॉक्टर श्रीमती प्रेमवती उपाध्याय जी, इस पर्यावरण गोष्ठी में आपके मध्य।
1: एक दोहा, वट जैसे विनयी बने, वट जैसे विनयी बने, पाए उम्र महान झुकत छू।

वायु जल ध्वनि करें प्रदूषित किंचित नहीं सकुचाते हैं। वायु जल ध्वनि करें प्रदूषित किंचित नहीं सकुचाते हैं। धरती से अंबर तक हर पल कितना धुआं उड़ाते हैं। धरती से अंबर तक हर पल कितना धुआं उड़ाते हैं। वायु जल ध्वनि करें प्रदूषित किंचित नहीं सकुचाते हैं। धरती से अंबर तक हर पल कितना धुआं।

हरियाली, पर्वत से छीनी हरियाली, करी विशैली गंगाधार, पर्वत से छीनी हरियाली, पर्वत

0: बहुत सुंदर, वाह वाह वाह,
1: ये करते हम पर उपकार। अंतिम है,
0: जी
1: पर्यावरण हितार्थी ही हमने पेड़ पत्थरों को पूजा।
2: क्या बात,
1: पर्यावरण

0: ये
1: बहुत सुंदर,
0: करते
1: बहुत सुंदर,
0: हम पर
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत
0: पुकार।
1: सुंदर,
0: धन्यवाद।
1: वाह वाह। और ये हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर श्रीमती प्रेमवती उपाध्याय जी, जो मुरादाबाद से गीतों का एक सुमधुर वरिष्ठ कवित्री थी हमारे बीच में, पर्यावरण विषय की ये काव्य गोष्ठी अब यहाँ पर विश्राम लेती है। धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी, हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर। रात्रि के 10 बजने को हैं कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से होगा।
3: फुटबॉलर नीरज गुप्ता परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं दीपांकर मिश्र। तो आइए सुनते हैं परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन।
4: श्रोताओं नमस्कार, खेल दर्पण के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, भारत जैसा कहा जाता है कि प्रतिभाओं का देश है, यहाँ ढेरों प्रतिभाएं हैं चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आज विशेष रूप से हम भारतीय खेल और खिलाड़ियों के बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि भारत में खेलों की बड़ी ही अद्भुत प्रतिभाएं रही हैं और अभी भी हैं। लेकिन जब हम परिणामों से उनकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसी प्रतिभाएं हमारे पास हैं, जैसी विशाल जनसंख्या है हमारी, उस तरह का प्रदर्शन जो है वो नहीं हो पाता है, नहीं निकल के आ पाता है। हालांकि व्यक्तिगत प्रतिभाओं की बिल्कुल कमी नहीं है और ये हमारे खिलाड़ियों ने समय समय पर अपने प्रयासों से साबित भी किया है। तो आज इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दो विशेष मेहमानों को। एक तो हमारे साथ हैं संजय राय जी, जो कि कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, और साथ में हमारे हैं नीरज गुप्ता जी, जो प्रदेश स्तरीय फुटबॉलर हैं और अभी भी खेल से जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं। तो सबसे पहले तो संजय जी और नीरज जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में मैं स्वागत करता हूँ।
5: धन्यवाद।
4: संजय जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि भारतीय खिलाड़ियों की कुछ अपनी चुनौतियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, जो उन्हें कहीं ना कहीं मार्ग में उनके बाधा बन जाती है प्रतिभा के बावजूद। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप

0: एक खिलाड़ी के रूप में कैसे देखते हैं कि कौन सी वो बड़ी चुनौतियां हैं जो एक भारतीय खिलाड़ी को झेलनी पड़ती है?
1: अपने जो खेल और खिलाड़ी से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या है खिलाड़ियों के लिए, तो एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, उसके परफॉर्मेंस के लिए और उसके प्रैक्टिस के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है उसका फाइनेंशियल सपोर्ट। हम अपने एकल प्रयासों से एक लेवल तक तो पहुंच सकते हैं, हम एक स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इससे ऊपर उठना है हमको और इससे ऊपर का जब हमारा टारगेट होगा और उसको अचीव करना होगा, तो वहाँ हमारी जो भी क्षमताएं हैं, पूरी क्षमताओं के साथ प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। खिलाड़ी के लिए जैसे कुश्ती से है या हॉकी का प्लेयर है या किसी भी फील्ड का प्लेयर है, तो हर गेम के अलग अलग इक्विपमेंट हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, और फिर जो एक खिलाड़ी को जो आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जिसका होता है, जिसको गुरु कहा जाता है, कोच कहा जाता है, वो सबसे बड़ा मायने रखता है।
0: चलिए इस पर हम आगे बात करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं नीरज जी से कि नीरज जी आपको क्या लगता है जो खिलाड़ियों को चुनौतियां का सामना करना पड़ता है, भारतीय खिलाड़ियों को, आपके हिसाब से वो कौन ऐसी चुनौतियां हैं जिनका आप जिक्र करना चाहेंगे?
2: मैं संजय राय जी के बात से पूरी तरह सहमत हूँ। खिलाड़ियों को सबसे बड़ी चुनौती बेसिक होती है कि जिस खेल में वो जुटे हुए हैं उस खेल का उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इन्वायरमेंट, इन दोनों चीजों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अलग अलग खेल के अलग अलग इक्विपमेंट होते हैं, फाइनेंशियल की जो इन्होंने बात कही है वो भी बात है, इसमें इसकी भी चुनौती का सामना करना पड़ता है।
0: आपने जैसे कहा कि आर्थिक सहायता, तो आप लोग एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, संजय जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आर्थिक पक्ष जो है खेल का वो एक खिलाड़ी को किस तरह से प्रभावित करता है और उसके प्रदर्शन को किस तरह से प्रभावित करता है?
1: फाइनेंशियल सपोर्ट का तात्पर्य यह है कि खिलाड़ी की, जैसे हम चूंकि कुश्ती से जुड़े हुए हैं तो हमारा एक रूटीन वर्क के बाद एक रूटीन डाइट चार्ट होता है। अगर हमने आज सुबह के सेशन में 3 घंटे वर्जिश किया है, पसीना बहाया है, तो नेक्स्ट सेशन में हमें बिल्कुल तैयार होने के लिए इस तरह की डाइट चाहिए कि बीच का जो समय है उसको रिकवर कर ले वो, यानी कि हम अपने इवनिंग सेशन के लिए पूरी तरह से फिट हो जाए, हमारी डाइट इस तरह से संतुलित होनी चाहिए। उसमें घी है, बादाम है, दूध है, सूखे मेवे हैं और जो भी सीजन के फल अवेलेबल होते हैं ये पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, तब जाके कहीं हमारी रिकवरी इतनी अच्छी हो पाएगी कि हम अपने मॉर्निंग सेशन की ट्रेनिंग के बाद का जो बीच का समय होता है उसमें रेस्ट करने के बाद हम अपने इवनिंग सेशन के ट्रेनिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो पाए। दूसरा चीज इसमें है फाइनेंशियल सपोर्ट में ये भी है कि हमको कहीं खेलने जाना है या किसी नेशनल लेवल के टूर्नामेंट में अगर हमको जाना है तो हमारे पास जो हम लोगों के खेल के परिधान होते हैं, अब हर चीज काफी महंगी हो गई है, तो जैसे रेसलिंग शूज है, कॉस्ट्यूम है और प्रॉपर जो किट होती है, क्योंकि हमारा इंडिविजुअल गेम है तो इंडिविजुअल गेम में इंडिविजुअल व्यक्ति भी स्पॉन्सरशिप किसी को दे सकता है कि हमें कोई स्पॉन्सर मिल गया, उसने हमारा पूरा खर्चा उठाया, भाई मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ, वो हमारे पूरे नेशनल खेलने जाने से आने तक का जो भी कुछ हुआ, कोई व्यक्ति हमें ऐसा स्पॉन्सर मिल गया या कोई ऐसा हमें सपोर्ट करने वाला मिल गया कि भाई चलो हम आपके बादाम का खर्च उठा लेते हैं, तो ये जैसे एक व्यक्ति नहीं कई लोग मिलके भी एक व्यक्ति को छोटा छोटा हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकते हैं।
0: जी बड़ी अच्छी बात कही आपने। नीरज जी हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप फुटबॉलर हैं तो विशेष रूप से फुटबॉल के क्षेत्र में जो आर्थिक पक्ष है, जो आर्थिक मदद है, आर्थिक सहायता है, वो चाहे सरकार से आए या निजी संस्थानों से आए, वो कैसे प्रभावित करती है और अगर उसको बेहतर किया जाए तो कैसे आपके खेल की गुणवत्ता बढ़ सकती है?
2: जैसे कि संजय भाई ने कहा कि हर खिलाड़ी के लिए प्रॉपर डाइट होता है, तो खिलाड़ी अगर 3 घंटे 4 घंटे अपना पसीना बहाता है तो नेक्स्ट जैसे कि लेवल के लिए जो अगर सुबह उसने वर्कआउट किया अपना 3 घंटे 4 घंटे जो भी प्रैक्टिस किया, उसके बाद उस खिलाड़ी की पूरी एनर्जी जो है एग्जॉस्ट हो जाती है। जो एनर्जी उनका एग्जॉस्ट हुआ तो उसके लिए एक प्रॉपर डाइट होता है, मेंटेन किया जाता है, चार्ट वगैरह उसकी तैयार होती है, तो उस डाइट को प्रॉपर पूरा करने के लिए एक रूटीन के हिसाब से अपना आदमी डाइट बराबर करता है तो उसमें भी खर्चे भी ज्यादा आते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जूस वगैरह टाइम टू टाइम हर चीजें, तो डाइट पर भी असर पड़ता है, डाइट पे जो फाइनेंशियल आता है उस पर भी असर, वो भी खिलाड़ी के मतलब उस पर असर कर

0: आता है, आगे बढ़ने के उस पर असर आता है उससे।
1: चलिए तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि चलिए जो लोग खेल से जुड़े हुए हैं, अगर अपने खेल के अपने प्रदर्शन की बदौलत उनकी कहीं नौकरी लग जाती है तो फिर भी उनके सामने एक विकल्प खुल जाता है, या फिर वो अपने खेल में बहुत ही ऊंचा नाम कर लें, किसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिताब ले आए, तो फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जो बीच के खिलाड़ी हैं, जो अभी तक उतना नाम नहीं कर पाए हैं या अभी भी संघर्षरत हैं, तो एक बात तो ये बताइए कि उनके लिए किस तरह की सहायता उपलब्ध है सरकार की ओर से, फेडरेशन की ओर से, और उसमें कहाँ कमी है जिसे पूरा किए जाने की जरूरत है।
2: बहुत ही अच्छा सवाल रहा आपका ये, क्योंकि ये बिल्कुल आज के परिवेश में खिलाड़ी जिन चुनौतियों से जूझ रहा है वो सबसे बड़ा सवाल यही है कि खिलाड़ी को फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज है कि उसमें पहले तो हम फेडरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुश्ती फेडरेशन की बात कर रहा हूं, तो कुश्ती फेडरेशन अपने हर आयु वर्ग के सीनियर नेशनल, जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल, अंडर 15, अंडर 23 लेवल का नेशनल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करती है पूरे देश में। तो हर वेट कैटेगरी में फर्स्ट, सेकेंड और दो थर्ड, मतलब चार प्लेयर सेलेक्ट किए जाते हैं हर वेट कैटेगरी से, मेन एंड वोमेन, और उसके बाद इन लोगों को रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक कैंप देती है जिसको नेशनल कैंप कहते हैं, हम लोग इंडिया कैंप भी उसको कहते हैं। तो उसमें सारी व्यवस्था रहती है और सारे उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल के सारे कोचेज होते हैं, वो आपको उनका प्रैक्टिस रूटीन पूरा मेंटेन करना होता है और कंटिन्यू आपको उसमें ड्यूरेशन होता है इंडिया कैंप का, 90 दिन का होता है, 60 दिन का होता है, 30 डेज का होता है। इसके अलावा जो प्लेयर छूट जा रहे हैं, जिनका नेशनल चैंपियनशिप में मेडल नहीं आ पा रहा है, जिनके अंदर प्रतिभा तो है लेकिन भाई वहां पे बस फर्स्ट, सेकेंड और दो थर्ड की ही जगह है, तो इसमें जो लोग सक्सेस हो गए, जिनका मेडल आ गया, वो तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनके लिए भारतीय कुश्ती संघ ने अभी तत्काल में रैंकिंग सीरीज का प्रावधान डाला है। रैंकिंग सीरीज का नियम यह है कि उसमें चाहे एक वेट कैटेगरी में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका कोई नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कोई बाउंड नहीं है उसमें। और रैंकिंग सीरीज में अगर हम या जो भी प्लेयर है रेसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो, और रैंकिंग सीरीज में अगर वो मेडल देते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म ये मिल जाता है कि वो सीधे इंडिया कैंप के हकदार हो जाते हैं, उस नेशनल कैंप के हकदार हो जाते हैं जिस नेशनल कैंप के लिए उन्होंने एक ख्वाब बना के बरसों से ग्राउंड पे मेहनत किया था, पसीना बहाया था, और फिर वो उसी इंडिया कैंप से, नेशनल कैंप से वो शुरुआत होती है जो सपना लगभग हर एक खिलाड़ी देखता है कि जो भी टीम बाहर जानी होती है नेशनल कैंप से ही उन बच्चों का सिलेक्शन होता है, ट्रायल लिया जाता है, उसमें जो भी बच्चे फर्स्ट आते हैं वो उस समय की जो भी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज होनी रहती है उसके हिसाब से वो ट्रायल होता है, उसमें बच्चे सेलेक्ट होते हैं और वो बच्चे जाते हैं। तो एक तो फेडरेशन का ये बहुत बड़ा एक खिलाड़ियों के लिए कदम है, और इसके अलावा एक फाइनेंशियल सपोर्ट में जैसे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WPL रेसलिंग प्रो लीग ऑर्गेनाइज करती है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही एक खिलाड़ियों के लिए फायदेमंद है कि जैसे अगर उसमें कोई भी खिलाड़ी जिसका एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अपने करियर का और उसको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रही है और अचीवमेंट उनका अच्छा रहा है और कंटिन्यू वो मतलब पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नेशनल टूर्नामेंटों में, तो उनकी फेडरेशन के माध्यम से जब टीमें इनकी बोली लगती हैं तो वो अपना जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स है अवेलेबल कराते हैं, तो जो भी ऑनर है उनको अगर कोई ऑनर लेता है अपनी टीम से खेलने के लिए तो वहां एक अच्छा पैसा मिलता है उनको, तो एक फाइनेंशियल सपोर्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि लगभग हमको ऐसा लगता है कि एक खिलाड़ी को अगर एक टीम ऑनर अपनी टीम से खेलने के लिए खरीद लेता है तो वो टोटली चीज जो फाइनेंशियल हेल्प की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर का पूरा हो जाता है, फाइनेंशियल रूप से वो मजबूत भी हो जाता है जिससे वो अपनी आगे की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सके। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक माहौल तैयार हो रहा है देश में, फेडरेशन की अच्छी पहल है। और नीचे थोड़ा सा एक कहना चाहेंगे कि जैसे एक तो हम एक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए चूंकि वो ग्रामीण परिवेश जो अपना है वहां से जहां से हम प्रतिभा को तैयार करते हैं, नर्सरी जो होती है खेल की, क्योंकि खिलाड़ी एक तो खिलाड़ी हमेशा अभाव में होता है, प्रतिभा अभाव में होती है, तो हमें ये जरूरत है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर मैं पहले खुद को बोलता हूं कि अगर मैं ही हूं तो हमें अपने गांव में या हमें उस जगह पे जहां मैं फिलहाल अभी हूं वहां पे ऐसा देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए हम लोगों को कि भाई ऐसा कौन सा बच्चा है, अगर वो बच्चा है तो हमें उसका हेल्प, इतना ही हमें उसको हेल्प करना है कि उसको एक अच्छी जगह बतानी है जहां से उसके

0: रुचि के हिसाब से, उसके शौक, उसके मुताबिक जिस गेम को खेलना चाहता है उसका कोचिंग देने वाला कोई व्यक्ति हो, उसको वहां पे एक ग्राउंड मिल जाए जिसपे जाकर वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। तो ये सब चीजें अगर हम छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करें हम सभी लोग मिलके जो भी लोग खेल से जुड़े हैं, तो काफी कुछ चीजें आसान हो जाएंगी।
1: जी संजय जी, आपने बड़ी अच्छी बात की और मैं इस पर थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूंगा कि जो आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की, तो हम सब जानते हैं कि भारत में ढेरों प्रतिभाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें तराशना और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। तो आप खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई और आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का खिलाड़ी होने के कारण।
0: बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण पृष्ठभूमि रही मेरी और हमें कुश्ती से बड़ा लगाव था। परिवार में भी फादर भी कुश्ती करते थे और हम अपने जिस स्कूल में माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्कूल हुआ करता था, जिस स्कूल में मैं पढ़ने जाता था उसी स्कूल के रास्ते में अखाड़ा हुआ करता था। तो जब हम सुबह स्कूल के लिए निकलते थे तो रास्ते में वहाँ जो उस्ताद, जिनको कहा जाता है गांव की भाषा में उस्ताद कहा जाता है, तो उस्ताद जी जो बच्चों को प्रैक्टिस कराते थे और जो लोग अब वर्जिश करते थे, देख के बड़ा अच्छा लगता था उनकी शरीर देख के। तो मन में आता था कि काश हमारी भी शरीर ऐसी होती, हम भी मेहनत करते। तो ये तो बात है छठवीं सातवीं जब हम लोग पढ़ते थे, फिर उससे ऊपर जब मैं आठवीं नौवीं आया तो मैं थोड़ा और बड़ा भी हो गया था और शरीर भी काफी अच्छी हो गई थी, क्योंकि अखाड़े पे नहीं जाते थे हम लोग, लेकिन जब भी मौका मिलता था अपने घर पे, अपने दरवाजे पे या कहीं ऐसी जगह जो घर के अगल बगल थी, खाली थी, वहां पे हम लोग एक वर्जिश का अपना छोटे मोटे गांव वाले जो साधन हुआ करते थे उसको तैयार करके करते थे। तो शरीर इस तरह से ठीक हो रही थी, अच्छी हो रही थी और खाने पीने की सारी व्यवस्था थी घर पे, दूध घी की सारी व्यवस्था थी। तो हमारे गांव के एक लोग हुआ करते थे जो गोरखपुर, उनकी दुकान थी, वो तो उन्होंने देखा था हमको, हमारी शरीर देखी उन्होंने गांव में जाके, तो उन्होंने बोला कि नहीं आपको गोरखपुर चलना है कुश्ती के लिए। फादर से बात किया उन्होंने, फादर ने जब हमसे बात किया तो हम तैयार हो गए, तो वो लेके हमको गोरखपुर आए। तो गोरखपुर आने के बाद यहाँ पे प्रॉपर हमारी कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ था, कुश्ती का अभ्यास शुरू हुआ और एक साल तो मैं बिल्कुल गाँव से गोरखपुर आने जाने का कार्यक्रम चलता रहा। लेकिन एक साल के बाद जब मैं ट्रायल दिया आवासीय छात्रावास के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित होता है, तो उसमें ट्रायल देने के बाद उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर मंडल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे ट्रायल होने के बाद मैंने अपने सारे ट्रायल क्लियर किए, उसके बाद उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ कैंप के लिए और जो स्टेट कैंप लगा, स्टेट कैंप के बाद फिर फाइनल ट्रायल हुआ, तो हमारा सिलेक्शन हॉस्टल के लिए हुआ। तो जो सबसे बड़ी चीज है, बेसिक जो है, कि ग्रामीण रूरल क्षेत्र में उन लोगों का या ऐसे लोगों का अभाव है जो, जैसे कोई कुश्ती का नॉलेज होना चाहिए, भाई जिसको कुश्ती का नॉलेज है वही कुश्ती का ट्रेनिंग आपको दे सकता है, जिसको बैडमिंटन का नॉलेज है वही बैडमिंटन की ट्रेनिंग दे सकता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में इनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है, जबकि हमारी नर्सरी ही वहीं से तैयार होती है। अगर हम उस लेवल पे ये चीज अपना कर लेते हैं कि हम अपने ब्लॉक स्तर पे या अपने एक ग्राम पंचायत स्तर पे, जिसको कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा इसको किया जाए कि हम ग्राम पंचायत स्तर पे एक खेल का मैदान हो, वहां पे कम से कम इस तरह के दो चार लोग, जैसे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी योजनाएं हैं चल रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में चल रही हैं, तो उसी तरह से इसके लिए भी एक पहल करनी होगी कि इस तरह के लोग चिन्हित किए जाएं जो उस ग्राम सभा के अंतर्गत हों, जिनको कुश्ती का ज्ञान हो, जिनको वॉलीबॉल का ज्ञान हो, जिनके अंदर एथलेटिक्स का नॉलेज हो, तो उनसे सुबह शाम एक वो करके और ग्राउंड पे बच्चों को कुछ टिप्स दिए जाए जिससे बच्चे तैयार हो और उनके नॉलेज से उनको इतना लाभ हो कि उस गेम में मतलब करने के लिए उनके अंदर जागरूकता हो, उस गेम के प्रति उनका लगाव बढ़े और वर्क करें। इसके अलावा आता है कि अब जैसे हमने आवासीय छात्रावास का आपसे अभी जिक्र किया था, तो आवासीय छात्रावास कुश्ती के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के पास इस समय स्पोर्ट्स हॉस्टल है, स्पोर्ट्स हॉस्टल वीर बहादुर सिंह गोरखपुर और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई। तो लगभग प्रदेश में स्पोर्ट्स हॉस्टल और स्पोर्ट्स कॉलेज इस लेवल के हैं और इस स्थिति में है प्रदेश में कि स्पोर्ट्स कॉलेज, जैसे गोरखपुर स्पोर्ट्स कॉलेज वीर बहादुर सिंह है, इसमें कक्षा छठवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो लखनऊ में है, उसमें कक्षा नौवीं से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमें तो सिर्फ एक से और पांचवीं तक ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि पांचवीं के बाद तो गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है बच्चे के।

0: एक बड़ा कारण है जो आप चीजें बता रहे हैं उसकी भी सूचना बहुत सारे लोगों के पास नहीं
1: नहीं
0: है,
1: है आज के
0: विशेष
1: डेट में।
0: करके छोटे शहरों और गांवों में तो इसकी बहुत ही कमी है। तो आकाशवाणी का एक माध्यम है जो कि सूचना और अच्छी सूचना का प्रसार करे, ये हमारा कार्य भी है। तो आकाशवाणी के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जो प्रतिभाएं छोटी जगहों पे हैं, जिनके पास अभी सूचना के उतने साधन नहीं है, और वो इस द्वंद्व में हैं, इस असमंजस में हैं कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे संपर्क करें ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक मौका मिले, उसे तराशने का एक मौका मिले। तो आप जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं उनको कौन सी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें जाननी चाहिए, उन्हें आप बताना चाहेंगे वो किससे संपर्क करें, किसके पास जाएं?
1: ये बहुत अच्छा रहा आपने चर्चा किया इस पे। ये वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और स्पोर्ट्स कॉलेज सैफई, पूरा इसको कहा जाए कि व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। आज भी फार्म बिक चुके हैं, लोगों ने फार्म भर दिया है, लेकिन आज भी अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएंगे, किसी गांव में जाके किसी खेलने वाले बच्चे से जो एथलेटिक्स का शौकीन है या उसकी प्रैक्टिस करता है उससे पूछेंगे तो बताएगा कि नहीं, हमें नहीं पता कि फार्म मिला कि नहीं मिला। तो ये प्रचार प्रसार बहुत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्र में तो बाकायदा मतलब इसकी सूचना भेजी जानी चाहिए। तो इस सब हर डिस्ट्रिक्ट में एक जिला खेल कार्यालय होता है, तो जैसे ही ये फॉर्म बिकने होते हैं तो सबसे पहले इनकी नोटिस जिला खेल कार्यालय को जाती है। वो जिला खेल कार्यालय पे नोटिस चस्पा होती है, उस पे लिखा रहता है कि फला से फला डेट तक ये फॉर्म, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर का फॉर्म फला से फला डेट तक वितरित किया जाएगा। यहां से आप उसकी एक निर्धारित उसका शुल्क होता है, वो शुल्क देके आप उस फॉर्म को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे एक रीजनल कार्यालय होता है, तो आप अगल बगल के अगर जिले के खेल कार्यालय से चीज स्पष्ट नहीं होती है तो आप रीजनल ऑफिस पे पहुंच सकते हैं, जहां से 100% ये स्पष्ट होनी ही होनी है कि ये फार्म बिकेगा, कब से बिकेगा, इसका मूल्य क्या निर्धारित होगा, वो सारी चीजें आपको जिला खेल कार्यालय से अगर नहीं मिल पाती हैं तो आप अपने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर से ले सकते हैं, जो हर रीजन में एक रीजनल स्पोर्ट्स अफसर का ऑफिस बना हुआ है, जहां से जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत रन करता है, आपको सारी जानकारियां वहां से मिल सकती हैं, बशर्ते कि आपको वहां तक जाना होगा।
0: मतलब ये हुआ कि जो भी नई प्रतिभाएं हैं, जो छोटे शहर और गांव के खिलाड़ी हैं, वो अपने जिले के खेल कार्यालय और जो स्थानीय केंद्र हैं उसके संपर्क में रहें, तो उन्हें समय आने पर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो प्राप्त होती रहेंगी। चलिए नीरज जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि फुटबॉल में भारत में कई प्रतिभाएं समय समय पर दिखती हैं, बड़े नाम आते हैं, लेकिन अगर एक टीम के रूप में चर्चा की जाए तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं फीफा की रैंकिंग में बहुत नीचे है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद एक टीम के रूप में हमारा प्रदर्शन जो है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इतना लचर क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है?
2: इसके मुख्य कारण ये है कि खिलाड़ियों को सही जो दिशा निर्देश है वो नहीं मिल पाता है। जैसे कि संजय भाई ने कहा अभी कि खिलाड़ियों को जानकारी नहीं हो पाती है, आगे इसलिए भी नहीं बढ़ पा रहा है फुटबॉल का कि हमारी देश की जो टीम है, ना बढ़ने का कारण यही है कि खिलाड़ियों को सही चीजें और सही फैसिलिटी वगैरह नहीं मिल पाती, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता है, जो प्रतिभाएं होती हैं वो दबी रहती हैं। अभी भी हम गांव क्षेत्र में जाएं तो खिलाड़ियों को देखें तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी वहां पर भी मौजूद हैं, पर उनको तराशने की ही जरूरत है। ये सब चीजें हैं जो कि थोड़ा सा
0: ये चुनौती बनती है। जी संजय जी, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि संजय जी जो हैं वो कुश्ती के साथ ही कुश्ती की एक जो एक नया प्रकार है ग्रैपलिंग रेसलिंग, उससे भी जुड़े हुए हैं और उसके बड़े ही अच्छे खिलाड़ी हैं। हालांकि ये एक नई विधा है कुश्ती की और इससे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हैं। तो संजय जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रैपलिंग रेसलिंग जो है वो क्या है, वो पारंपरिक कुश्ती से किस तरह से अलग है, और अगर ग्रैपलिंग रेसलिंग में कोई अपना करियर बनाना चाहता है तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए?
1: ग्रैपलिंग रेसलिंग जैसे नाम दिया गया है, इसको ग्रैपलिंग रेसलिंग रेसलिंग नाम इसलिए दिया गया कि रेसलिंग ही इसको, रेसलिंग की जो भी फेडरेशन होती है, चाहे वो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW जो वैश्विक संस्था है कुश्ती की, उसी के अंतर्गत रन करती है। और दूसरी चीज की किसी भी देश में जो भी ग्रैपलिंग की फेडरेशन होगी, उस देश की जो नेशनल एसोसिएशन फेडरेशन होगी उसी के अंतर्गत संचालित की जाएगी, कोई अलग उसके लिए संस्था अलग से नहीं बना सकता है। तो ये ग्रेपलिंग रेसलिंग की एक एसोसिएट स्टाइल है, जैसे कि जो प्रोफेशनल स्टाइल है रेसलिंग की ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल, उसके बाद ग्रेपलिंग

0: एसोसिएट स्टाइल में आता है रेसलिंग की। तो ग्रेपलिंग रेसलिंग में, ग्रेपलिंग और रेसलिंग में सिर्फ अंतर इतना ही है कि ग्रेपलिंग रेसलिंग में जैसे रेसलिंग और जूडो को मिला के दोनों की टेक्निक, कुछ टेक्निक इसकी रेसलिंग से ली गई है और कुछ टेक्निक जूडो से ली गई है। तो रेसलिंग और जूडो को मिला के इसकी सारी टेक्निक बनी हुई है और इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। जैसे चोक किया जाता है, चोक होने के बाद से जो लोग मतलब बेहोश हो जाते हैं, इसको तो एक तरह से इसको सबमिशन रेसलिंग भी कहा जाता है। तो सबमिशन रेसलिंग भी इसको कहा जाता है, ग्रेपलिंग रेसलिंग है। और एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है, अभी भारतीय कुश्ती संघ ने इसके लिए अलग से एक कमेटी भी अडॉप्ट कर दिया है कंट्री में अपने, ग्रेपलिंग कमेटी ऑफ इंडिया अंडर एजिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। और इसमें एक अलग से एक ऑप्शन मिल गया उन लोगों के लिए कि जैसे जो लोग काफी वर्क कर रहे थे लंबे टाइम से और सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि आप एक बार ग्रेपलिंग रेसलिंग को भी करके देखो, हो सकता है कि आपकी वही टेक्निक, वही मेहनत यहाँ एक अच्छे मुकाम पे आपको लेके जाए। और अब इसको पूरे देश में इसके सेंटर बनाने की तैयारी चल रही है, जैसे रेसलिंग के सेंटर हैं, तो इसके भी हर जिले पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे, जोन पे इसके सेंटर बनाए जाएंगे। और अभी फिलहाल अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी अगर इसको सर्च करना चाहता है तो यूट्यूब पे भी काफी इसकी इंटरनेशनल लेवल की, वर्ल्ड चैंपियनशिप की, एशियन चैंपियनशिप की, यूरोपियन चैंपियनशिप की सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, जो भी बड़े इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है, तो उससे भी आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं कि क्या है, कैसे है, उसका बेसिक टेक्निक क्या है, उसमें मतलब क्या आपको करना होगा, कैसे चेंज लाना होगा। आप अगर रेसलिंग से ग्रेपलिंग रेसलिंग में आते हैं तो आपको क्या चेंजिंग करनी होगी, तो कहीं ना कहीं उसमें अगर कोई रेसलिंग में काफी वर्क कर रहा है कोई बच्चा और उसका रिजल्ट नहीं आता है, तो एक बार वो चेंज कर सकता है अपना प्लेटफॉर्म। है आप रेसलिंग में ही, लेकिन एक फॉर्मेट अलग हो गया है, आप रेसलिंग से दूर नहीं गए हैं, तो आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर सकते हैं। और इसमें हो सकता है आप अगर मेहनत किए हैं, मेहनत करेंगे, तो इसमें आपको बेटर रिजल्ट आ सकता है।
1: जी, बातें करते करते वक्त का पता नहीं चला और हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा संजय जी कि जो नए प्रतिभाएं हैं, नए खिलाड़ी हैं, वो खेल में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उन्हें आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: संदेश किसी भी खिलाड़ी के लिए तो सबसे बड़ा चीज क्या है कि आप खेल हो, शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में रहें, तो एक अनुशासन बहुत बड़ा, अनुशासन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, जिसको हम फॉलो करते हैं। और अनुशासन के साथ साथ हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा, क्योंकि अगर आप लक्ष्य नहीं निर्धारित करते तो आपका वर्क नहीं हो सकता है। वर्क के लिए आपका लक्ष्य ही आपको प्रेरित करेगा कि आपको कितना वर्क करना है। अगर आप लक्ष्य अपना नेशनल लेवल का लेते हैं कि हमें नेशनल से गोल्ड लेना है, तो वो आपका लक्ष्य प्रेरित करेगा कि आज आपको इवनिंग सेशन में कितना वर्क करना है। और अगर आप इंटरनेशनल लेवल का टारगेट लेते हैं कि हमको इंटरनेशनल लेवल में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमको मेडल लेना है, तो हमेशा आपको एक लक्ष्य देना होगा खुद को, क्योंकि उस लक्ष्य को दिए बिना आप दिशाहीन रहेंगे, क्योंकि उसी लक्ष्य के लिए आपको वर्क करना है, आपको और कुछ करना नहीं है, सिर्फ उस लक्ष्य को पाने के लिए वर्क करना है। और जितना ही आपका लक्ष्य ऊंचा होगा, उतना ही आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, और जब आपकी प्रैक्टिस उम्दा होगी, आपकी प्रैक्टिस इस काबिल होगी कि आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे फाइट कर सकें, तो निश्चित ही मेडल भी आएगा। एक बार आप पार्टिसिपेशन करने जाएंगे, एक बार कुछ और आपका अनुभव बढ़ेगा, अगली बार उसी टूर्नामेंट में आप जाएंगे तो आप अचीवमेंट लेके आएंगे। तो आपको एक लक्ष्य देना होगा, और वो लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल मतलब आपको सोने ना दे, एक जुनून हो उस लक्ष्य को पाने के लिए, आपके अंदर एक जुनून फिर हो जाएगा कि हमें उसे अचीव करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये लक्ष्य तो निर्धारित करना होगा, बिना लक्ष्य के आप वर्क नहीं कर सकते हैं।
1: नीरज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: एक खिलाड़ी के लिए अनुशासन तो बहुत जरूरी है। जिस खेल में वो रुचि रखते हैं, उस खेल में उनको पूरा अपना 100% देना होता है। अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो फिर आप वो नहीं कर पाएंगे। और जिस खेल में वो रुचि रखते हैं, उस खेल को आगे तक अपने मतलब स्वयं को आगे ले जाने के लिए उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ खिलाड़ी होते हैं, कुछ टीमें वगैरह जिला की या स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, नेशनल की, मतलब जो टीम ट्रायल वगैरह होती है, उस ट्रायल में अगर वो एक दो बार छट भी जाते हैं, फिर भी उनको हताश नहीं होना चाहिए, उनको निरंतर उस पर मेहनत करते रहना है।

0: टीम में सिलेक्शन होगा, फिर उससे वो और आगे बढ़ेंगे। ऐसे कई चुनौतियां भी आती हैं सामने कि आदमी थोड़ा सा डगमगा जाता अपने रास्ते से कि हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा मन में निराश आ जाता, खिलाड़ी फिर भागने लगता है पीछे कि मेरा तो नहीं हो पा रहा है कुछ, मैं क्या करूं। तो इसलिए खिलाड़ी को हमेशा अपने प्रयास करते रहना चाहिए।
1: संजय जी, नीरज जी, आप लोगों ने जैसी चर्चा की, मुझे उम्मीद है कि आकाशवाणी के माध्यम से ये सारी बातें, जिसमें सारी सार्थक बातें हुई हैं, वो एक बड़े वर्ग तक और छोटे छोटे सुदूर जगहों पे पहुंची होंगी। बहुत सारी काम की बातें निकल कर आई और बहुत सारी जानकारियां भी हमने जानी, और हम उम्मीद करते हैं कि इसका फायदा एक समाज के बड़े वर्ग को मिलेगा। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा, चुनौतियों से कैसे पार पाए चैंपियन। परिचर्चा में भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी संजय राय तथा फुटबॉलर नीरज गुप्ता। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे दीपांकर मिश्र। इसी के साथ आज का खेल दर्पण का यह अंक यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण, मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पंडित सतीश चंद्र का सितार वादन, राग पीलू।
5: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को इरम फातिमा का प्यार भरा नमस्कार।

मेरे हुजूर, अभी आपने सुना इस फिल्म का ये खूबसूरत नगमा मन्ना डे की आवाज़ में। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी ज़िला जौनपुर पोस्ट लबरी ग्राम मुंडेला से कुमारी चंदा कुमारी चांदनी, आकाश कुमार कन्हैयालाल और रीता देवी ने, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर तारणी ठाकुर सूरज ठाकुर ज्योति ठाकुर रियांश ठाकुर और गुड़िया ठाकुर ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा ने, मोहल्ला हलवायान शेरकोट ज़िला बिजनौर से इसी गीत को सुनना चाहा था मोहम्मद वक़ार फरीदी मोहम्मद इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोज़ी परवीन बिट्टू भैया साजदा रानी और हिना कौसर ने। इसी गीत को सुनना चाहा था वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम गुड़िया और शोएब खान ने। नाज रेडियो क्लब करेली से फरमाइश की थी निसार अहमद अंसारी महजबी निसार अंसारी, नुजहत फातिमा अबरार अहमद अंसारी इसरार अहमद अंसारी इकबाल अहमद अंसारी तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी ने। कार्यक्रम गीतांजलि का अगला गीत फिल्म हरियाली और रास्ता से। इस गीत को आवाज़ें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने और फरमाइश आप सभी की है। जमनी मोहल्ला इस्लाम नगर से मुजफ्फर अली खान मतीन खान अल्फिया खान। और इंशा खान भटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग अंजू नारंग मोहित नारंग दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल रीता देवी शिल्पा रानी आकाश कुमार कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार के सभी सदस्यों ने फरमाइश लिख भेजी है। मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता। मुकाम हिपरसोंगा तालुका ओसा जिला लातूर हून से उस्मान शेख फौजी सायरा बानो दस्तगीर शेख फैज नबी शेख शाकिर शेख इस्लाम नबी शेख बाबा शेख करिश्मा शेख सिमर शेख सानिया शकील बिस्मी लाबी शेख बकदर शेख आड़ नीलोफर शेख हिपर सोंगा से तालुका बिलाली जिला नांदेड़ हून से चांदनी अयूब सैयद आणीवाल राजे अमन सैयद माहिरा सैयद। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से अनुरोध करता है विनोद मूरत नेहा जैन दीपक मयंक मूरत चेतन नाहटा दिलीप सिंह पवार दीक्षा कुश मूरत। इसी गीत को सुनना चाहा है डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद आरिश हुसैन ईशान हुसैन और मरियम बुशरा ने। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म हरियाली और रास्ता का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद मुकेश की आवाज़ों में आपकी नज़र।

कार्यक्रम गीतांजलि की अगली फरमाइश छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबिल पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश की है। ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, नलेश्वर नगर नरवेल से पीएस नहावकर, विशाल नहावकर, महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद, अफजलपुर पट्टी तहसील जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता, आशु गौतम। गांधी समाधि रोड रामपुर जिला अस्पताल के पास से फरमाइश लिख भेजी है गफार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान, आसिम खान, गजन खान, शमा परवीन, शमशाद अली अजम, गुल अफशान, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफार और हबीब अहमद इदरीसी ने। मीरगंज से कल्लू मिस्त्री, मिलक भोजपुर, आशा जिला मुरादाबाद, बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन और शहनाज भी, आसिया भी। कटरा चांद का मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनुरोध किया है अनोखी लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदरा मौर्य, कैलाश सुनील, खुशबू मौर्य, एरोही और स्वाति मौर्य ने। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से फरमाइश लिख भेजी है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, अयोग खान, इरमगुड़िया, शोएब खान, नवेद खान ने फरमाइश की है सिंधौली मीरगंज बरेली से और यहीं से जिशान वारसी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जेतेक विरक, मीका विरक, पंडित नगलाबाई पास से कोहिनूर तेराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निसा असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म राजकुमार का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत आपकी नज़र।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से अनुरोध किया है टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा कालका से, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, जतुआ किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नास, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नास, सिराजपुर, गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील और वकील राही और फिरोज आलम नास प्रवीण। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से अनुरोध किया है कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, सायना सायमा खान, मुश्ताबा खान, आफिया खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा आफरीन, आरफा खान, इल्मा खान, आफरीन खान, जमीर खान, राजद्वारा मीठे कुएं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित रस्तोगी, अभेरिया आरुष। आप सभी ने सुना चाहा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत शिवा चौक राजीव से अनिल कुमार अंजुलता आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव के अनुरोध पर अमरपुर पेंड्रा से राजीव दीपक कुमार रोशन कुमार वंशीलाल रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी दिशा और लवी श्रीवास्तव के

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में इस गीत के साथ कार्यक्रम गीतांजलि अब यही संपन्न करने की। अपनी रेडियो सहेली इरम फातिमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि, मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
2: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
1: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन